एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई 2026, सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी हाँ, हनुमान जी के नाम का स्मरण करने से ही भय, दुख और संकट दूर हो जाते हैं। वे शक्ति के प्रतीक हैं, भक्ति के आधार हैं और सेवा के आदर्श हैं।

राम नाम मनि दीप धरु जेह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चहसी उजियार। यानी कि जब जीवन में अंधकार हो, जब मन व्याकुल हो, तब केवल राम नाम का स्मरण ही मन को शांति और आत्मा को शक्ति देता है।

जप में राम ही तप में राम ही जीवन के दर्शन में राम ही तो है आदि अंत में राम जन्म में राम मरण में राम एक है सत्य सनातन जल में थल में जल चेतन में राम बसे हैं आदर्शों में

कभी सोच कर देखिए कि जब जीवन की राहें उलझ जाती हैं, जब मन भटकने लगता है, तब हमें सही दिशा कौन दिखाता है? वे होते हैं हमारे गुरु। गुरु वो दीपक हैं जो तूफानों में भी जलते रहते हैं और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और उन्हीं की कृपा से जीवन में संतुलन, शांति और विश्वास बना रहता है।

शिव वो शक्ति है जो भस्म में भी जीवन का संदेश देती है, जो विष पीकर भी संसार को अमृत देती है, और जो क्रोध में तांडव तो करती हैं मगर प्रेम में भोले बन जाते हैं, और जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो उसे किसी का भय भी नहीं होता।

अभी आप आनंद ले रहे थे भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस गान, जिसके संगीत निर्देशक और निर्माणकर्ता हैं सतीश भाटिया, स्वर दिया है सुरेश वाडकर ने।

श्री राम के मन में ये सोच व्याप्त है कि राजा जनक समेत भरत सभी माताएं अयोध्या तथा जनकपुरवासी दुखी हैं और व्यर्थ ही चित्रकूट में वनवास के कष्ट भोग रहे हैं। उनकी चिंता सुनकर वशिष्ठ जी मिथिलापति से सबकी दुविधा समाप्त करने का आग्रह करते हैं। मुनिवर के वचन सुनकर जनक जी का ज्ञान और वैराग्य तिरोहित हो गए। वो प्रेम और मोह के वशीभूत हो गए। उन्हें लगा कि यहाँ आकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने तो पुत्र विरह में अपने प्राण त्याग दिए और वे उन्हें और गहन वन में भेजकर अपने प्राण भी नहीं त्याग सकेंगे। मिथिलापति को नहीं समझ में आता कि अब क्या किया जाए। अतः क्या किया जाए इसका निर्णय उन्होंने भरत पर छोड़ दिया। भरत ने कहा, सारा जगत जानता है कि सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ एक दूसरे के विरोधी हैं। बैर अंधा होता है और प्रेम में बुद्धि साथ छोड़ जाती है। अतः मुझसे न पूछकर श्री राम की रुचि का ध्यान रखते हुए वही करना चाहिए जो सर्वसम्मत तथा सबके लिए हितकारी हो।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, जिसके संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया और स्वर दिया था सुरेश वाडकर ने। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आज विक्रम संवत 2082 के ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, तदनुसार 18 मई 2026। अब एक नजर टुडेज अपडेट्स पर।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पॉलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री या सरकार प्रमुख को दिए जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी जी को अब तक 31 देशों से सम्मान मिल चुका है। तो ये थी कुछ एक टुडेज अपडेट्स। अब जानिए आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा सुबह 7:10 पर। कार्यक्रम सुबह सवेरे लेकर हाजिर होंगे सुबह 8:30 पर और सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र का समय रहेगा सुबह 10 से 11 तक। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फोन नंबर 01744221322 पर। और इसमें आज एक सजीव वार्ता भी होगी जिसका विषय रहेगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।

6:20 पर श्रवण कीजिएगा गीता संदेश का। इसमें आज आप सुनेंगे तीसरे अध्याय की श्लोक 20 से 23 की व्याख्या। प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर विशंभर दास की। कार्यक्रम अन्नदाता पेश करेंगे 7:00 और 7:23 पर, माफ कीजिएगा, कार्यक्रम अन्नदाता पेश करेंगे 6:23 पर, और साथ ही 7:00 सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम संसार।

कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि ठीक 8 बजे। संगीत के आकर्षण में सुबह 9:30 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम स्वरांजलि का। जय जवान कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:30 पर और युववाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:30 पर। गाने नए पुराने का

आनंद लीजिएगा शाम 5:05 पर। भजनों व गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता पेश करेंगे शाम 7:45 पर, और आप सभी के द्वारा भेजे गए संदेशों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें सुनिएगा रात्रि 10 बजे। विविध भारती के कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुन सकेंगे सुबह 9:45 से 10 बजे तक, फिर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक, और रात्रि 9:15 से रात्रि 10 बजे तक। तो ये थी आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।

अभी आप आनंद ले रहे थे देशभक्ति गीत का। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथिनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथिनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारो भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारो व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्री मोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेन वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादम विरुद्ध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमंत्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री मोदी प्रकाशितवान्।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथिनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्री मोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमंत्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमंत्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलं शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्व युतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथि युतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटि मितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्री शाहः विहितवान्। एतत् पूर्वं प्रथमे दिने श्री शाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्री शाहः एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोतेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोतेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पतंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव, अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
1: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
1: जी।
2: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
2: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
2: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं, लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं लेकिन हम कहेंगे, विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमलेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
3: Hello, children. How are you?
4: We are fine, sir.
5: I am fine.
6: I am good, sir.
3: Fine. Good. Okay, so tell me, what do you like most?
5: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
3: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
3: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
4: Yes, sir.
7: We like.
3: Lovely butterflies?
4: Yes, sir.
3: And lovely colorful chirping birds?
4: Yes, sir. We like it.
3: That's very nice, children.
7: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
3: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
4: Yes, sir.
3: The rivers, the mountains, and the green trees.
4: Yes, sir.
3: Okay, so let me tell you the story of a sweet child like you.
4: Like us?
3: Would you like to listen?
4: Yes, sir.
7: We love to listen the story.
3: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
4: Okay, sir.
3: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
4: Okay, sir.
10: We love to recite it.
3: As I lie on my back, looking up at the sky,
4: looking up at the sky,
3: I see a big white bear.
4: I see a big white bear
3: looking down at me.
4: Looking down at me.
3: As I lie on my back,
4: as I lie on my back,
3: looking up at the sky,
4: looking up at the sky,
3: I see a ship sailing.
4: I see a ship sailing
3: on a white sea.
4: On a white sea.
3: As I lie on my back,
4: as I lie on my back,
3: looking up at the sky,
4: looking up at the sky,
3: I see an elephant.
4: I see an elephant
3: waving its trunk at me.
4: Waving its trunk at me.
3: As I lie on my back,
4: as I lie on my back,
3: looking up at the sky, oh, it's fun. It's fun to me.
4: Oh, it's fun. It's fun to me.
3: To see whatever I want to see.
4: To see whatever I want to see.
3: So, children, you have recited so well. Have you ever noticed the clouds?
4: Yes, sir.
7: They are beautiful.
6: They are very big.
5: They change the shapes.
3: Wonderful. You have very rightly said. So now listen to the same poem in a song. Would you like to listen to this song?
4: Yes, sir.
3: So kids, here comes the song, As I Lie. What?

0: you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be lovely.
2: It will be good.
0: Yes, and one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajender Pal. Technical Coordinator, Buttiland Lingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistants in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहने
8: तुलसी गौड़ा, 72 ईयर ओल्ड ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
12: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
13: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
12: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
14: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम में वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूँ। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूँ।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
2: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
2: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
2: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
2: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
4: अच्छा।
2: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
2: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं, वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
4: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
2: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
4: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800044559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हरियाणवी लोकगीतों का कार्यक्रम बजे नगाड़ा। इसमें आज आप सुनेंगे बलराज दास और उनके साथियों के द्वारा गाए गए कुछ एक भजन। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
9: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
10: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी लोकगीतों का कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा। इसमें आज के हमारे कलाकार थे बलराज दास और उनके साथी। FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, SME, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
2: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
3: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
2: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के 4थे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
6: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
8: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
9: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। हॉर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। NDA सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और NDA की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार बाद दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्यबल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वी डी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded India-EU FTA for the benefit of their people. We have more details on this from our correspondent in Sweden covering the Prime Minister's visit.
11: Central to the visit was the adoption of a joint action plan, which aims to double bilateral economic exchange within 5 years. Under the theme India-Sweden Stronger Together toward 2047, both nations committed to holding a bilateral trade and investment summit in India in 2027. In the realms of technology and climate action, the visit secured significant agreements to co-create solutions for the 21st century. Both nations launched a joint innovation partnership 2.0 and agreed to establish a virtual India-Sweden Joint Sciences and Technology Center, focusing on AI, 6G, quantum computing and life sciences. Furthermore, Sweden-India Technology and AI Corridor will be strengthened to connect the two nations' startup ecosystem. On the climate front, the leaders announced the third phase of the leadership group for industrial transition, significantly expanding cooperation in green steel and low-carbon industrial transformation. Defense and security cooperation have transitioned from a traditional buyer-seller model to a long-term industrial partnership, with Swedish companies actively investing in India's defense production corridors. Prime Minister specifically thanked Sweden for its support following the Pahalgam terror attack, reaffirming a joint commitment to global stability. Finally, the visit celebrated a shared intellectual legacy and broader regional cooperation. To commemorate the centenary of Gurudev Rabindranath Tagore's historic visit to Sweden, both countries initiated the Tagore-Sweden lecture series and exchanged unique gifts, including replicas of Tagore's handwritten epigrams found in Swedish archives. The presence of European Commission's President Ursula von der Leyen highlighted the visit's importance to the India-Euro partnership, with a renewed push for the India-Euro Free Trade Agreement, described as the mother of all deals, to unlock new opportunities for innovators and investors alike.
12: We succeeded indeed in concluding our landmark trade agreement. We call it the mother of all deals. And just look at some of the figures. A shared market of over 2 billion people, that is close to one quarter of global GDP. Over 90% of tariff cuts. Enormous opportunity to grow trade and investment. From here in Gothenburg, Scandinavia's largest trading port, to Mundra port in your home state in Gujarat.
11: Sakshi Singh, Akashwani News, Gothenburg, Sweden.
10: Prime Minister Modi has invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission. During an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg, Mr. Modi made a strong pitch to Swedish companies to enhance their presence in India in manufacturing, green hydrogen mission, clean energy and other sectors. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences and digital technologies. Highlighting India's rapid economic transformation, Mr. Modi mentioned about strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next generation infrastructure development in India.
3: Vodafone, Ericsson, Nokia, ओरेंज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है. भारत 5G से 6G ट्रांजिशन, AI एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है.
10: The Ministry of External Affairs has said that business leaders and CEOs who met Prime Minister Narendra Modi in Sweden expressed strong interest in India and appreciated the country's transformation driven by sustained economic reforms over the past several years. Addressing reporters after the European Roundtable Industry Meeting, MEA Secretary West C.B. George said that CEOs and senior industry leaders highlighted the significant changes they have witnessed in India in recent years,
13: which was attended by a large number of key companies in Europe. I would like to highlight that in his meetings today with the CEOs and other senior leaders from the business, they all highlighted about their interest. You know, they have been observing India for last few years. They have been investing in India for last few years. What they have seen is a complete transformation in India in the last few years. They emphasize that.
10: In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third Indian-Nordic summit and bilateral engagements. This will mark the first Prime Ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonia and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. Mr. Modi will also address the Indian-Norway Business and Research Summit along with the Norwegian Prime Minister. The visit will provide an opportunity to review the progress made in Indian-Norway relations and explore avenues to further strengthen them. Congress leader V.D. Satheeshan will be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Keralam Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will administer him oath of office and secrecy at a function in Thiruvananthapuram this morning. The Chief Minister-designate unveiled a 21-member UDF cabinet last evening ahead of today's swearing-in ceremony. More from our correspondent.
14: The Congress-led UDF ministry is being sworn in today in Keralam after a gap of 10 years. The Chief Minister and 20 other ministers will take oath at a function organized at Central Stadium, Thiruvananthapuram. 16 members of the new ministry, including Chief Minister V.D. Satheeshan, are becoming ministers for the first time. UDF workers in large numbers have been arriving in the state capital since yesterday afternoon to witness the swearing-in ceremony. Senior leaders, including Congress President Mallika Mallikarjun Kharge, leader of the opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, the chief ministers of Karnataka, Himachal Pradesh and Telangana, outgoing chief minister Pinarayi Vijayan and BJP state president Rajiv Chandrasekharan are expected to attend the ceremony today. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
10: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Union Home Minister Amit Shah arrived in Raipur last evening on a two-day visit to Chhattisgarh. During his visit to the state, Mr. Shah will participate in several programs in Raipur and Bastar. A report from our correspondent.
7: On the first day of his visit to Chhattisgarh, Union Home Minister Amit Shah will flag off new vehicles under the emergency response service Dial 112 in Raipur this morning. Later, he will travel to Bastar and inaugurate a public convenience center at Netanar village in the district. The center is aimed at providing easier access to government and digital services for people living in remote areas. Thereafter, Mr. Shah will reach Jagdalpur and pay tribute to Martyrs at Amar Vatika. In the afternoon, he will interact at Badal Academy in Jagdalpur with families of martyrs, security personnel, people affected by Naxal violence and representatives of various local communities. In the evening, he will also attend the Bastar Ke Sang folk cultural program. This is Mr. Shah's first visit to the state after Chhattisgarh was declared Naxal free. Vikalp Shukla, Akashvani News, Raipur.
10: The trail of the NEET paper leak case has now reportedly extended from Latur to Nanded in Maharashtra. A parent has been accused of purchasing the leaked question paper for 5 lakh rupees for his daughter. A CBI team questioned the individual yesterday and has summoned him to appear before the agency's Pune office tomorrow for further investigation. Meanwhile, in the same case, the Delhi Rows Avenue Court has remanded Pune-based accused Manisha Mandhare to 14 days of CBI custody. According to the agency,

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सवेरे में। मैं हूं आरती, आपकी रेडियो मित्र। साथ में दोस्तों, जीवन, इंसान, वक्त और किस्मत सब कुछ एक पल में बदल सकता है, इसीलिए जीना है जी लीजिए हंसकर आज इसी पल में। वैसे दोस्तों, खुश रहना परिस्थिति नहीं बल्कि एक निर्णय है, और सफल होना किस्मत नहीं बल्कि लगातार मेहनत करने का नतीजा है। तो रुकिए नहीं, थकिए नहीं, बस आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। तो इसी विचार के साथ कीजिए स्वीकार आरती का प्यार भरा नमस्कार।

बिल्कुल दोस्तों, जब सीने में जुनून होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे और तभी इस खूबसूरत सी दुनिया का आनंद ले सकेंगे, अपनी रूह को सुकून दे सकेंगे। वैसे जब हम जानते हैं कि आपकी रूह को सुकून हमारे सवाल का जवाब देकर और कार्यक्रम में अपना नाम सुनकर मिलता है, तो क्यों ना वो काम कर ही दिया जाए, आपकी रूह को सुकून दे दिया जाए और आपको आज का सवाल बता दिया जाए। जी हाँ, हमारा आज का सवाल है कि जो वन केस वन डाटा प्रोजेक्ट है और सुसहाय एआई चैटबॉट है, इसे किसने लॉन्च किया है। तो आज आपको बस वही बताना है कि वन केस वन डाटा प्रोजेक्ट और सुसहाय एआई चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस सवाल का जवाब आप हमें भेज सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर 9466021336 पर 8:45 तक। और इस सवाल का जवाब जो है वो आप सबसे पहले लिखिएगा एसएमएस में, उसके बाद अपना नाम लिखिएगा और फिर अपने स्थान का नाम लिखिए। आपको पूरा पता नहीं लिखना है, आपको बस अपने गांव शहर का नाम लिखना है और अपने राज्य का नाम लिखना है, बस इतना ही काफ़ी है। और इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वो क्या कि आपको एक एसएमएस में सिर्फ 3 नाम लिखने हैं और सही समय का भी ध्यान रखना है। तो चलिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का, आपके एसएमएस का, और सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

0: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
1: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
0: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
2: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
0: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
1: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
0: आकाशवाणी
2: विश्वास की आवाज।
3: दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में। जी हाँ, ज़रा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप हजारों साल पुराने इतिहास के सामने खड़े हैं। आपके सामने एक प्राचीन मूर्ति है, एक पुरानी सी तलवार है या फिर कोई भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी वस्तु। क्या आपको महसूस होता है कि इतिहास आपके आपसे कुछ कह रहा है? जी हाँ, यही वो जादू है संग्रहालयों का, जो हम सब पर बहुत ही अपना जादू एकदम से करता है। और इसी जादू को मनाने के लिए हर साल 18 मई को पूरी दुनिया में जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ये दिवस सन 1970 में शुरू किया गया था और इसका आयोजन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम यानी कि ICOM द्वारा किया जाता है। आज 150 से अधिक देशों के हजारों संग्रहालय इस दिवस में भाग लेते हैं। दोस्तों, इस वर्ष की थीम है म्यूजियम यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड, यानी कि विभाजित विश्व को एक करने वाले संग्रहालय। ये थीम हमें याद दिलाती है कि जब दुनिया में मतभेद बढ़ते हैं, तब संग्रहालय हमारी साझा विरासत से हमें जोड़ते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमारी संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन हमारी मानवता एक है। दोस्तों, संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का संग्रह नहीं है, ये ज्ञान के केंद्र हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं और समाज को जोड़ने वाले पुल हैं। संग्रहालय हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखते हैं, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं, नई पीढ़ी में जिज्ञासा जगाते हैं और एकता का संदेश फैलाते हैं। आज के बच्चे डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन क्या हम उन्हें ये अनुभव दे पा रहे हैं कि इतिहास को छूकर देखना कितना रोमांचक होता है? जी हाँ, जब बच्चे संग्रहालय जाते हैं तो वो देखते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ चीज़ों को देखते नहीं हैं बल्कि बहुत कुछ सीखते हैं। वे केवल सुनते नहीं हैं बल्कि बहुत कुछ उसके साथ साथ सोचते भी हैं, और जब वो सोचते हैं तभी तो वो

कि बच्चे जब हम उन्हें किसी संग्रहालय में लेके जाते हैं तो बच्चे कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि आप इन चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करो, इनसे चीज़ों को महसूस करने की कोशिश करो और फिर हमसे उसके बारे में पूछो या उसके बारे में जो भी जानकारी वहाँ पे दी गई है उसके बारे में पढ़ो, नोट्स बनाओ, चित्र बनाओ और अपनी सीख को साझा करो। हमें इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, संग्रहालय की एक छोटी सी यात्रा बच्चे के जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। तो संग्रहालय हमें सिखाते हैं कि हमारा अतीत ही हमारी ताकत है। यदि हम अपनी जड़ों को समझेंगे तो भविष्य को और अधिक बेहतर बना पाएंगे। तो इस साल 18 मई यानी आज को, आज के दिन हमें सिर्फ इसे एक दिन के रूप में नहीं मनाना है बल्कि इस दिन एक संकल्प भी लेना है कि हमें अपनी विरासत को जानने, समझने और संजोने का की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि संग्रहालय केवल अतीत की कहानी नहीं सुनाते, वे भविष्य की दिशा भी दिखाते हैं। तो ये हुई बात अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में।

दोस्तों, आज हमने आपसे सवाल किया था कि हाल ही में वन केस वन डाटा प्रोजेक्ट और सुसहाई एआई चैटबॉट को किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सूर्यकांत और सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों ही जवाब बिल्कुल सही हैं। और अब हम शामिल करने जा रहे हैं आप सभी साथियों के नाम जिन्होंने दिया है आज के सवाल का सही जवाब। तो सबसे पहले हमारे पास जवाब आया है तन्मय सिंह और सिद्धांत सिंह का, जो कि हैं शिलाई हिमाचल प्रदेश से। अगला सही जवाब हमें मिला है योगी ठाकुर, रीमा ठाकुर का, ये भी नाहन हिमाचल प्रदेश से हैं। फिर है ललिता सिंह, भगवान सिंह, जो कि अच्छा ये भी हमारे साथी शिलाई हिमाचल प्रदेश से ही हैं। फिर है जी आकली दीवान मध्य प्रदेश से, भाई रामलाल चंद्रवंशी और कृष्णा चंद्रवंशी। योगी मोहल्ला बराड़ामबाला से हैं, रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, गुरशब्द सिंह राहुल। ढाणी कुतुबपुर हांसी से हैं रामधारी अवाना, अनाया अवाना, ओजस अवाना। और टिया कृष्णा हैं सोलन हिमाचल प्रदेश से। इसके अलावा दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से हैं गजनन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले। धुलिया महाराष्ट्र से अशोक कवाड़े, आदित्य कवाड़े और दीपमाला कवाड़े। MLB रोड ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लाव्या और इनके साथी। बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम। डब्लू उल्लाह बेलदार, वली उल्लाह बेलदार और सोनम उल्लाह, ये है बिहार से। उमेश सांगवान, ये हमारे साथी हैं पैंतावास कला चरखी दादरी से। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर। भाणा ब्राह्मणावाला नरवाना से हैं मेघराज शर्मा। डेर पाटन गुजरात से हैं धीरज वीरबारी। बुलढाना वर्षिंगी से अमोल मानकर और बुलढाना इस्लामपुर से हैं सहदेव दामोदर। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, राजेश साबले पाटिल और मोहम्मद जायद अली सैफी, जोहान सैफी और लिबा मलिक, ये हैं छप्पर वाली मस्जिद काशगंज से। नेहरू चौक पैठण से हैं सुरेश जाधव, अनिता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव। सुधा नारायण के हाली बेंगलोर से हैं। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और खुशी गोस्वामी। सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और हिमाक्ष। बिहार डुमराव से हैं वलीउल्लाह अंसारी। छत्तीसगढ़ से हैं प्रभा जयपुरिया और गौरैया जालंधर से हैं अशोक जाटव। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, ध्वनि सानवी और समस्त छाबड़ा परिवार। छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से हैं नसीम मोहम्मद, हबीब मोहम्मद और इरफान मोहम्मद। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु। काशीराम नगर उत्तर प्रदेश से हैं अनुपमा और कुसुमलता, इनके साथ है अपूर्वा। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुताशु। मुरादगढ़ से हैं रमेश कुमार कंबोज, वंश और भुवेश कुमार कंबोज। सांगली जिले के जत शहर से हैं अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला हुजरे, सबाहत हुजरे। चोहल्दा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया। गाडके नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे। अकरम हुसैन प्रिंस बेगम, इशरत अकरम, वसीम अकरम और इनके साथी हैं महसोल सीतामढ़ी से। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हमारे साथी हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित कुमार राय। रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, गुरशब्द सिंह, ये दो दो बार आप किस लिए SMS भेजते हैं? एक बार जब शामिल हो जाता है फिर से SMS करने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। और बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, अंजलि करवा और इनके साथी। जवाहरनगर दुर्ग से हैं RC कामड़े, करुणा कामड़े। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हैं हरजिंदर भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया। सौराष्ट्र राजकोट से हैं प्रवीण
गुजराती, जगदीश गुजराती और हिरेन भाई। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से है, पंजाब रामटेक, यशोधरा रामटेक, श्राव्या रामटेक। पुराना तालाब डुमराव से है वलीउल्लाह अंसारी, और बक्सर बिहार से है राज एस डी अंसारी। एक जवाब हमारे पास गलत आया है तो ये नाम हम नहीं शामिल कर पाएंगे। अगला सही जवाब देने वाले हमारे साथी हैं रानीगंज बंगाल से, रवि और इंदर। बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा और इनके साथी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा। एस एम जावेद है गुमला झारखंड से। सरिता मौर्य, गौतम बी प्रकाश, कुश गौतम ये हैं साई विहार रामपुर से। गांधीनगर गुजरात से हमारे साथी हैं सुरेश राठौड़ और मंजुला राठौड़। आफताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, अनवर मास्टर ये हैं शेरवानी स्कूल गंजडुंडवारा उत्तर प्रदेश से। कनेरा मोहल्ला पटियाला से है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और समस्त बत्ता परिवार। दिल्ली बिहारी कॉलोनी सहादरा से है तुलसी मस्कीन। अमीर खुसरो रोड गंजडुनवारा से डॉक्टर दबीरुल हसन, शबनम अनवार और शेख मोहम्मद कलीम। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, पूजा परिहार। बांडीवाला फजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, गरिमा बगड़िया। विनय मोहन खारवन जगाधरी से। दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और इनके साथी हैं बलोदा छत्तीसगढ़ से। राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी ये हैं उगाला अंबाला से। छत्तीसगढ़ बोरसरा से हैं वैभवी साहू और विभूति साहू। रायसन करनाल से रजनीश बत्रा, दीपक बत्रा और इनाया बत्रा। सुदर्शन शाह पल्लवी शाह है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा है बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं सोपान तायड़े, विजय तायड़े। मध्य प्रदेश से हैं करना, ये आज आपने पता नहीं किस चीज़ का जवाब भेजा है मध्य प्रदेश, तो हमने किसी राज्य का नाम आपसे नहीं पूछा था तो ये भी नाम हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाएंगे। अगला सही जवाब हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से, जो कि भेजा है मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा ने। जय श्री सुनील है बेंगलोर से। और फिर है जी राजा जी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद, अखिला प्रसाद। शास्त्री नगर बीर शहर से हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल और सोनिया विशाल सपकाल। कृष्ण कुमार गुप्ता ये हैं महोबा उत्तर प्रदेश से। सूर्यकांत है रादौर से, राजकुमार पुजारा, अच्छा माफ कीजिएगा, रादौर से हमारे साथी हैं राजकुमार पुजारा, अनीता पुजारा और साहिल पुजारा। सुनील पाठक, कमल पाठक, गाव्या मल्होत्रा है अनारकली बाजार जगराओं से। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफी, बेनजीर कौसर और मोहम्मद हसनैन पवार। बन बघेरा जिला राजनांदगांव से है योगेश सारवा, आशा सारवा। गंज डुंडवारा से है शमशुल कमर राही और अनु। तो देखिए दोस्तों, नाम जितने भी हमारे पास सही समय तक आए थे वो सभी हमने शामिल कर लिए हैं। इसके अलावा और भी जवाब हमारे पास आए हुए हैं लेकिन वो सभी समय के बाद, यानी कि जो समय सीमा होती है 8:45, उसके बाद जो SMS हमारे पास आते हैं उन्हें हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाते हैं। तो जिन भी साथियों का आज सही जवाब हमें मिला और उनके नाम कार्यक्रम में शामिल हुए हैं तो उन्हें हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी करते हैं कि आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, अपनी भागीदारी बनाई और कार्यक्रम को सफल बनाया। तो चलिए अब सुनते हैं एक और गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल न्यायिक प्रशासन और न्याय तक पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से दो प्रमुख डिजिटल पहल, वन केस वन डाटा और सुसहाय AI चैटबॉट शुरू किए थे। वन केस वन डाटा के अंतर्गत क्या है कि एक डिजिटल एकीकरण पहल है जिसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला अदालतों और के जो डाटा है उनको एकीकृत डिजिटल प्रणाली में करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य केस मैनेजमेंट को सुव्यवस्थित करना और पूरे भारत में एक व्यापक परस्पर जुड़ा हुआ न्यायिक डेटाबेस को बनाना है। जबकि सुसहाय जो है वो एक AI संचालित चैटबॉट है जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के साथ जोड़ा गया है ताकि मुकदमेबाजों और नागरिकों को अदालत से संबंधित सेवाओं तक आसानी से पहुंचने में मदद मिल सके। ये चैटबॉट प्रारंभिक मार्गदर्शन प्रदान करता है और सुप्रीम कोर्ट की जो ज़रूरी सेवाएं हैं और प्रक्रियाएं हैं उन तक पहुंच को सरल बनाता है। इस चैटबॉट को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री के सहयोग से विकसित किया है। अब इनका जो महत्व है वो क्या है? वो ये है कि ये दोनों ही जो पहले हैं ये कानूनी प्रणाली में मानवीय निगरानी के महत्व को बनाए रखते हुए डिजिटलीकरण, सुलभता, दक्षता और प्रौद्योगिकी संचालित न्याय वितरण को बढ़ावा देता है। तो ये हुई बात वन केस वन डाटा परियोजना और सुसहाय AI चैटबॉट के बारे में।

0: मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने टॉक्सिक हो। जहाँ जाते हो वहाँ पूरा एनवायरनमेंट खराब कर देते हो, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं सबके लिए। चुप रहो तुम। अब तुम्हें जान गई हूँ तो अपनी और सबकी लाइफ में जहर नहीं घोलूंगी। हम कंपैटिबल नहीं हैं, मुझे माफ करो। आई एम सॉरी, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ।
1: मने तेरे तो कुछ बात करनी है। जो यो मारा रिलेशनशिप है ना, मैं इसने खत्म करना चाहूँ। देख, तू काम तो हमेशा आया है, शॉपिंग का सामान ठाण में, खाने के डिब्बे ठाण में, मार्केट तो सब्जी लैण में, पर उस तक घना नुकसान कर रखा है। मन ने तेरी कोई बात नहीं सुननी। मने बेरा है तेरी लंबी उम्र है, पर इसी लंबी उम्र का क्या फायदा जो दूसरे की जिंदगी ने खतरा बन जा। तू तो गड़ता मरता भी कोन्या, धरती धरती के तना तो समुन्द्र के जीवा का भी जीना आराम कर रखा है। इब तना और बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस तेरा मेरा ब्रेकअप।
2: हम सब भी तुमसे ब्रेकअप कर रहे हैं।
3: हम भी।
4: तो कैसी लगी ये ब्रेकअप स्टोरी? सभी पॉलिथीन बैग से ब्रेकअप कर रहे हैं, क्या आपने किया? कपड़े के थैले का हाथ थामे, धरती के भविष्य का हाथ थामे। ये धरती खुशहाली से सांस ले रही है।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लाखों लोग HIV के साथ जीवन जी रहे हैं और सही उपचार के साथ वे स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सकते हैं। आज 18 मई है, यानी कि आज हम विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मना रहे हैं। ये दिन केवल एक तारीख नहीं बल्कि विज्ञान, जागरूकता और मानवता के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन उन वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयं सेवकों को समर्पित है जो HIV के खिलाफ सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस वैश्विक पहल की शुरुआत अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीजेज द्वारा की गई थी और आज ये पूरी दुनिया में जागरूकता अभियान का रूप ले चुकी है। अब बात करते हैं कि HIV है क्या। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है और समय पर इलाज न मिलने पर ये एड्स की अवस्था तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं कि ये फैलता कैसे है। तो ये असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित सुई या फिर सिरिंज के उपयोग से, संक्रमित रक्त चढ़ाने से और गर्भावस्था या फिर स्तनपान के दौरान माँ से बच्चे में ये हो सकता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, HIV छूने, साथ बैठने, हाथ मिलाने, भोजन साझा करने से नहीं फैलता है। वर्तमान में HIV की कोई पूरी तरह से वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के द्वारा जो है संक्रमित व्यक्ति लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकता है। समय पर जांच और उपचार से संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। और हाँ दोस्तों, सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। दोस्तों, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए दवा के साथ साथ दया और समझ भी जरूरी होती है। HIV से संक्रमित व्यक्ति को हमारी सहानुभूति नहीं बल्कि सम्मान और सहयोग चाहिए होता है। इसीलिए हमें उनके साथ भेदभाव नहीं बल्कि अपनेपन की नीति अपनानी होगी और खुद के लिए भी कुछ संकल्प लेने होंगे, जैसे हम सुरक्षित व्यवहार अपनाएंगे, नियमित जाँच करवाएंगे, अफवाहों पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक जानकारी पर विश्वास करेंगे, युवाओं और समुदाय को सही जानकारी देंगे। दोस्तों, बीमारी से बड़ी कोई चीज़ अगर है तो वो है हमारी जागरूकता और हमारी मानवता। HIV से लड़ाई केवल प्रयोगशालाओं में नहीं लड़ी जा रही है बल्कि ये लड़ाई हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारी सोच में भी लड़ी जा रही है। इसीलिए याद रखिए, डर नहीं, जानकारी हमें फैलानी है, भेदभाव नहीं, अपनापन हमें अपनाना है, चुप्पी नहीं, जागरूकता फैलानी है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हमें यही संदेश देता है कि जब विज्ञान का संकल्प और समाज का सहयोग एक साथ जुड़ते हैं तो हर चुनौती छोटी पड़ जाती है। तो आइए आज हम सभी मिलकर ये प्रण लें कि हम सब सही जानकारी फैलाएंगे, नियमित जांच को प्रोत्साहित करेंगे, HIV से जुड़ी जितनी भी भ्रांतियां हैं उन सबको दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्वस्थ समाज ही सशक्त राष्ट्र की पहचान है।

दोस्तों, गर्मी का मौसम है और गर्मी बढ़ते ही इंसानों की तरह पशु पक्षियों को भी पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। तेज धूप और सूखे मौसम में प्राकृतिक जल स्रोत सूख जाते हैं, जिससे कई पक्षी और जानवर प्यास और कमजोरी से परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हमारा छोटा सा प्रयास उनके लिए जीवनदायी बन सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी साफ बर्तन में साफ और ताज़ा पानी भर कर रख सकते हैं। हमें उसके लिए रोज पानी बदलना होगा, बर्तन को छांव वाली जगह पर रखना होगा और बर्तन जो है वो बहुत अधिक गहरा ना हो, इस तरह से हो जिसमें पशु और पक्षी जो है वो आराम से पानी पी सके। यानी पशुओं के लिए आप अलग रखिए और पक्षियों के लिए आप अलग बर्तन रख सकते हैं। इसके अलावा आप पानी के साथ साथ बाजरा, चावल, ज्वार, गेहूँ, इन सब के दाने भी रख सकते हैं और थोड़ी घास हो गई या फिर कुछ साग सब्जियाँ जो बच जाती हैं वो भी आप जानवरों के लिए बाहर डाल सकते हैं। इसके अलावा आप जो कहाँ इन चीज़ों को रख सकते हैं, आप जो जानवरों के लिए पानी का बर्तन रख रहे हैं वो आप घर के बाहर रखिए और पक्षियों के लिए घर की छत पर रखिए, छाया के स्थान पर रखिए, और सड़क के किनारे बड़े बर्तन में पशुओं के लिए पानी रखा जा सकता है। इसके अलावा आप जो है बर्तन को रोज़ साफ़ करें ताकि बीमारी ना फैले। प्लास्टिक की जगह मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें ताकि पानी ठंडा रहे। बच्चों को भी सेवा कार्य में हमें शामिल करना चाहिए ताकि वे भी दया और जिम्मेदारी सीख सकें। तो ये हुई बात पशु पक्षियों के बारे में, और आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है aapkibaat@gmail.com। और आप अपनी दोस्त आरती को दीजिए कार्यक्रम सुबह सवेरे यहीं संपन्न करने की इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे का। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वरांजलि।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वरांजलि में और मैं हूं आरती आपकी रेडियो मित्र। दोस्तों चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रेशमा के इस प्यारे से मीठे से गीत के साथ।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: ये आकाशवाणी है,
3: हर पल आपके साथ।
2: समाचार हो या सदाबहार गीत,
3: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
2: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
3: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
2: आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब पेश है कार्यक्रम का आखिरी गीत शुभा मुद्गिल की आवाज में।

साथियों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है aapkibaat@gmail.com। और अब कार्यक्रम स्वरांजलि यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वरांजलि FM 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 9:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती से कार्यक्रम।
1: में गोपी देवी, पारस में बेला देवी नाम से भूमिका को जीवंत किया और इस फिल्म पारस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड दिया गया। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया BFJA अवार्ड। इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार की बहन की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई थी। आइए सुनते हैं पारस फिल्म का गाना।
2: अरे या या या या या या या।

1971 में अमर प्रेम प्यार की कहानी, जिंदगी जिंदगी, रिवाज, बुनियाद, हीरा, बॉबी, जिसमें इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया, जिसे फरीदा जलाल ने बहुत ही सहजता से निभाया। बॉबी फिल्म में एक ऐसी धनी लड़की की भूमिका निभाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी कर ले। फिल्म पारस के बाद इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया, फिल्म मजबूर के लिए, यानी कि मजबूर फिल्म की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। बहुत ही बेबसी और मजबूरी का अभिनय किया था फरीदा जलाल ने, जो बहुत लाजवाब था।

0: हुए।
1: फरीदा जलाल ने 40 वर्ष की उम्र तक सिने जगत में अभिनय किया। 1983 और 1990 के बीच में फिल्मों से ब्रेक लिया और बेंगलोर जाकर शिफ्ट हो गईं। 1990 वर्ष के दौरान फरीदा जलाल ने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू किया और कई मेजर हिट फिल्म में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। 1991 में हिना फिल्म में बीबी गुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। 1991 के बाद भी कई फिल्में आईं जिसमें इन्होंने तरह तरह की चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई। फिल्म पायल, बेखुदी, कल की आवाज, दिल आशना है। 1993 में गर्दिश, सन

1994 में फिल्म आई थी मम्मो, जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम अनवर अली उर्फ मम्मो का किरदार निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही दमदार अभिनय था। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को 2 अवार्ड मिले, एक तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा अवार्ड बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। सन 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई, जिसमें लाजवंती यानी लाजों की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाया और इन्हें अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का।

सन 2000 में हे राम फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई। इस भूमिका को बहुत सराहा गया। यही फिल्म हिंदी और तमिल में साथ साथ बनाई गई। ये फिल्म थी हे राम। सहनायिका बहन, पत्नी, माँ, धाई माँ, दादी माँ, इस तरह की भूमिकाएं आगे चलकर फरीदा जलाल को मिली और सभी भूमिकाओं में इन्होंने अपने खास अंदाज में जान फूंक दी। सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2015 तक अनेक चरित्रों को पर्दे पर इन्होंने साकार किया। सन 2012 में फरीदा जलाल को ए ग्रैंड प्लान फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

1990 के बाद की कई फिल्में बहुत चर्चित रहीं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम, फरीदा जलाल ने कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया, जिसमें देख भाई देख हिट सीरियल था। फरीदा जलाल ने कॉमेडी रोल भी अदा किए। थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत, इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, यूं कह सकते हैं कि लीडिंग रोल था। सन 2005 में मुंबई में 50वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्टेज पर इन्होंने एंकरिंग की। साथ में थे सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे। पंजाबी फिल्म यारिया में एक विशेष भूमिका में फरीदा जलाल नजर आई। सन 1978 में इनका विवाह एक्टर तब्रेज बर्मावर के साथ हुआ, जो कि भटकल के थे। इन दोनों की मुलाकात फिल्म जीवन रेखा की शूटिंग के दौरान हुई थी और दोनों में प्यार हो गया और फिर इन्होंने शादी कर ली। फिल्म आराधना के बाद जीवन रेखा इनकी दूसरी फिल्म थी, जिसमें इन्होंने हीरोइन की भूमिका निभाई थी और साथ में थे उनके पति तब्रेज। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मकबूल हुआ।

फरीदा जलाल का एक बेटा है यासीन। अभिनेत्री फरीदा जलाल के अभिनय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फरीदा जलाल हमेशा उन्नति करें। हम सब विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। शोध, आलेख और स्वर शहनाज अख्तरी का। कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविध भारती से।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। नाम है जिसका नमस्ते कुरुक्षेत्र और संग है आरती आपकी रेडियो मित्र। तो कीजिए स्वीकार आरती का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कार्यक्रम सजीव फोन इन है, लेकिन अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक विशेषज्ञ जिनसे हम जानकारी हासिल करेंगे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में, और उसके बाद हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे आप सभी की कॉल्स और आप सभी के मनपसंद गीत, जिसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा दूरभाष नंबर 01744221322, यानी कि 01744221322। तो कीजिए थोड़ा सा इंतजार ताकि पूरी कर सके हम आपकी फरमाइश। दोस्तों बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उनकी एक छोटी सी तकलीफ भी माता पिता की चिंता बढ़ा देती है, लेकिन अगर बीमारी का समय रहते पता चल जाए और इलाज भी निःशुल्क मिल जाए तो बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। इसी सोच के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश शर्मा जी। तो डॉक्टर साहब स्टूडियो में स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी।
0: जी तो आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम क्या है और इसकी शुरुआत कब की गई।
1: आरती जी मैं श्रोताओं को बताना शुरू करूं उससे पहले मैं सबका स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि आरबीएस के, जैसा कि आपने बताया, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के अंतर्गत चलाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी। इसका उद्देश्य जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान और निशुल्क उपचार सुनिश्चित करना है।
0: जी, और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हर साल जन्म से 18 साल तक के बच्चों में जन्मजात दोष, बीमारियां, पोषण की कमी और विकास में देरी जैसी समस्याओं की शुरुआती अवस्था में पहचान करके उनका समय पर इलाज करवाना है, ताकि बच्चे स्वस्थ और बेहतर जीवन जी सकें। समय पर पहचान होने से बच्चे को उचित उपचार मिलता है और गंभीर विकलांगता या जटिलताओं से बचाव संभव हो पाता है। इसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई, मानसिक विकास और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। यह कार्यक्रम स्वस्थ भारत, स्वस्थ बालक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुरुक्षेत्र जिले में सिविल सर्जन डॉक्टर सुखबीर सिंह और डिप्टी सिविल सर्जन स्कूल हेल्थ डॉक्टर करुणा ढिंगरा के मार्गदर्शन में आरबीएस के कार्यक्रम बखूबी अपना काम कर रहा है।
0: जी, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों में किन किन प्रमुख बीमारियों की या फिर समस्याओं की जांच की जाती है?
1: इस कार्यक्रम की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य संस्थानों में जन्म लेने वाले नवजात शिशु, 0 से 6 वर्ष तक के आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चे, 6 से 18 वर्ष तक के सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे। इस प्रकार समाज के हर आयु वर्ग के बच्चों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी कि जन्म से ही कमर या गर्दन पर फोड़ा होना, डाउन सिंड्रोम, डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ हिप जैसे कूल्हे के जोड़ का विकास संबंधी विकार, जन्मजात हृदय रोग जिसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या CHD कहा जाता है, जन्म से बच्चे के दिल में छेद होना, क्लब फुट यानी कि पैरों का अंदर की तरफ मोड़ा होना, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट होठ और तालू का कटा होना, कंजेनाइटल डेफनेस जन्म से ही बच्चे को ना सुनना, कंजेनाइटल कैटरेक्ट जन्मजात मोतियाबिंद, एनीमिया खून की कमी, गंभीर कुपोषण, विटामिन की कमी, दांतों की बीमारियां, त्वचा रोग, अस्थमा, मिर्गी या विकास में देरी और सीखने में कठिनाई, इसके साथ साथ बिहेवियर डिसऑर्डर या ADHD आदि अनेक समस्याओं की जांच की जाती है।
0: जी, और इसी में एक 4D का भी नियम है, डिफेक्ट्स, डिसीज्ड, डेफिशिएंसीज और डेवलपमेंट डिलेज। तो ये इसका क्या है, इसको थोड़ा सा विस्तृत में आप हमें बताइए, विस्तार में।
1: RBS के कार्यक्रम यानी कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों की 4 प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं पर केंद्रित है, जिन्हें 4Ds कहा जाता है। ये हैं डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज, डेफिशिएंसीज और डेवलपमेंट डिलेज एंड डिसेबिलिटीज। डिफेक्ट एट बर्थ को हम स्पेसिफाई करेंगे जन्म से होने वाले दोष जैसे दिल में छेद या कटे होठ होना, डिजीज बच्चों में होने वाली सामान्य बीमारियां जैसे दमा या स्किन डिजीज या डेंटल कैरीज, डेफिशिएंसीज शरीर में पोषण की कमी चाहे वो एनीमिया हो या विटामिन की कमी हो, डेवलपमेंट डिलेज एंड डिसेबिलिटीज बच्चे की मानसिक या शारीरिक विकास में देरी जैसे बोलने में देरी या चलने में अगर बच्चा देरी करता है तो इसे डेवलपमेंट डिलेज और डिसेबिलिटीज में माना जाता है।
0: जी, और इस योजना के तहत बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कैसे की जाती है? क्या इसके लिए कोई विशेष टीम बनाई गई है?
1: जी हाँ, इसके लिए देश भर में विशेष मोबाइल हेल्थ टीम्स बनाई गई हैं, जिसमें 2 आयुष चिकित्सक, 1 फार्मासिस्ट और 1 एएनएम शामिल होते हैं। हरियाणा प्रदेश में 211 और कुरुक्षेत्र जिले में थानेसर, मथाना, किरमच, झांसा, इस्माइलाबाद, शाहबाद, पेहवा, लाडवा और बबैन ब्लॉक में 9 टीम्स काम कर रही हैं। ये टीमें सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में वर्ष में 1 बार और आंगनवाड़ी केंद्रों में वर्ष में 2 बार बच्चों की स्वास्थ्य जांच करती हैं। जांच के दौरान बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। यदि किसी बच्चे में कोई समस्या पाई जाती है तो उसे कुरुक्षेत्र के सिविल हॉस्पिटल में DEIC यानी डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र जो कि NCD ब्लॉक की पहली मंजिल के 40 नंबर कमरे में है, वहां उपचार के लिए रेफर किया जाता है। वहां से बच्चे को स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है और स्पेशलिस्ट की सलाह पर बच्चों को PGI चंडीगढ़ या स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित किए गए निजी हॉस्पिटल में उपचार के लिए रेफर किया जाता है। ये टीमें आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच करती हैं।
0: जी अच्छा, इसमें आंगनवाड़ी और सरकारी स्कूल्स का जो है उनका इस योजना में क्या योगदान है?
1: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षक बच्चों की पहचान और स्वास्थ्य जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे टीम के आने वाले दिन बच्चों को बुलाना सुनिश्चित करते हैं। बच्चों के माता पिता को जागरूक करना हो या बच्चों को स्वास्थ्य जांच करने के लिए प्रेरित करना, स्वास्थ्य समस्याओं वाले बच्चों की जानकारी देना हो या रेफरल और फॉलोअप में सहयोग करना, उनका सहयोग कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है।
0: जी, और अगर किसी बच्चे में कोई गंभीर बीमारी पाई जाए तो उसकी आगे की क्या प्रक्रिया है? मतलब एक तो आपने बताया कि उन्हें रेफर किया जाता है, उसके अलावा?
1: जी, यदि किसी बच्चे में गंभीर बीमारी पाई जाती है तो हमारी टीम उसे RBSK का रेफरल कार्ड बनाकर सिविल हॉस्पिटल में DEIC यानी कि डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर पर रेफर करती है। जिला अस्पताल से बच्चे को उच्च चिकित्सा संस्थान जैसे PGI चंडीगढ़ या सरकार द्वारा अधिकृत निजी संस्थान में रेफर किया जाता है। जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन या विशेष उपचार भी करवाया जाता है।
0: जी, और इस योजना के अंतर्गत इलाज पूरी तरह से फ्री होता है या कुछ पैसे लग सकते हैं?
1: जी, इसमें इलाज बिल्कुल निःशुल्क है। RBSK के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों के लिए बिना भेदभाव के सभी सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।
0: जी,
1: इनमें स्वास्थ्य जांच, लैब जांच, दवाइयां, ऑपरेशन, हॉस्पिटल में भर्ती होना, फॉलोअप सेवाएं, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, श्रवण शक्ति और दृष्टि जांच, बच्चों का विकास संबंधी मूल्यांकन एवं परामर्श शामिल है। ग्रामीण परिवारों के लिए यह योजना बहुत लाभकारी सिद्ध हो रही है। जांच से लेकर उपचार, दवाइयां, ऑपरेशन और कई मामलों में आने जाने की सुविधा तक पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है।
0: जी अच्छा, इस कार्यक्रम को लागू करने से लेकर के अब तो ताकि ये सुचारू रूप से चल सके, तो इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?
1: जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम बिना चुनौतियों के पूरा नहीं होता है। कुछ क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, बच्चों की कम उपस्थिति, दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँचने में कठिनाई और माता पिता की झिझक, ऐसी चुनौतियां सामने आती हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि गांव के सरपंचों, प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता से हम दूर दराज के बच्चों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करें और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करवा पाएं।
0: जी अच्छा, इस योजना से अब तक बच्चों और परिवारों को क्या लाभ मिल चुके हैं? मतलब कितना लाभ लोगों ने ले लिया है इसका?
1: आरती जी, इस कार्यक्रम के लाभ की अगर बात करें तो हजारों बच्चों की गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान हुई है और उनका निःशुल्क इलाज संभव हुआ है। चाहे बच्चे के दिल के छेद का ऑपरेशन हो या कमर के फोड़े और कटे हुए होठ या तालू का ऑपरेशन, कमजोर बच्चों को निशुल्क चश्मा वितरण हो या जन्म से ना सुन पाने वाले बच्चे को कॉकलियर इम्प्लांट लगवाना, इस कार्यक्रम से परिवारों पर आर्थिक बोझ बहुत कम हुआ है और बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। इस कार्यक्रम की मदद से बच्चों में ऐसी गंभीर बीमारियों का समय रहते पता लगाया गया है जिनके बारे में उनके परिवारों को पता भी नहीं था। बीमारी का समय रहते पता चलने से बहुत से बच्चों को दिव्यांग होने से बचाया गया है और आज देश और समाज की प्रगति में बखूबी अपना योगदान दे पा रहे हैं।
0: जी अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत से लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, उन्हें लाभ मिल रहा है, लेकिन बहुत से माता पिता, अभिभावक आज भी ऐसे हैं जो इस योजना के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में जागरूक नहीं है, तो आप किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं?
1: जी, एक तो आज ही आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का माध्यम सबसे अच्छा माध्यम है जिससे लोगों में जागरूकता प्रदान की जाए।
0: जी,
1: इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूलों, आंगनवाड़ियों, ग्राम सभाओं, स्वास्थ्य मेलों, प्रचार रथों, रेडियो कार्यक्रमों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर की इस कार्यक्रम के लिए जनमानस को जागरूक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
0: जी अच्छा, अगर माता पिता को लगे कि उनके बच्चे की जांच नहीं हुई है तो वो कहाँ संपर्क करें?
1: अगर किसी बच्चे की जांच नहीं हुई है तो अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि PHC या RBS के मोबाइल हेल्प टीम से संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर 7404268487 7404268487 पर फ़ोन करके भी संपर्क कर सकते हैं।

0: जी अच्छा, क्या निजी स्कूलों के बच्चे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
1: जी, निजी स्कूलों की बात करें तो अभी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम का निजी स्कूल में बच्चों की स्वास्थ्य जांच का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 18 वर्ष तक की आयु के किसी भी निजी स्कूल के बच्चे द्वारा DEIC में जाकर इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है और निःशुल्क अपना इलाज करवाया जा सकता है।
0: जी अच्छा, अंत में अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि वो इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सके।
1: जी, मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि बच्चों की छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को कभी नज़रअंदाज ना करें। यदि बच्चा सामान्य विकास नहीं कर रहा है या किसी प्रकार की समस्या दिखाई दे रही है तो तुरंत स्वास्थ्य टीम से संपर्क करें, और जब भी आपके क्षेत्र में आंगनवाड़ी या सरकारी स्कूल में RBSK की टीम आती है तो आप अपने बच्चों को आंगनवाड़ी और स्कूल में जांच के लिए जरूर लेके जाएं। अगर 3 से 6 साल के बीच का आपका बच्चा प्री स्कूल या निजी स्कूल में जा रहा है तो आप उस दिन उसकी छुट्टी करवा लें तो और भी अच्छा होगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। समय पर जाँच और उपचार आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित बना सकता है।
0: जी, और अब आखिर में हम आपकी पसंद का कोई फिल्मी गीत जानना चाहेंगे जो हम जिसे आप सुनना चाहें और हम श्रोताओं को भी सुनवा सकें।
1: जी, मुझे बच्चों का एक बहुत पुराना गीत बच्चे मन के सच्चे बहुत पसंद है जिसे मैं सुनना चाहूँगा। इससे पहले कि आप गीत सुनाएं, मैं SDM थाने सर श्री अमन कुमार जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिनकी वजह से मुझे आज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में आम जनमानस को जागरूक करने का अवसर मिला। साथ ही आपका और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला और एक बड़े ही महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम उसके बारे में जानकारी दी। यकीन है और उम्मीद भी है कि हमारे श्रोताओं को ये जानकारी पसंद आई होगी और वो भी अब इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो चलिए अब आपकी पसंद का गीत हम सुनवाते हैं। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम बताएं
1: लतीफ मोहम्मद रैना, कश्मीर सोनामर्ग।
0: जी। कश्मीर से लतीफ मोहम्मद रैना जी हमसे बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: बिल्कुल बढ़िया जी। और क्या कर रहे थे अभी आप?
1: बस अभी तो
0: हाँ जी,
1: घर में अभी
0: अच्छा घर में है। वैसे आप क्या करते हैं?
1: बस आपने खेती बाड़ी करती।
0: अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है।
1: हाँ,
0: और गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: खुदा गवाह का सुनना है। तू
0: खुदा
1: है
0: गवाह फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं। चलिए, आपकी पसंद को पूरा कर रहे हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

हेलो हेलो हेलो, लगता है दोस्तों जो साथी हमारे साथ कॉल पर थे उनकी कॉल कट हो चुकी है। खैर कोई बात नहीं। हेलो जी दोस्तों, खैर कोई बात नहीं, गीत ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे बात कर लेते हैं एक छोटे से विषय पर। जी हाँ, आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है, पैसों की बचत। जी हाँ, और भविष्य को सुरक्षित करना। समय और धन दोनों की कद्र जो कर लेना दोस्तों, वही जीवन में आगे बढ़ता है। आज की अनिश्चित दुनिया में भविष्य के लिए बचत करना बहुत ज़रूरी है। ये न सिर्फ अप्रत्याशित खर्चों, नौकरी छूटने या फिर बीमारी जैसी परिस्थितियों में सहारा देता है, बल्कि हमें आत्मनिर्भर भी बनाता है। बचत की शुरुआत कैसे करें, ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि बचत बड़ी रकम से नहीं, बल्कि थोड़े से पैसों से भी हम कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके बचत करने की आदत हमें डालनी चाहिए, चाहे पैसे ज़्यादा हो या थोड़े ही हो। नियमित बचत समय के साथ एक बड़ा रूप ले लेती है। अपनी तनख्वाह में से, अपनी कमाई में से एक निश्चित राशि जो है वो हमें सीधे बचत खाते में स्थानांतरित करनी है, या फिर घर में अगर हमने कोई गुल्लक लगाई है तो हम उसमें डाल सकते हैं। इसके लिए हम 50-30-20 का नियम अपना सकते हैं, यानी कि 50 अपनी जो कमाई है उसका 50% हिस्सा जो है वो हम जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उनके लिए हम खर्च कर सकते हैं। 30% जो है वो उसमें से हम जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, हर एक इंसान को कुछ ज़रूरी होती है, कुछ चीज़ें खरीदने का मन करता है ना, कहीं पे घूमने का मन करता है, मतलब जो थोड़े से एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उनमें हम लगा सकते हैं, लेकिन अपनी कमाई का 20% हिस्सा जो है वो हमें बचा कर रखना ही रखना है। ये नियम हमें बनाना होगा। अब इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, देखिए अपनी बचत को अलग अलग लक्ष्यों के अनुसार हमें बांटना होगा। जैसे हमें जब हम पैसे बचा रहे हैं वो हम किस लिए बचा रहे हैं, तो हमें पहले तो ये तय करना है कि हम किस लिए बचा रहे हैं। क्या हम घर खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई करने के लिए, या फिर बुढ़ापे के लिए, किस लिए हम सेव करना चाहते हैं वो हमें सोचना होगा। और अगर हमारे पास बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनके लिए हमें पैसा चाहिए, तो हमें जो भी हमारी बचत है उसके लिए, उस बचत को उन ज़रूरत जो भी हमारे उद्देश्य हैं उनके हिसाब से बांट लेना चाहिए। उसके अलावा सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, यानी अपने मासिक खर्चों की सूची हमें बनानी है। और जैसे कि किराया, भोजन के और बिजली पानी, मनोरंजन, इन सब के लिए। उसके बाद जब आप समझ जाते हैं कि धन कहाँ खर्च हो रहा है, तो हम उसमें से जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पहचान करके उनमें कटौती कर सकते हैं। इसके अलावा बाहर खाने के बजाय हम घर का भोजन ही खा सकते हैं। ज़रूरत और चाहत के बीच हमें अंतर समझना होगा। सेल के आकर्षण में आकर हम कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती, बस ये सोचते हैं कि चलो भविष्य में काम आ जाएगी, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग करते समय भी हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं क्या उसकी हमें वाकई में ज़रूरत है या नहीं। अगर हम दूसरों की देखा देखी खर्च करते हैं, तो याद रखिए दोस्तों कि ये समझदारी दिखाना जो है वो नहीं है, और ना ही ये दिखावा, मतलब ये जो दिखावे में हम पढ़ते हैं ना कि दूसरों की देखा देखी शॉपिंग करने लगते हैं, तो उससे सामने वाला तो खुश हो ना हो, उस पर कोई असर पड़े ना पड़े, लेकिन उसका असर हमारी जेब पर ज़रूर पड़ता है। इसीलिए हमें देखा देखी खर्च नहीं करना चाहिए, बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करना चाहिए। दोस्तों निवेश करना भी ज़रूरी होता है, यानी कि जो पैसा हम बचा रहे हैं उसे हम निवेश कर सकते हैं। जैसे हम म्यूचुअल फंड में, शेयर में, बॉन्ड में, या फिर सुरक्षित बचत योजनाएं जो हैं उनमें हम अपने पैसे निवेश कर सकते हैं। लेकिन निवेश से पहले हमें अपनी जोखिम सहनशीलता और जानकारी का भी ध्यान रखना होगा, और अगर ज़रूरी हो तो वित्तीय सलाहकार से हमें परामर्श ले लेना चाहिए। वैसे सुरक्षित और विश्वसनीय योजनाओं में निवेश कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ एक सरकारी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि बैंकिंग सुविधा से जुड़ने का एक आसान माध्यम है, सुकन्या समृद्धि योजना जो कि बेटियों के भविष्य के लिए विशेष बचत योजना है, अटल पेंशन योजना जो कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन सुरक्षा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो कि लंबी अवधि की सुरक्षित बचत योजना है। तो इन योजनाओं का उद्देश्य जो है वो हर नागरिक को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है, और ये सरकारी हैं तो ये सुरक्षित भी हैं, इसीलिए हम इन योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कर्ज लेने से
से बचना चाहिए। जी हाँ, अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए, ऋण नहीं लेना चाहिए। कई बार लोग क्रेडिट कार्ड खरीद लेते हैं और क्रेडिट कार्ड से ही शॉपिंग करते हैं, फिर बार बार उसका बिल चुकाते हैं, उस पर ब्याज देते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप क्रेडिट कार्ड से बचें और जितना आपकी कमाई है उसमें से ही आप अपनी ज़रूरत को पूरा करें। दोस्तों, आज किया गया छोटा सा प्रयास कल बड़ी सुरक्षा बन सकता है। बचत केवल पैसा जोड़ना नहीं है बल्कि अपने सपनों को सुरक्षित करना भी है। तो आइए आज ही अपने आप से ये वादा कीजिए कि हम समझदारी से खर्च करेंगे, नियमित बचत करेंगे और अपने परिवार के भविष्य को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि सच यही है कि आज की बचत ही कल की मुस्कान है।

0: मैं डंडा लेकर आऊंगा।
1: तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी।
0: मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा,
1: मैं तेरी

0: से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम बताएं।
2: जी मैं नमस्कार, सुमित कुमार बात कर रहा हूँ। अपना रीवा मध्य प्रदेश से।
1: रीवा मध्य प्रदेश से सुमित जी हमसे बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप?
2: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे। आकाशवाणी सुनते हैं?
1: आकाशवाणी सुनते हैं आप? हर रोज सुनते हैं?
2: जी हर दिन सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
1: कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं आप हमारे केंद्र के?
2: बहुत अच्छा लगता है।
1: कौन सा कार्यक्रम?
2: सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
1: अच्छा, और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
2: जी आज हमको सुना दीजिए, सुनील के नाम पर दे गाने से बोला नहीं मैं माता नहीं माता हो गया।
1: चलिए, आपकी पसंद का गीत हम जरूर सुनवाएंगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आज जब हमने सुबह एक इंटरव्यू लिया जिसका विषय था राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आपने वो सुना?
2: जी वो नहीं सुन पाए।
1: नहीं
2: सुना?
1: अच्छा, तो देखिए कार्यक्रम आप शुरू से सुना कीजिए, ताकि अगर हम कोई जरूरी जानकारी उसमें साझा कर रहे हैं तो उसको आप वो आप तक पहुंच सके, है ना, आप भी उसके बारे में जान सके। इसलिए जब कार्यक्रम सुनते हैं तो कोशिश कीजिए कि सुबह मतलब 10 बजे से आप उसको सुन सके, ठीक है
2: जी?
1: चलिए, अभी आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम बताएं।
1: जी, नमस्कार। आपको गुड आफ्टरनून
0: जी नमस्कार
1: आ रहा
0: जी।
1: है। हम गांव खेड़की जिला बिजनौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिव्यांशु यादव।
0: दिव्यांशु यादव जी, क्या करते हैं आप?
1: वर्तमान में तो खेती कर रहे हैं और घर घरेलू कार्य भी करते हैं और पढ़ाई भी जारी, मतलब एडमिशन मेरा काम है हमको।
0: एम कॉम कर रहे हैं आप साथ साथ, और खेती बाड़ी में मतलब किस चीज़, अभी आपने

0: में क्या उगाया हुआ है?
1: गन्ना उगाया हुआ है किसान यहाँ उत्तर प्रदेश में, यूपी में गन्ना ज्यादा होता है।
0: अच्छा अच्छा जी, गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: जी 2001 में माइटी छुपा रुस्तम में गाना है, ये काम कोई दीवाना है, संबंधित लोग हैं आशुतोष जी, विनायक जी, कार्तिक जी, लक्ष्मी भाभी जी, वसुंधरा माता जी, ऋषभ जी और रणधीर जी, श्रीपाल जी, सतीश जी और आरती मैम आप भी रहेंगी।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ये गीत हमें डेडिकेट कर रहे हैं और अपने सभी साथियों को कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके साथी भी आपके साथ ही कार्यक्रम सुन रहे होंगे। और अच्छा, आज हमारे कार्यक्रम में एक इंटरव्यू हमने लिया था, भेंट वार्ता थी जिसका विषय था राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो आपने वो सुना?
1: कुछ सुनी।
0: देखिए तो ये एक कार्यक्रम है जिसमें हमें जो है बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। जो भी हमारे घर में बच्चे हैं उनका जब फ्री में निशुल्क कोई चेकअप होता है ना, तो उसके लिए हमें उसमें भागीदार बनना चाहिए, अपने बच्चों को लेकर जाना चाहिए।
1: आगे उन्हें चल के बड़े होने पर कोई समस्या ना रहा है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: जी जी धन्यवाद, स्वागत है आपका।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: दोस्तों, गन्ने का जूस भारत में एक पारंपरिक पेय पदार्थ है जो गर्मियों में अपनी ताजगी और प्राकृतिक मिठास के लिए लोकप्रिय है। ये न सिर्फ एक स्वादिष्ट पेय पदार्थ है बल्कि इसमें कई पोषक तत्व

भी मौजूद है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन सी, ये सभी इसमें पाए जाते हैं, इस जो कि मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब भी होते हैं जो कि हड्डियों को, मांसपेशियों को और हीमोग्लोबिन संश्लेषण के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और पानी भी जो है 70-75% इसमें मात्रा जो है वो पानी की होती है, जो कि इसे एक हाइड्रेटिंग एजेंट बनाता है इसमें। तो दोस्तों अब जूस पीने के फायदे क्या क्या होते हैं, देखिए गन्ने का जो रस है वो प्राकृतिक शर्करा से भरपूर होता है जो कि शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। गर्मियों में ये डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करता है। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है जो पाचन में सहायक होता है और ये पेट की समस्याएं जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी को कम करता है। गन्ने का जूस लीवर को डिटॉक्स यानी कि उसकी सफाई करने में मदद करता है और पीलिए जैसी बीमारियों से बचाने में सहायक होता है। ये शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालकर लीवर को मजबूत बनाता है। गन्ने के रस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, जिससे कि शरीर संक्रमण से और बीमारियों से बचा रहता है। गन्ने का जूस कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे कि हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। गन्ने के जूस में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को कैंसर जैसे घातक बीमारी से भी बचाने में मदद करता है। तो ये हुई बातें गन्ने के रस की, और अब गर्मियां हैं, गन्ने का रस खूब बिकता है, तो आप पिए और अपनी सेहत को बनाएं। तो इसी के साथ आपको कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है aapkibaat@gmail.com। और अब दीजिए अपनी दोस्त आरती को अनुमति कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विविध भारती से।

सभी सुनने वालों को नमस्कार। रंग तरंग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। यह है लकी अली की आवाज, असलम के बोल और लकी अली का संगीत।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

सोनू निगम की आवाज में आपने सुने फैज अनवर के बोल और साजिद वाजिद की धुन, और अब सुनते हैं सोनू निगम की ही आवाज में ये गाना। नुसरत बद्र के बोल हैं, सोनू निगम की धुन।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: रंग तरंग प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं तेरे बिना एल्बम से अभिजीत की आवाज में नुसरत बद्र के बोल और सप्तर्षि का संगीत।
1: छेतों का हो

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा

रंग तरंग प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अदनान समी और आशा भोसले का गाया हुआ ये गाना, बोल रियाजुर रहमान सागर के हैं।

शान की आवाज में ये गाना अभी आपने सुना और यही है आज के रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर वे उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन आज से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है।

0: केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडसेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याज विश्वस्त।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917, जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़ककर 23,530 पर था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना, मैंने प्यार किया फिल्म से। एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाज है, असद भोपाली के बोल राम लक्ष्मण की तर्ज।

यादों के महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं खुशबू फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है आशा भोसले ने, लिखा है गुलजार ने और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत हम आपके हैं कौन फिल्म से। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ें थीं, रविंद्र रावल के बोल थे, और अब सुनवा रहे हैं आपको ये गाना।

फिल्म लोफर का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
0: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
0: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
0: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
0: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों के महफिल प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं वास्तव फिल्म का गाना सोनू निगम की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने, धुन बनाई है जतिन ललित ने।

धक धक धक तूफान ना उठता है। हाँ

लगे तो ना कर दो, सच लगे तो हाँ कर दो, झूठ लगे तो ना कर दो।

0: आपकी खूबसूरत आंखों में समा सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
1: ये है फिल्म महल का गाना, आशा भोसले की आवाज में। साथ में आप सुन रहे हैं देवानंद की आवाज।

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।

आशा भोसले और डैनी की आवाज़ों में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म काला सोना का गाना। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

0: सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राजुल का सादर नमस्कार। और आज का सुरीला सफर है बन रहा कुछ अलग ही ढंग से, क्योंकि आपके संदेशों में बात है आज की और गुजरे हुए कल की। तो अब आपको बता देते हैं आज का टेक्स्ट। जैसे हमारे कुछ श्रोता जो कि फेसबुक पेज पर, जहां पर गीत भी मिलते हैं और मीत भी मिलते हैं, वहां पर उन्होंने ये टेक्स्ट देख ली होगी। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए हम बता देते हैं आज की ये इबारत। कई बार कुछ ऐसा होता है कि गुजरा हुआ वक्त चुपके से दबे पाँव मन में चला आता है और किसी जादूगर की तरह साकार कर देता है वो बीता हुआ पल। जब कोई मिला या कोई बिछड़ गया, कुछ टूट गया, कुछ छोड़ दिया या कुछ पा लिया, वो पल जहां मन के बावरे पंछी संग रोके नहीं रोकी उमंग, या जहां किनारे पर डूब गई दिल की कश्ती, यादों की उन गलियों में भटकता ही रहे मन, लेकिन सितारे मेहरबान हो तो पुकार लेता है वर्तमान, ओ मितवा आ जा रे। इस गली में कहीं खो सकता है आपका आज, जल्दी से आगे बढ़कर थाम लीजिए अपने आज का हाथ, क्योंकि वक्त कभी ठहरता नहीं। तो चलिए उसी राह पर जिस पर खड़ा है आज, अभी यहीं। तो ये है आज की इबारत, और इस इबारत को लेकर आपने चुन लिए हैं गीत। भाई गीतों की इस लिस्ट में बहुत लंबी सी लिस्ट है, और हमारे कुछ साथियों ने बताया है बहुत सारे गीतों के बारे में। एक श्रोता ने बताया है, कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ ज़माना चुपके से दिल दे दे, चला जाता हूं किसी की धुन में, जादूगर सैयां, इस तरह के उन्होंने करीब 15 गीत छांटे हैं। वाह क्या बात है, गीतों के मामले में कितने संपन्न हैं हमारे श्रोताओं की याददाश्त। वाकई इस बात का हमें कई बार ये भी लगता है कि कितने ज़्यादा गीतों से जुड़े हुए लगाव है आप सभी को। एक श्रोता का जो संदेश है वो कह रहा है कि उसमें कुछ यूं कहा गया है कि आज की भारत ने मन के पक्षी को अतीत में ले गया। सही कहा गया है, आप भूगोल बदल सकते हैं, इतिहास नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का एक अतीत होता है जो जिंदगी के हर मोड़ पर दस्तक देता है। यह अतीत सुनहरा या कड़वा हो सकता है, मगर वे लम्हे जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते। बेहतर है बीते अतीत के बुनियाद पर जीवन को बुलंद कर वर्तमान में जीना ही सार्थकता है, क्योंकि वर्तमान ही हकीकत है। समय की रफ्तार कभी धीमी नहीं होती, लेकिन उसकी गहराई में छिपे यादों के मोती अक्सर हमारे दिल के आंगन में बिखर जाते हैं। कभी कभी हवा का एक झोंका, किसी पुराने पन्ने की खुशबू, या रास्ते में मिला कोई जाना पहचाना चेहरा हमें गुजरे जमाने की गलियों में वापस ले जाता है। वो लम्हे जो पीछे छूट गए थे अचानक सामने आकर दिल को एक अनूठे सुकून और भीगी हुई उदासी से भर देते हैं। वाह क्या खूबसूरत बात कही है। तो बताइए कि आज कई बार वो याद जो ताज़ा हो जाती है किसी ऐसे ही पुराने पन्ने की खुशबू के साथ, या हवा के किसी झोंके के साथ, या किसी जाने पहचाने।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आजकल बिना सोचे समझे इस्तीफा मांगना आम बात हो गई है। मीडिया कर्मियों से बातचीत में श्री विज ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बचाव करते हुए कहा कि वे केंद्र सरकार के सबसे सक्षम और मेहनती मंत्रियों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही यह घटना सामने आई, केंद्र सरकार ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाने के संबंध में श्री अनिल विज ने कहा कि भगवंत मान को शायद प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का उद्देश्य समझ नहीं आता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में विदेश यात्राएं करते हैं ताकि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत हों, व्यापार बढ़े और दुनिया में भारत की स्थिति और सशक्त बने। केंद्रीय ऊर्जा, शहरी एवं आवास मंत्री मनोहर लाल ने पानीपत जिले में बेटियों के शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पानीपत और समालखा में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। आरएपीजी कॉलेज के समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए उन्होंने स्कूली छात्राओं और अभिभावकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा केवल परिवार नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य को मजबूत करती है। समालखा क्षेत्र के वैश्य महाविद्यालय कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। केंद्रीय मंत्री ने पानीपत में साइकिल वितरण समारोह में क्षेत्र की 104 छात्राओं को तथा समालखा क्षेत्र की 144 छात्राओं को साइकिल वितरित किए। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से 1000 साइकिलों का वितरण करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने इस कार्यक्रम में सिग्मा संस्था के अतुलनीय योगदान की प्रशंसा की। हरियाणा के राजस्व एवं शहरी स्थानीय मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के सेक्टर 7 स्थित जन कल्याण मंदिर में करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार फरीदाबाद के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सेक्टर 7 में वर्षों पुरानी जल भराव समस्या के समाधान के लिए लगभग 1.20 करोड़ रुपए की लागत से नई ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है। वहीं सेक्टर 7, 8 और 10 के चौकों पर ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए सड़क चौड़ीकरण का कार्य भी शुरू किया गया है। मंत्री ने कहा कि सेक्टर 7 स्कूल परिसर में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी अभ्यास के लिए मैदान बनाया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर 7 मार्केट के आधुनिकीकरण पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज से जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में पलवल, होडल, हथीन व हसनपुर खंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 80 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले सहायक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जसवीर तेवतिया ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के बच्चों को तंदुरुस्त और स्वस्थ रहने के लिए योग के साथ जोड़ना है।
2: आज ये हमारे जिला स्तरीय योग ओलंपियाड की प्रतियोगिता होने जा रही है। इसमें हमारे 2 ग्रुप है, अंदर 40 और 70। एक इसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को भी भाग लेने के लिए सरकार की तरफ से दिशा निर्देश है। पहले हमारे ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता हुई थी, ब्लॉक में जो टीम फर्स्ट आई है वो आज जिला स्तर पर खेलने के लिए आई है। इसमें हमारे 4 ब्लॉक होडल, हसनपुर, हथीन और पलवल की टीमें भाग ले। मेन उद्देश्य तो यही है सभी बच्चे स्वस्थ रहें, योग करोगे तो निरोग रहोगे, तो उसी उद्देश्य को लेकर के हमारी ये प्रतियोगिता कराई जा रही है।
1: श्री जसवीर देवतिया ने बताया कि प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती के लिए जनवरी फरवरी 2026 की परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवारों को 23 मई को सुबह 5:30 बजे अपने मूल दस्तावेजों सहित सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी में बुलाया गया है। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के निदेशक कर्नल के संदीप ने बताया कि अग्निवीर क्लर्क एसकेटी भर्ती 2025-26 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम www.indianarmy.nic.in पर देख सकते हैं। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमारे एक श्रोता ने खुशी जाहिर की है कि वाह, मेरी लिस्ट का पहला ही गाना मिल गया। बिल्कुल सही बात। जवाब भी आए हैं बहुत ढेर सारे, ज्यादातर दिनेश ठाकुर या अमोल पालेकर जी की बात हुई है। एक श्रोता ने राजेश खन्ना का भी नाम लिखा है, ये रजनीगंधा फिल्म का गाना है। योगेश के बोल सलील चौधरी का संगीत और गाना बैकग्राउंड में चलता है। दरअसल शुरू ये विद्या सिन्हा के चेहरे से होता है और बाद में फिर दिनेश ठाकुर और अमोल पालेकर भी इस गाने में नजर आते हैं। तो भाई ये जो गाना है कि कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है तो मन तोड़ता है जब वो सीमा रेखा और कूद जाता है जाके जल्दी से अतीत की गलियों में। ऐसा जब कुछ आपके साथ हुआ हो उस वक्त के बारे में हम आपसे पूछ रहे थे। बताइए हमें, आज से 10, 15 या 20 साल पहले ऐसी कौन सी बात हुई थी जो आज भी याद करके या तो आप हंस पड़ते हैं या फिर दूसरों को हंसी आ जाती है। संदेश है एक श्रोता का, कहते हैं कि समय किसी के रोके नहीं रुकता, वक्त का पहिया लगातार घूमता रहता है, उसको पकड़ कर चलने में ही समझदारी है। वक्त के साथ ही लोग मिलते और बिछड़ते हैं। हमारा बीता हुआ कल वापस तो नहीं आ सकता, इसलिए हमें भविष्य की चिंता छोड़ आज में जीना चाहिए। बिल्कुल सही बात। एक और श्रोता कहते हैं कि बीता हुआ वक्त लौट कर तो नहीं आता, लेकिन उसकी यादें हमें यह एहसास जरूर दिलाती हैं कि हमारे जीवन में हमने जीवन में कितना कुछ जिया है। कुछ अधूरे सपने, कुछ अधूरी बातें, कुछ बिछड़े रिश्ते, यही सब मिलकर मन एक ऐसी व्यथा पैदा करता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं होता। इन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। यादें हमारे भीतर चुपचाप सांस लेती रहती हैं, कभी रात की खामोशी में, कभी बारिश की बूंदों में, तो कभी अकेलेपन की किसी लंबी शाम में वे फिर दस्तक देती हैं। बहुत सुंदर। एक और श्रोता ने आज शीर्षक से कुछ बात कही है। आज कोई ठहरा हुआ समय नहीं, बल्कि ये वो द्वार है जहां मनुष्य अपनी चेतना को जागृत करके शाश्वत सत्य का साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि जीवन केवल आज में ही धड़कता है। जो व्यक्ति आज में जीता है वो किसी भी कार्य को पूर्ण समग्रता से कर सकने की क्षमता रखता है। यही पूर्णता ही ध्यान यानी मेडिटेशन है। वाह, क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि अतीत के सबसे मोहक पलों में से एक होता है बीता हुआ समय। समय अपने अंदर कितना कुछ समोए रहता है, किसी अपने का मिलना बिछड़ना, यादों के तिलिस्म के ना जाने कितने दरवाजे हैं, मगर जीवन तब जीवन की तरह

रुकता है जब कोई अपना हमें पुकार लेता है। ऐसे लोग जीवन की सबसे बड़ी सौगात लेकर आते हैं। ऐसे में उनका हाथ और साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो है वो बस आज में है, इसी पल में है। बहुत सुंदर बात कही है। और एक और श्रोता ने बताया है कि सुरीला सफ़र में कुछ गाने, गुजरा हुआ ज़माना, वक्त, पल, मितवा, कश्ती आर सच वर्ड्स ऑन विच टूडेज सुरीला सफ़र विल गो ऑन, द रेस्ट डिपेंड्स ऑन द लिस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपकी लिस्ट में इसने, आपने जो शब्द चुने हैं, देखिए उन पर गाने आ रहे हैं या नहीं, और सोचिए तो कोई गाना आपके ख्याल में आ रहा है या नहीं। लेकिन अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपको बताना है फिल्म का नाम और किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे श्रोताओं ने। मधुबाला पर फिल्माया गया है शीरी फरहाद फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, तनवीर नकवी के बोल थे और एस मोहिंदर का संगीत था। श्रोताओं ने अपनी कुछ यादें भेजी हैं। जब मैं छोटा था तब मुझे उस समय की रिलीज हुई नई फिल्मों के गाने बहुत ज्यादा पसंद आते थे, पर जो जो समय बीतता गया मुझे ज्यादा पुराने गाने ज्यादा पसंद आने लगे। आज के समय में तो मुझे नए गाने बहुत कम पसंद आते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता कह रही है कि आजकल किसी छोटे बच्चे को शरारते करते देखती हूँ तो अपने बच्चों का बचपन याद आ जाता है। तब की उनकी शरारतें कभी गुस्सा दिला जाती थी, आज याद कर मन को गुदगुदा जाती हैं। वो वक्त कितना जल्दी गुजर गया जिसे फिर से जीने का मन करता है। काश वो गुजरा हुआ जमाना फिर से आ जाता। बिल्कुल सही बात है, वो पल बीत जाते हैं लेकिन हम उन्हें याद करते रहते हैं। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, फिर भी हम कहते हैं कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। वाकई एक और श्रोता ने आज की इबारत को पढ़कर सुरीले सफर में गुजरे हुए पलों की बातों से संबंधित गीतों को तवज्जो दिया गया है। ऐसा लिखा है, हर इंसान के जीवन में गुजरे हुए पलों की यादें सुखद और दुखद दोनों हो सकती हैं। सबसे ज्यादा बचपन से जुड़ी हर लम्हा और उनकी यादें बहुत कचोटती हैं। काश कोई खोया हुआ बचपन फिर से लौटा दे, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार पुराने सुनहरे पल हमें अपने उसे जोड़ते हैं। पुराने पलों की उन बातें जो अच्छी हैं उनके लिए कृतज्ञता महसूस करें, लेकिन जो पल बीत गया उसको बदला नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करने से शांति मिलती है। उन्होंने कुछ गानों के नाम भी दिए हैं। चलिए अब जरा देखते हैं कि अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। अपनी यादों को हमारे साथ साझा करने के साथ साथ एक बात और, आज विश्व संग्रहालय दिवस है, तो बताइए कि संग्रहालय में ज्यादातर गुजरे जमाने की इतिहास की उन अनमोल यादों को संजोया जाता है जो बहुत खास होती हैं। कभी आपने कोई संग्रहालय देखा है या बचपन में कभी गए हो उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। और अब ये गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के प्रमुख कलाकार कौन हैं।

सही जवाब के साथ आपके संदेश आ गए। संजीव कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना फिल्म मन मंदिर में। गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। और भाई संदेशों की तो क्या ही कहें। नौजवानी के दिन जब बचपना विदा ले रहा था और जवानी दस्तक दे रही थी, उस समय ट्यूशन में पढ़ने वाली एक सहपाठिनी का मेरी गलतियों पर मुस्कुराना याद है। वो

0: कि लेकिन हम कभी एकांत में बैठे पुरानी यादों में खो जाते हैं, तब उन बीते हुए लम्हों में खुद को महसूस करते पहुंच जाते हैं मसूरी के कैंप्टी फॉल में नहाने, जहां यारों की टीम 44 साल पहले कैमरे लिए तस्वीरें खींच रहे थे। लौटते हरिद्वार में गंगा स्नान का वो दृश्य सामने आ जाता है, जब मना करने पर तेज धार में बहने लगे और 2-3 साथियों ने तत्परता दिखाते हमें गहरे पानी में जाने से बचा लिया। उससे भी 10 साल पहले वाल्मीकि नगर रिजॉर्ट में नेपाल और बिहार की सीमा में अभ्यारण्य में घूमने गए, जहां धुंधलाती शाम में एक जहरीले सांप से भेंट हुई और सभी साथियों के साथ कैसे बाल बाल बचे। ऐसे तमाम वो पल जो एक एडवेंचर थे भी याद आए। और परिवार के साथ वैष्णो देवी यात्रा, फिर दिल्ली में 2 दिन ऐतिहासिक इमारतों में घूमना, वो लाल किले में ली गई कई तस्वीरें अच्छे दिनों में पहुंचा देती हैं। बहुत सुंदर यादें हैं आपने संजोई। यादें संजोने के लिए हम कई बार तस्वीरें भी खींचते हैं। आप बताइए कि क्या कभी तस्वीरों का वो एल्बम आप पलटते हैं जो आपने आज से 20-25 साल पहले खींचा था? और हाँ, उस वक्त तो तस्वीरें भी दूसरी तरह से ली जाती थी। अब जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनिए और बताइए कि वो आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और साथ ही बताइए संगीतकार का नाम।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे
2: नहीं ते
1: नहीं ते

राजेश खन्ना और माला सिन्हा पर फिल्माया गया मर्यादा फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आपने सुना। बोल आनंद बख्शी के थे और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। सही जवाब के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया कि मैसूर का किला देखा, राजा का पुराना राजमहल है। विश्व संग्रहालय दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए एक श्रोता बता रहे हैं कि 1989 में मुंबई के संग्रहालय पुरानी वस्तुओं, यादगार चीजें, धरोहर, विरासत, ये म्यूजियम उन्होंने 2 बार देखा है। म्यूजियम में सबसे ज्यादा कौन सी चीज आकर्षित करती है, या जब भी देखा किस चीज को के सामने आप बड़ी, किस जो शोकेस में लगी रहती हैं तमाम चीजें, उनमें से किस शोकेस के सामने आप काफी देर तक खड़े रहे, अगर याद हो तो जरूर बताएं। और हाँ, तस्वीरों के एल्बम की बात भी तो रह गई, कौन सा एल्बम आप अभी तक बहुत सहेज कर रखते हैं और जब तक उसे पलट लेते हैं मौका मिलते ही। श्रोताओं के संदेश कह रहे हैं कि मेमोरीज आर लाइक फोटोज, यू कैन लुक बैक बट यू कैन नेवर गो बैक। बहुत सुंदर बात कही आपने, मतलब यादें तस्वीर की तरह होती हैं, आप उसे पलट कर देख सकते हैं लेकिन उसमें वापस नहीं जा सकते। आज के सुरीले सफर की बातें भी कुछ ऐसे बीते हुए लम्हों से जुड़ी लग रही हैं। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, वापस आती हैं तो सिर्फ उससे जुड़ी कुछ खट्टी मीठी यादें और बातें, किसी से कुछ मुलाकातें जिसे याद कर कभी हमारे मन का बावरा पंछी भी बार बार डोलने लगता है। बीते हुए पल की कसक याद करते हुए कभी उदासी भी छा जाती है, इसलिए भूतकाल को याद कर उसमें से कुछ बोध पाठ लेते हुए वर्तमान को जी भर के जी लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें हंसी खुशी जिंदगी बिता दो। वक्त का पहिया न कभी रुकता है न रुकेगा, इसलिए आप भी दोपहर ठीक 1 बजे VBS के सुरीला सफर में जुड़ जाइए। क्या बात है। और आगे लिखते हैं कि आप सभी का जीवन सफर सुरीला और हंसी खुशी से भरा रहे, यही कामना करते हुए स्वागत है। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने। वाकई वर्तमान में जीना ही समझदारी है, और वर्तमान में जीते हुए ये गीत आपको किन की याद दिला रहा है हमें जल्दी से बताइए। और हाँ, संग्रहालय की बात और अपने एल्बम की बात भी ज़रूर बताइएगा।

इस गीत का जवाब हम जरूर बताएंगे, लेकिन एक सवाल पहले पूछ लेते हैं, क्या कभी वो छूटा हुआ प्यार भी याद आता है आपको, उसके बारे में अगर बताइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो सवाल था हमारा कि इस गाने को सुनकर आपको किन की याद आती है, तो हमारे साथियों ने बताया सरस्वती चंद्र नूतन फिल्म का नाम और अभिनेत्री का नाम इन्होंने बताया है। किसी श्रोता ने मोनीश जी का नाम भी, यानी मोनीश बहल शायद इनका मतलब है, उनका नाम लिखा है। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरा जिला अहमदनगर स्थित कैवलरी टैंक संग्रहालय एशिया में अपनी तरह का एकमात्र और सबसे बड़ा सैन्य संग्रहालय है। फरवरी 1994 में स्थापित इस संग्रहालय में लगभग 50 दुर्लभ और ऐतिहासिक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों का अद्भुत संग्रह है, जो भारतीय बख्तरबंद कोर के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। बहुत सुंदर जानकारी साझा की आपने। तस्वीरों के बारे में हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जितने भी पुराने फोटो हैं सभी को सहेज कर रखती हूं, अपने भाई बहनों के साथ वाले फोटो और अपने बच्चों का बचपन का फोटो, परिवार का फोटो सभी। जब भी फुर्सत में रहती हूं जरूर पलट कर देखती हूं और कुछ उसमें से फोटो निकाल कर उनसे संबंधित लोगों को शेयर भी करती हूँ। वाह, ये तो पुरानी यादें ताज़ा करने का बड़ा ही सुंदर तरीका है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि तस्वीरें खींचने और खिंचवाने का जबरदस्त शौक है और उनका संग्रह करना भी, न सिर्फ एल्बम में बल्कि मोबाइल, लैपटॉप सबके मेमोरी में भी संभाल कर रखती हूं और गाहे बगाहे उन्हें पलट कर देखने का भी शौक है। परिवार में सबके शादी ब्याह की तस्वीरें अपने पास रखना अच्छा लगता है वाकई, और जब देखते हैं ना वो तस्वीरें तो फिर याद आ जाती हैं वो सभी बातें और वो अच्छा हल्का फुल्का वक्त जो गुजरा था उस वक्त। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मेरे ताऊजी की लड़की जो मेरी बहन थी, सन 1971 में उसकी शादी में हमारे सारे परिवार का एक साथ खींचा गया ब्लैक एंड वाइट बड़ा फोटो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। उस समय मेरी उम्र 1 साल की थी और मैं अपने पापा की गोद में नजर आ रहा हूँ। उस फोटो की हमने तस्वीर में बनाकर रखा है, मतलब शायद फ्रेम कराकर रखा है आपने। वाकई ये तस्वीरें तो अनमोल होती हैं। एक और श्रोता ने साझा की है एक तस्वीर की बात, मेरी बेटी की तस्वीर जिसका एल्बम बार बार देखता हूँ, कितनी मासूम मुस्कुराती, आज वो 36 साल की हो गई मगर मुझे बच्ची ही लगती है। सच, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। संदेशों की बात करें तो हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करते हैं। एक साथी लिखते हैं कि आज की भारत यादों की एक ऐसे जादुई आईने जैसी है जिसमें हमारा बीता हुआ कल आज भी खुलकर सांस लेता हुआ महसूस होता है। सचमुच इंसान का मन भी एक अजीब मुसाफिर है जो वर्तमान की सड़क पर चलते हुए भी अक्सर अतीत की पगडंडियों पर मुड़ जाता है। कहाँ क्या छूटा और क्या मिला, इसी उलझन में भटकता रहता है। यादों के समंदर में डूबना तो आसान है पर जिंदगी किनारे पर ही जी जाती है। गुजरे वक्त की जंजीरें कितनी भी रेशमी क्यों ना हो, उन्हें तोड़कर आज के वर्तमान पल का हाथ थामना ही असल मायने में जीना है, क्योंकि जो ठहर गया वो कल था, आज तो चलते रहने का नाम है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज इंसान के बीते समय वक्त पे चर्चा होने की संभावना है। कहावत है, गुजरा वक्त वापस नहीं आता, जिसका वर्तमान सही है भविष्य भी सही होगा। वक्त को पहचानो, अहमदाबाद की घटना ने बहुत कुछ सिखा दिया, पता नहीं पल में क्या हो जाए। वाकई बहुत छोटी सी जिंदगी है और इस जिंदगी को हंसी खुशी से ही बिताना चाहिए सबसे मिलजुल कर रहते हुए। अब इस गाने को सुनिए और फिल्म का नाम बताइए।

अमरदीप फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र का संगीत याद किया है हमारे कुछ श्रोताओं ने। छोड़ दे सारी दुनिया सरस्वती चंद्र फिल्म के गाने की बात की है। नूतन और मनीष अभिनीत फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गीत का फिल्मांकन जूनागढ़ गुजरात के गिरनार पर्वत की सीढ़ियों पर हुआ था। उन दिनों मैं और मेरा मित्र जो जूनागढ़ के नजदीक रहता था उसके साथ शूटिंग देखने वहां गया था, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले फिल्म यूनिट वहां से विदा हो गया था। हमारी बात रह गई हमारे मन में, कुछ कह ना सके उलझन में। क्या बात है। लेकिन कई बार ये प्रयास ही बहुत अपने आप में ऊर्जा भर देता है, उत्साह भर देता है। हमारे एक श्रोता ने ओडिशा कटक नगर के नंदनकानन प्राणी संग्रहालय के बारे में बताया है और कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक संग्रहालय बनाया गया है साइंस, जो सभी ग्रह और सूर्य के ऊपर बहुत सारे तथ्य दिखाता है। प्लैनेटोरियम की बात कर रहे हैं आप। और एक श्रोता कह रहे हैं कि इस उम्र के इस मोड़ पर पहले प्यार को सार्वजनिक करना जोखिम भरा काम है, क्योंकि मेरी पत्नी सुरीला सफर में भी साथ साथ सुनती है। क्या बात है। वाकई कई बार ऐसे जोखिम से तो बचना ही चाहिए। और बात हो रही है पुराने इश्क की, तो बड़ी सुंदर सी कविता साझा की है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखी है, कभी कभी पुराना इश्क बरसों बाद भी दिल के किसी कोने में धीमी आंच सा जलता रहता है। ना वो आवाज देता है, ना कोई शिकायत करता है, बस अचानक किसी बारिश, किसी गीत या किसी खामोश शाम में याद बनकर उतर आता है। बहुत धीरे धीरे पढ़ने वाली कविता है, लेकिन समय की कमी के चलते मैं जल्दी पढ़ रही हूँ। बड़ा ही सुंदर शब्द है। वो इश्क भी अजीब था, न पूरा मिला न कभी पूरा तरह बिछड़ा, बस जिंदगी की किताब में एक मुड़ा हुआ पन्ना बनकर रह गया। आज भी जब तन्हाई में धीरे से दरवाजा खटखटाती है, उसकी हंसी उसकी बातें मन में चुपके से चली आती हैं, मगर अब ना कोई गिला है ना किसी के लौट आने की आस, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर नहीं याद बनकर ही खूबसूरत लगती हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। और ऐसी यादों की बात करते हुए अब इस गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम।

और एक श्रोता ने बताया है कि बैंगलोर में संगीत म्यूजियम देखा है, बेहतरीन है, रिकॉर्ड रूम भी था, वहाँ गाना रिकॉर्ड किया था। क्या बात है, आपने तो बड़ी ही सुंदर स्मृति संजोली। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप कई बार ऐसे सवाल पूछ लेती हैं जिसका जवाब देना चाहकर भी जवाब नहीं दे सकते, जो जवाब देना खतरनाक हो जाता है। ओहो, ठीक है, चलिए, आपने छुपते छुपाते बात कही दी। संदेश भेजा है हमारे एक श्रोता ने, कह रहे हैं कि वक्त एक ऐसे परिंदे की तरह है जो कभी एक शाख पर दोबारा नहीं बैठता, जो लम्हा गुजर गया वो इतिहास बन जाता है। वक्त की उड़ान वाकई एक ऐसी हकीकत है जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही बांधा जा सकता है। ये एक ऐसी खामोश रफ्तार है जो बिना किसी शोर के सब कुछ बदल देती है, बचपन की मासूमियत से जवानी के जोश और फिर बुढ़ापे के तजुर्बे तक, ये सफ़र इसी उड़ान की बदौलत तय होता है। इन्होंने एक शेर मुनीर साहब का साझा किया है हमारे साथ। वक्त की धूप हो या तेज हवाएं, कौन वक्त की धूप हो या तेज हवाएं मुनीर, कौन रुका है यहाँ, किसकी उड़ान बाकी है। एक श्रोता ने बताया कि पल एक ऐसी चैतन्य की अद्भुत व्यवस्था है जो ज्यादा देर किसी से नहीं जुड़ी रहती है। सुख आनंद गानों के साथ जुड़ता जरूर है लेकिन गानों से अलग भिन्न रहता है, इसलिए चैतन्य को हर गाने में आनंद मिलता है। पल पल हर पल विविध भारती के कार्यक्रम से सुखी रहता है और फिर सुख मरता नहीं है। क्या बात कही है, सुखी आनंद चैतन्य का स्वभाव है, इसलिए 24/7 पल हर पल व्यक्त रहती है, परंतु हम मानव को संसार की वस्तुओं में खुशी सुख है ऐसा अभिप्राय मान्यता मात्र है। बड़ी गहरी बात कही आपने। अब जरा इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये गाना किस जगह पर फिल्माया गया है,

वाकई दुनिया फानी है और कुछ ही पलों का साथ रहता है सबका। हमारा आपका साथ भी अब शायद कुछ ही पलों का है और अगले गीत का शायद हम आपको थोड़ा सा हिस्सा ही सुनवा सके। जवाब बिल्कुल सही भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। द बर्निंग ट्रेन फिल्म में गाना ट्रेन में फिल्माया गया, जितेंद्र नीतू सिंह आशा सचदेव पर, बिल्कुल सही जवाब। और एक याद ताज़ा की है प्रेम की। आठवीं कक्षा में पढ़ते अधकचरे प्रेम की याद बहुत बात समझ पाए। मैं कक्षा में आगे बैठता तो एक 14 साल की लड़की बार बार हमसे मदद मांगती, ये सवाल बताओ, ये ट्रांसलेशन बताओ। मेरी आधी कुर्सी पर बैठ जाती, मैं उसकी कॉपी पर जवाब लिखकर डांट देता था। बाद में एक एक्सीडेंट में घायल वो बहुत दिनों की पीड़ा के बाद गुजर गई। उसकी सहेली ने बताया था वो तुमसे प्यार करने लगी थी। उफ उफ उफ, ये जो जानकारी बाद में होती है ये सच में दिल तोड़ देती है। एक और श्रोता ने अपनी 1990 में हुई शादी की जो पोस्टकार्ड साइज के 100 फोटो याद के लिए अभी भी सुरक्षित रखे हैं, क्या बात है। ऐसी यादें तो बड़ी ही खूबसूरत होती हैं और बड़े दिनों तक गुदगुदाती रहती हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि वर्तमान के महत्व के सुंदर भावों में व्यक्त करती है आज की इबारत। स्मृति कभी खुशियां देती है तो कभी बिछड़ने और टूटने का दर्द याद दिलाती है। मन अक्सर यादों की गलियों में भटक जाता है, लेकिन जीवन हमें ये संदेश देता है कि बीते कल में खोने के बजाय आज को संभालना जरूरी है। समय की कभी रुकता नहीं, इसलिए वर्तमान का हाथ थाम कर जीवन को जीना ही आज का सबसे बड़ा सच है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है तो समय निकल जाता है। वैसे समय में कल आज और आज कल में बदल जाएगा और जल्द ही एक समय ऐसा आएगा जो समय तेरा था वो तेरा होके तेरा ना रह जाएगा। बहुत गहरी बात कही आपने। इसी बात पर ये गीत सुनिए और बताइए कि आवाज़ें किन की हैं। साथ ही चलते चलते फिल्म का नाम भी बता दीजिए।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी परिवार पर। परिवार मानव जीवन की पहली पाठशाला होती है। परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं बल्कि प्रेम, संस्कार, सुरक्षा और अपनापन का सुंदर संगम होता है। हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। माता पिता से हमें अनुशासन, त्याग और मेहनत का पाठ मिलता है, तो वहीं दादा दादी, नाना नानी हमें अपने अनुभवों से सही मार्ग दिखाते हैं। परिवार के बीच रहकर व्यक्ति सहयोग, सहनशीलता, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे गुण सीखते हैं। हर परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो माला के धागे की तरह पूरे परिवार को जोड़कर रखता है। फिर वो बड़ा भाई हो, बड़ी बहन, दादा दादी या माता पिता होते हैं। उस धागे की मजबूती पर पूरे परिवार की एकता टिकी होती है, जिनके बदौलत पूरा परिवार एकजुट, एक साथ होता है।

लेकिन मानसिक शांति और सच्चा सुख केवल परिवार से ही मिलता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं उस वक्त हमारा परिवार एकजुट होकर हमारा सहारा बन जाता है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें परिवार का साथ मिलता है। एक अच्छा परिवार समाज की नींव होता है। यदि परिवार में एकता होगी तो ये परिवार समाज में अच्छा उदाहरण बन जाता है। परिवार की वजह से बच्चों को नैतिक शिक्षा मिलती है जो उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। कुछ खास अवसर पर जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, गीत संगीत की महफिल जमती है, तब वहाँ का माहौल इतना खूबसूरत हो जाता है जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते।

मुन्नी तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

0: परिवार जीवन का वो अनमोल खजाना है जिसकी कीमत धन दौलत से नहीं आकी जा सकती। ये वो छाया है जहाँ मनुष्य हर पीड़ा को भूल जाता है। ये वो आश्रय है जहाँ आंसू भी मुस्कान बन जाते हैं। पर आजकल तकनीक ने लोगों को पास लाकर भी मन से दूर कर दिया है। मोबाइल फोन की चमक से रिश्तों की मिठास कहीं कम होती नजर आ रही है। इसलिए आवश्यक है कि कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने परिवार के साथ हमें वक्त जरूर बिताना चाहिए। और उस वक्त जब हमारे अपने हो तो मोबाइल फोन को थोड़े समय के लिए दूर रख देना चाहिए। मुश्किल होती है ना, लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि परिवार ही जीवन का आधार है, समाज की आत्मा है। आपके परिवार में हमेशा प्रेम और रिश्तों की मिठास बनी रहे और घर स्नेह की रोशनी से हमेशा जगमगाता रहे।
1: एक दूसरे से
2: रेखा गुप्ता, टुडे ट्रैवल्ड बाय मेट्रो अंडर मेरा भारत मेरा योगदान एंड मेट्रो मंडे कैंपेन to promote public transport and fuel conservation. Talking to reporters, Ms. Gupta appealed to all residents to use public transport as much as possible. She said the government is making every effort to ensure there is no inconvenience in public transport and to improve last mile connectivity.
3: We are making every possible effort from the government side to ensure that there is no difficulty in public transport. Greater focus is being placed on improving last mile connectivity. When every individual contributes even a little towards this effort, it will greatly benefit the city of Delhi. It will help provide solutions to various problems in our city, from pollution to several other challenges.
2: Delhi Metro is running 24 additional train trips today to encourage the adoption of the metro over private vehicles. Delhi Metro Rail Corporation said the decision has been taken keeping in view the significant role of public transport in ensuring energy efficiency, economic viability and environmental sustainability in the prevailing circumstances. US President Donald Trump has warned Iran the clock is ticking as talks to bring the war to an end have stalled. The remarks come as Washington and Tehran sit locked in a test of wills, waiting to see who blinks first to end the stalemate in the war in the region. In a social media post, President Trump said time is running out and called upon Tehran to move quickly towards an agreement. Meanwhile, Iranian media has reported that the US failed to make any concrete concessions in its response to Tehran's latest proposals to end the conflict. In IPL cricket, hosts Chennai Super Kings will take on Sunrisers Hyderabad at M.H. Chidambaram Stadium. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. In the latest standings, Sunrisers Hyderabad are currently placed third with 14 points from 12 matches, having won 7 matches so far and remain firmly in the playoff race. Chennai Super Kings are fifth with 12 points from as many matches, having registered 6 wins this season. India finished the Asian Weightlifting Championships 2026 in Gandhinagar with 10 medals, including 1 silver and 9 bronze, marking a big improvement from the previous edition in Chiang Shan, where India returned without a medal. Commonwealth Games bronze medalist Lovpreet Singh delivered India's best performance on the final day by finishing 5th in the men's 110kg-plus category. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heat wave to severe heat wave conditions over the plains of northwest India and central India during many days of the week. According to IMD, heat wave conditions are likely to prevail over Uttar Pradesh till Saturday. Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi will also experience similar conditions. The weather agency predicted gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest parts of the country. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Oslo to hold bilateral talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre this evening. Prime Minister Modi says his Sweden visit adds new momentum to bilateral relations as both countries agree to double trade in next 5 years. Congress leader V.D. Satheeshan takes oath as Keralam Chief Minister along with 20 cabinet ministers. West Bengal government approves 7th pay commission for state government employees. Union Home Minister Amit Shah flags off 400 emergency response vehicles in Raipur district of Chhattisgarh. And in IPL cricket, hosts Chennai Super Kings to take on Sunrisers Hyderabad this evening. With that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
5: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
6: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
7: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും.
4: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई. नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं. इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं. नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं. शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी. इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी. राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है. राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे. एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है. ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है. ग्रुप बी पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है. ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है. उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी. मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है. केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती.
8: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी.
4: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें. पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा

0: के नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
1: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
2: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी

0: से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति ये मीठा सा गीत हलाकू फिल्म से लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जय किशन ने।

नजरों का दामन बिछाती ये प्यार की पुकार भला कौन अनसुना करेगा। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। तो आइए अब सुनते हैं मन की दहलीज से गुजरकर दिल के आंगन तक पहुंचता ये गीत क्या कह रहा है। तीन बहुरानियां फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब जो गाना सुनवाने जा रहे हैं वो वचन फिल्म से है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया है, प्रेम धवन ने लिखा है और रविशंकर ने इसे संगीत से सजाया है। तो चलिए हाथों में हाथ लेकर और दिल को साथ लेकर सुनते हैं ये मीठा सा नगमा।

मोहब्बत की एक खूबसूरत सी इल्तिजा उड़न खटोला फिल्म से आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और धुन बनाई थी नौशाद ने। और अब सुनवा रहे हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी का गीत है।

तुमसे मिला दूं, उसको बुला दो शाम।

0: दिल लेकर मीठा से गम का ये तोहफा देने वाला गीत आपने सुना फागुन फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में कमर जलाल आबादी के बोल थे और ओपी नैयर का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं नई दिल्ली फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज है, शैलेंद्र के बोल, शंकर जय किशन का संगीत।
1: मिलते ही नजर

आइए सदाबहार नगमे का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। भरत व्यास के बोल हैं, एस एन त्रिपाठी की धुन, फिल्म का नाम है रानी रूपमती।

जीवन की वीणा पर बसता रहे यूं ही मीठा मीठा प्राणों का राग और जीवन में छाई रहे बहार। इसी संदेश के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं।

0: सहेली
1: सखी सहेली में सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ हैं
2: मंजरी वर्मा। पर आपकी इस स्टाइल ने मुझे एकदम चौंका दिया कि अब क्या बोलने वाली है।
1: यही तो, इसीलिए तुम देख रहे थे ना मंजरी, लेकिन बिल्कुल सजग सतर्क बैठी थी।
2: बिल्कुल
1: नमस्कार। मंजरी का भी,
2: हाँ आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और साथ में हमारी जो सखिया में सखा भाई सुन रहे हैं, उन सभी को भी मेरा प्यार भरा, हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार कह देते हैं। और आज आपके साथ काफी अरसा हो गया, जिसे कहते हैं सखी सहेली में हम लोग
1: मुद्दत हो गई
2: जमाने आपसे मिलना हो ही नहीं पा रहा था। और मुझे याद ही नहीं आ पा रहा था कि कब मैंने आपके साथ ड्यूटी करी थी। तो आज आपको देख कर इस मंच पर बड़ा अच्छा लगा कि फिर से हमारा आपका साथ होगा और फिर से बहुत सारी बातें होंगी।
1: तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तो बताओ ना कि ये जो मुलाकात है ये खास बनने वाली है, तो इस खास बात में क्या क्या खास बातें हैं?
2: भाई खास बात है कि उत्तर प्रदेश के व्यंजन हम लेकर के आए हैं।
1: क्या बात है?
2: जिसमें बनारस की टमाटरी चाट और छेना दही बड़ा।
1: बस बस बस, मतलब मुंह में पानी भरने का इंतजाम तुमने पहले ही कर दिया।
2: पहले ही कर दिया। और मुझे याद है कि एक मेरी चीज पेंडिंग हो गई, आपको पिलानी थी लस्सी आपने बोला था। मुझे याद है, तो मैं वही सोच रही थी जब व्यंजन लेके आ रही थी, मैं सोच रही थी कि आज फिर राजू जी कोई चीज मुझे एक दे देंगी तो मेरे पास दो चीजें पेंडिंग हो जाएंगी पिलाने खिलाने की। तो चलिए ये तो हो गई बातें हमारी व्यंजन की। इसके बाद एक विषय हमने लिया है, मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव। तो ये बड़ा अच्छा सा विषय, प्यारा सा विषय है।
1: ये तो बहुत ज्वलंत समस्या है क्योंकि ये तनाव तो घर घर गूंजने लगा है। कई बार सुनते हैं कि भाई हाँ मोबाइल में ही सब लगे हुए हैं। हाँ
2: जी।
1: और तो, आज एक खास दिन भी है
2: जी।
1: खास एक क्यों, दो खास दिन है। हाँ, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है और
2: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कथा सुधा लेकर हम आए हैं, तो कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग दो, यानी अंतिम भाग हम आज सुनेंगे।
1: बड़ी मजेदार कहानी है।
2: पिछली बार भी हमने सुनी थी और आज भी हम सुनेंगे। हाँ। तो बड़ा अच्छा लगेगा सुन करके। लेकिन उससे पहले राजुल जी, क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।
1: हाँ बिल्कुल, सुनने सुनाने की इतनी बातें हो रही है तो बिल्कुल गाना तो बनता है।

0: तो मंजरी कितना प्यारा सा नीरज का लिखा हुआ ये गीत सुना हमने, सचिन देव बर्मन का संगीत, तेरे मेरे सपने फिल्म का किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। और भाई तुमने शुरुआत में ही आपने कसम ले ली और कसम दे दी,
1: लेकिन वो किस चीज की थी?
0: साथ रहने की, जुदा ना होने की, और कथा सुधा में भी बराबर अपनी भागीदारी जताने की।
1: बिल्कुल, तो कथा सुधा जो हम आज सुनाएंगे तो उसके लिए एक संदेश आया है। ये लिखते हैं कि कोई दुख ना हो तो बकरी पाल लो। प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्गीय व्यक्ति की विवशता, उसकी कुंठा और पारिवारिक कलह को हास्य के माध्यम से बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। नौकर और बीबी के सामने मालिक की बेबसी पाठकों को गुदगुदाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। तो भाई इतनी अच्छी सी कहानी के लिए इन्होंने लिखा है, तो क्यों ना हम लोग कथा सुधा पहले सुना देते हैं।
0: चलो सुनते हैं पहले। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। पिछले भाग में आपने सुना,
3: उन दिनों दूध की तकलीफ थी। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया, मैं अकेले गाय न रख सकता था, गाय आधे दामों बेच दी गई। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
4: देहात की बकरी है, यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
3: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। झटपट मकान बदला, एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। अचानक काछी एक तरफ से आ निकला,
5: आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता, लाइए मैं काट देता हूं।
3: और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
5: चलिए मैं रख देता हूं।
3: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया।
2: आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
3: दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काछी फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रें चुस्त करेगा। उसकी नजरों में गिर जाना मुंह से कालिख लगाने से कम शर्मनाक ना था। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्कू बनकर रहे तो क्या रहे, लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्द्वंद्व आजाद चहलकदमी से हाथ न खींचना चाहती थी, जिसे उसने अपनी साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने जोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। गिटकिरीदार मैने का निरंतर स्वर आ आकर कान के पर्दे को क्षत विक्षत करने लगा। कहां भाग जाऊं, बीवी ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित न करना था न किया। बड़े संकट में जान थी, आखिर मजबूर हो गया। अपने किए का क्या इलाज, 8 बजे रात, जाड़ों के दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे में पांव रखते मेरी रूह कांपती है। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था, अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी ना निकलता था, मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती और पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा होऊंगा और ये बकरी मेरी मालकिन रही होगी, उसी का प्रायश्चित इस जिंदगी में भोग रहा था। बुरा हो उस पंडित का जिसने ये बला मेरे सिर मढ़ी। गृहस्थी भी जंजाल है, बच्चा ना होता तो क्यों इस मुझी जानवर की इतनी खुशामत करनी पड़ती। और ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात न सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया है, कौन सी जायदाद छोड़ी है। ये सजा भुगत कर 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुख ना होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे यह फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी, मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डाल एक पेड़ की जड़ से बांधकर सो गया। अब चरे जितना चाहे, अब चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही, शाम को सिनेमा देखने की ठहरी। एक अच्छा सा खेल आया हुआ था, नौकर को भी साथ लिया, वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैं लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूं कि उसने रस्सी को 2-3 पेड़ों से लपेट कर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी न बची थी कि वो एक कदम भी चल सकती। लाहौल विला कुवत, जी में आया कि कमबख्त को यही छोड़ दूं, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में रस्सी सुलझाने बैठे, लेकिन दिल ना माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेंच दर पेंच ऐठन उसे छुड़ाया। 1 घंटा लग गया, मारे सर्दी के हाथ ठिठुरे जाते थे और जी जल रहा था वो अलग। ये तरकीब और भी तकलीफ दे साबित हुई। अब क्या करूं, अकल काम ना करती थी। दूध का ख्याल ना होता तो किसी को मुफ्त में दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आवाज भी कितनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा भी है, जितनी दूर उसकी आवाज जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियां जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदि है, उसकी कर्कश आवाज से नफरत करे तो क्या ताज्जुब। मुझ पर उसकी कर्ण कटु पुकारों का ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन 1 मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य ना हो, वो इतना नाजुक दिमाग क्यों बने? और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं, 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वो गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा? सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है,

0: यहां तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी था गूलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा, वो आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहां अकेले में कौन मुझे देखता कि मैं पत्तियां तोड़ रहा हूं। अभी अंधेरा हुआ जाता है, पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। मगर इतने पर भी बकरी ने कुछ ची चपड़ की तो उसकी तो शामत ही आ जाएगी। अभी मैं ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा था मगर कौन सुनता, चरवाहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा, देख लिया जाऊंगा तो गालियां पड़ेगी। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा। यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यही शहीद हो जाता। बारे में मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रखकर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब मकान कोई 4 फल्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख ना ले, तो वो काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ ना पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़े थी जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं। सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वो काछी कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है, इस मर्दूत की जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए उसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। वो यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था, शैतानी आवाज कानों में आई,
1: कौन कौन है, कौन है रे, रे कहां से पत्तियां तोड़े लाता है, कौन है?
0: मुझे मालूम हुआ, नीचे से जमीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूं। रोए बरछियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया, जवाब देने का होश ना रहा। तेजी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया मगर वो ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, जैसे गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूं। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वो घृणित आवाज, वो कर्कश आवाज, वो हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वो दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलसा, वो दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में भी जा रही थी। बीवी ने पूछा,
2: आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए? जीना मुहाल किए देती है ये, घर से निकलकर कहीं चली जाऊं ऐसा लगता है।
0: मैंने इत्मीनान दिलाया, भगवान आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसे घर से निकाल कर बाहर करूंगा, चाहे कसाई को क्यों ना देना पड़े। अरे और लोग ना जाने कैसे बकरियां पालते हैं।
2: बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए।
0: सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा क्या लोगे।
3: हुजूर 8 आने बकरी मिलते हैं।
0: मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में पड़ गया।
3: मर कही है क्या बाबूजी।
0: अरे नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता।
3: अभी तो दूध देती है।
0: हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है।
3: दूध आपके घर पहुंच जाया करेगा बाबूजी।
0: तुम्हारी मेहरबानी।
3: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी, यहां तक कि 1 महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज ना किया, काची के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में 1 बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उसने दौड़कर 1 बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली,
2: अरे वाह, अरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं।
0: हाँ बहुत खूबसूरत।
2: जी चाहता है इनमें से एक ले लूं, पाल लूं।
0: तबीयत नहीं भरी अभी तक।
2: तुम तो बड़े निर्मोही हो।
0: चोकर खत्म हो गया, बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिये ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला,
3: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: देवी जी ने कहा,
2: और दोनों बच्चे क्या पियेंगे।
0: और मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से न वो गडरिया नजर आया, न वो बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है।
4: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो।

0: तो बकरी खरीद लो का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काछी जयंत पात्रिकर, काछी की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, गड़रिया राजेश झा। प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: मंजरी, देखिए एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बरसों पहले हमारे पास एक बकरी थी जिसे चरवाहे के घर तक छोड़ने के लिए मैं और मेरा कजन जाते थे, लेकिन आज इस बात को 50 साल बीत गया है। ना वतन में रहते हैं, ना जगह है। सूरत शहर में तो फ्लैट की 9वीं मंजिल है। अब कोई दुख तो नहीं, केवल ये दुख है कि वो बचपन समय और दादाजी पिताजी काकाजी सब चले गए। कजन के साथ ही पुरानी यादें बांटूंगा।
2: क्या बात है। और वाकई में बहुत अच्छा लगा इनका किस्सा सुन करके। और इसी के साथ समय हो चला है अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल।

0: तो राजुल जी, अंतराल के बाद सभी का एक बार स्वागत करते हुए हम
1: फिर से स्वागत है
0: जी। और हम बात करने वाले हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है और ऐसी प्रभावी वैक्सीन के विकास के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टर और संस्थाओं के प्रयास को सम्मान देना है।
1: और इसकी रोकथाम के लिए, जो एड्स है इसकी रोकथाम के लिए, एक सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजने की दिशा में चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को भी बढ़ावा मिले, ये भी इस दिन का उद्देश्य है
0: जी। और ये दिवस पहली बार वर्ष 1998 में मनाया गया था। इसकी प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से मिली थी, जिसमें उन्होंने एड्स वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
1: दरअसल ये एक वायरस है HIV, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, और यदि समय पर इसका इलाज ना हो तो ये एड्स का रूप ले सकता है। और लोगों में एड्स के बारे में जानकारी बढ़े, सुरक्षित जीवन शैली के बारे में वो जाने, उसे अपनाएं, और वैक्सीन अनुसंधान हो ज्यादा से ज्यादा, संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव ना बरता जाए, क्योंकि कई बार एड्स से पीड़ित लोगों को घर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती
0: है। बिल्कुल। और जो इसके बचाव के लिए है कि आप संक्रमित सुई या ब्लेड का उपयोग ना करना है, और समय समय पर HIV की जांच कराना है, अपने रिश्तों को भी अच्छे से बना के चलना है, जागरूकता और सही जानकारी इसके बारे में फैलाना जरूरी है। और संदेश ये देता है कि जागरूकता, शोध और सहयोग ही HIV एड्स मुक्त भविष्य की कुंजी है।
1: और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2026 का जो टॉपिक है, विषय है, वो है पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। ये विषय HIV वैक्सीन अनुसंधान की दिशा में जो सारे विश्व में प्रयास चल रहे हैं उनको मजबूत करता है, जन जागरूकता को बढ़ाता है, रोकथाम रणनीतियों में जो नई नई बातें आती हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, इस बात की कोशिश करता है, और स्वास्थ्य सेवा को फिर से बहाल करके HIV के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का पर भी बल देता है
0: जी। और इसी के साथ हम लोग गीत सुन लें।
1: हाँ, वो तो बहुत जरूरी है।

0: नया दौर फिल्म का ये मस्ती भरा गाना हमने सुना, और अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें।
1: बिल्कुल, मानव सभ्यता का इतिहास, संस्कृति, कला और परंपराएं किसी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती हैं, और इन धरोहरों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य संग्रहालय करते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। इन्हीं के महत्व को समझने के लिए हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
0: और इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इस बात का निर्णय लिया था। और इसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को संग्रहालयों की भूमिका और उसके महत्व के प्रति जागरूक करना। दुनिया में अनेक देशों में ये दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है, और बहुत सारे संग्रहालयों में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं, और साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं।
1: बिल्कुल राजू जी, और संग्रहालय जो है वो हमारे इतिहास और संस्कृति के संरक्षक होते हैं। इनमें प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, कलाकृतियां, हथियार, वस्त्र और वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ने और ये समझने में सहायता करते हैं कि मानव सभ्यता ने किस प्रकार विकास किया है। संग्रहालय जब भी हम लोग जाते हैं तो सभी को लेके जाते हैं, पिकनिक पर भी आपने देखा होगा, स्कूल वाले भी बच्चों को लेके जाते हैं। तो संग्रहालय जाने से बच्चों को ज्ञान बढ़ता है और पुरानी चीजों को देखते हैं कि क्या चीजें थी जो हम नहीं जानते, जिनके बारे में बहुत सारी जानकारियां।
0: हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, कई संग्रहालयों में उस समय के वस्त्र, पुराने पुराने वस्त्र की, जैसे एक संग्रहालय में देखा गया कि उस समय कैसा बनारसी की या किमखाप कैसा चलता था, मलमल कैसा होता था, तो ये सब देखने को मिलता है। बड़ा अच्छा लगता है,
1: बहुत अच्छा लगता है। वजनदार चीजें जो दिखती हैं, ढाल, तलवार, ये सब वजन कैसे वो लेके चलते होंगे, हथियार, घोड़े पर दौड़ना, लड़ाई करना, उस समय के जमाने के जो होते हैं, वो सब देख के तो एकदम अद्भुत लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आजकल की बात करें तो डिजिटल युग में संग्रहालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, और अब ऑनलाइन प्रदर्शनियां और वर्चुअल टूर के माध्यम से लोग घर बैठे भी संग्रहालयों का अनुभव करते हैं। इसमें नई पीढ़ी में इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ रही है।
0: तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षित करें, उनको संरक्षित करने के उपाय करें, और जागरूक भी रहें, और हमें पता रहे कि ये संग्रहालय जो हैं वो हमारे गौरव और पहचान के प्रतीक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इनके महत्व से परिचित कराना चाहिए। वास्तव में संग्रहालय अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली अमूल्य कड़ी है। देखो, देखिए, जैसे जब हम बात करते हैं ना कि ये इनको संरक्षित करना चाहिए, तो कई बार ये कहा जाता है कि इस पर कोई भी अगर शोकेस लगा है तो उसमें अंदर जो चीजें बंद हैं वो तो चलिए सुरक्षित हैं, फिर भी हम उस शीशे पर बार बार हाथ लगाते हैं,
1: सब नहीं करना चाहिए।
0: और कई बार जो चीजें खुले में रखी हैं उनको भी हम उठाने की कोशिश करने लगते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी दूर पर रहती हैं और बीच में एक
1: रिंग लगा रहती है,
0: डोरी लगी, जिससे कि बाधक बाधा रहे, ना पहुंचा जाए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब पुराने, अच्छा, बहुत समय से संजो कर रखा गया है, इनको इसी तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं कि हम अपने हाथ वहां तक ना पहुंचाएं।
1: सही बात है, और इस तरह से हम संग्रहालय में जाके देख सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं, और वहां पर जो बुक्स मिलती हैं राजुल जी, उनके बारे में, उनको भी आप खरीद करके ला सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जानकारियां अपना उपलब्ध आपको मिल जाएगी उस बुक्स।
0: कई संग्रहालयों में शोज भी होते हैं कि लाइट शोज होते हैं, या कोई ड्रामा होता है, या कोई नाटिका होती है, वो भी देखने का अगर मौका मिले तो जरूर देखिए, क्योंकि उससे और भी ज्यादा आपको पता लगेगा।
1: करीब पहुंच जाते हैं, उस समय के करीब पहुंच जाते हैं,
0: है ना। तो चलिए, हम करीब पहुंच रहे हैं
1: गीत के।
0: गीत के

0: व्यंजन बता देते हैं पहले. स्ट्रीट स्टाइल बनारसी टमाटर चाट जो हमने वो बताएंगे.
1: मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जो झगड़े वाली बात है ना मोबाइल को लेके, उसको आपने टाल दिया है सबसे आखिरी के लिए.
0: हाँ,
1: चलिए चलिए, पेट भर जाएगा तो झगड़े कम होते हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल. इसलिए पहले व्यंजन बता देते हैं. हाँ, बनारसी टमाटर चाट. इसकी सामग्री है कि 3 लाल पके टमाटर बारीक काट लें, 2 उबले आलू मैश कर लें, 2 बड़े चम्मच देशी घी या मक्खन, आधा 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर. इतना ही आप चाट मसाला ले लीजिए, और आधा छोटा चम्मच काला नमक, और सादा नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, और 1 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच चीनी या गुड़, और सजाने के लिए आपको सेव, बारीक कटा हरा धनिया, पापड़ी, मछली, थोड़ा सा मक्खन लेना है. और इसकी बनाने की विधि क्या है कि तवा या कढ़ाई गर्म करें, उसमें देसी घी डालें और जीरा हींग डालकर तड़काएं, इसमें अदरक हरी मिर्च डालकर भूनें, कटे टमाटर डालें और चम्मच से दबाते हुए पकाएं. टमाटर जब गल जाएं तो इसमें मैश किए हुए आलू डाल दें, और इसमें सारे जो मसाले हमने बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, इमली की चटनी, थोड़ा सा गुड़, चीनी डालें, और क्योंकि खट्टा मीठा इसका स्वाद आएगा तो इसको लगातार आप चलाते रहें, और ये गाढ़ा और चमकदार जब हो जाएगा तभी आप समझ लीजिए ये आपका तैयार है. और इसको गर्मा गर्म चाट या चाट को कुल्हड़ या कटोरी में निकाल लीजिए, ऊपर से मक्खन, सेव, पापड़ी और हरा धनिया डालकर तुरंत परोसे, और बनारसी स्वाद का आप इसको मजा ले सकते हैं. और आप देशी घी या मक्खन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
1: तो हमारे एक श्रोता ने कहा है कि बनारस गया था लेकिन चाट नहीं खाई, अब की जाऊंगा तो जरूर खाऊंगा. तो मेरे ख्याल से अब तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया होगा कि जरूर खाएंगे. और एक श्रोता कह रहे हैं कि बनारसी व्यंजन की बात हो रही है तो ये तो लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, वहां जाकर ये चाट नहीं खाई तो क्या खाई, छेना दही बड़ा ये नहीं खाया है.
0: तो बस
1: ये मिठाई है नमकीन,
0: ये अब पढ़ेंगे सामग्री
1: पता लग जाए. तो भाई छेना दही बड़ा बनाने के लिए 250 ग्राम ताज़ा छेना या पनीर ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच मैदा, 1 चुटकी इलायची पाउडर, और तेल तलने के लिए ले लीजिए. अब दही में मिलाने है क्या क्या, 2 कप ताज़ा दही हो, उसमें 2-3 बड़े चम्मच चीनी, थोड़ा सा काला नमक मतलब मीठा नमकीन दोनों, भुना जीरा पाउडर, और सजावट के लिए इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा लेना है. और सेब या अनार के दाने ले सकते हैं. कैसे बनाएंगे कि छेने को हाथों से अच्छी तरह मसल लें ताकि वो बिल्कुल मुलायम हो जाए. अब इसमें अरारोट, मैदा और इलायची पाउडर मिलाएं और छोटे छोटे गोल बड़े बना लें. फिर कढ़ाई में तेल गरम करें, मध्यम आंच पर बड़े सुनहरे होने तक तलें, निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख दें. अब दही को तैयार करना है तो अच्छी तरह फेंट के उसमें चीनी, थोड़ा काला नमक और भुना जीरा मिला दें. अब बड़े को हल्के गुनगुने पानी में 2 मिनट डालकर निकाल लें, ज़्यादा देर तक नहीं रखें नहीं तो वो फट जाएंगे. और अब उन्हें दही में डालें, ऊपर से इमली चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च और जीरा पाउडर डालें. छेना जितना मुलायम होगा उतना ही आपका बड़ा स्पंजी बनेगा. और इसको इसमें हल्का सा मीठा दही ऊपर से डाल सकते हैं, चाहे तो ऊपर से किशमिश और मेवे भी डाल सकते हैं. और खास बात तो यह है कि गर्मियों में बड़ा मजा देगा ये, और त्योहारों में भी आप इसे बना सकते हैं.
0: बिल्कुल, आप जब बता रही थी तो बिल्कुल स्वाद मेरे मन में आया जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो अब स्वाद गीतों का आ रहा है.

0: दिल की ये बेचैनी दुल्हन एक रात की फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने धुन बनाई थी। और देखिए मंजरी, हम लोग जो कोई दुख ना हो बकरी पाल लो कहानी सुन रहे थे, तो हमारे एक और श्रोता ने अपना अनुभव बांटा है, हमारे साथ साझा किया है कि बचपन के दिनों में हमारे गाँव के गरड़िया अपनी बकरियों का झुंड लेकर खेतों में और जंगल में जाते थे, तो हम छुप कर किसी बकरी को पकड़ते थे और उसका दूध पलाश के पत्तों को मोड़ कर उसमें निकालते थे और खूब पीते थे।
1: क्या बात बचपन की ऐसी शरारतें तो हम लोगों ने भी की हैं, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे जो हमारे मोबाइल के कारण घर में पति पत्नी के बीच में
0: मोबाइल शरारते
1: कर देता है। तो बस ये सुबह उठो तो लगता है भाई वो तो सबसे पहले उठकर पतिदेव मैसेज किए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज हो रही है और कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ चाय वाय नहीं पीने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक आपसी तनाव होता है,
0: झुंझलाहट
1: होती है कि या खाने के समय भी साइड में मोबाइल चल रहा है और मैसेज देखे जा रहे हैं, तो वो बड़ी समस्या होती है कि भाई खाने के समय खाना खाइए, मोबाइल चलाने के समय
0: बिल्कुल। हमारे एक श्रोता लिख भी रही है कि मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन रहा है। इसे विशेषज्ञ टेक्नोफेरेंस नाम से कह रहे हैं। अब तो बातचीत के बीच में पति पत्नी और वो नाम से इसे संबोधित किया जा रहा है, यानी दाल भात में मुसर्जन।
1: और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव, इससे कोई नहीं बचा है, मेरे घर भी यही सब है, वो पास बैठे रील देखकर मुस्कुराते रहते हैं और हम चुप्पे से अपना काम करते रहते हैं। वाकई में आप चुपचाप काम कर रही थी, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल ने दूर वालों को नजदीक और नजदीक वालों को दूर कर दिया है, साथ रहने वाले परिवार भी घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दूसरा अवगुण हैंड राइटिंग और स्पेलिंग याददाश्त का सत्यानाश कर दिया है।
0: एक श्रोता कह रही है कि आज के समय में मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही मोबाइल रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा देता है। एक समय था जब परिवार और जीवन साथी के साथ बैठकर बातें होती थी, हंसी बांटी जाती थी, अब अक्सर एक ही कमरे में साथ होकर भी लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं, धीरे धीरे संवाद कम होने लगता और वहीं से तनाव जन्म लेने लगता है। रिश्ते समय और अपनापन मांगते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मौजूदगी नहीं। कभी कभी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर अपने जीवन साथी की बातें सुन लेना, उनके साथ कुछ पल मुस्कुरा लेना, फिर से रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। तकनीक जीवन को आसान बनाए, रिश्तों को दूर नहीं, यही समझदारी है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने,
1: बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जहां तक मोबाइल के कारण जीवन साथी के साथ तनाव की बात है, उसमें पति पत्नी दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। मोबाइल से अधिक व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के बीच संवादहीनता, शक और अनदेखी की भावना पैदा होने लगती है, दूरियां बन जाती हैं। इसे हम नजरअंदाज कहना कह सकते हैं, जो आपस के रिश्तों में तनाव और दूरियां बढ़ाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। आजकल घर के हर सदस्य के पास मोबाइल होता है और समय की मांग के अनुसार ये जरूरी भी है, लेकिन इसके कारण के पास बैठे हुए भी मीलों की दूरी बन जाती है। सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस बिन डोर वाले मोबाइल से वो डोर वाला लैंडलाइन फोन अच्छा था, जो घर के सभी सदस्यों को जोड़कर रखता था,
0: एक डोर में बांधे रहता था
1: बिल्कुल। बहुत अच्छी बात लगी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी तो हमें कदम से कदम मिलाना भी उतना जरूरी है। वाकई में ये बहुत पॉइंट अच्छा दिया है कि वो तो वहां डोरी के साथ बंधा है, अगर फोन आएगा तो हम उठ के जाएंगे तभी रिसीव करेंगे, टाइम नहीं लगा रहेगा।
0: ये समस्या तो है, लेकिन बस यही है कि अति हर चीज की बुरी होती है। और देखिए ना, शिकायतें भी हो रही हैं और गीत भी चल

0: भाई साजन बिना सुहागन का ये गाना पूछ रहा है कि कैसे जीत लेते हैं, और हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे जीता जाए। तो मोबाइल में की भूमिका को जरा हाँ थोड़ा कम किया जाए तो जीत लिया जाए दिल। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहले तो मोबाइल नौकरी वालों के पास ही रहा करता था, लेकिन अब तो पुरुष तो पुरुष, बहुत सारी महिलाओं के हाथों तक ये मोबाइल पहुंच चुका है, और चलाते समय बिना किसी सहायता के भी आसानी से अपनी रुचियों के हिसाब से नेट प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम देखते रहना उनके शौक भी हो गए हैं। नतीजा साफ है कि एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी लोग अक्सर ही आवाज़ धीमी करने की शिकायत करते हैं, और अगर अलग अलग बेड पर सोएं तो इसमें फिर आश्चर्य की क्या बात है। हाँ, ये बात तो होती है ना कि सोते समय भी कोई ये देख रहा है, तो जबकि सोते समय थोड़ा मोबाइल से दूर बरतना, दूरी बरतना अच्छा रहता है।
1: हाँ, बेड से आप दूर ही रखिए, मोबाइल मेज पे रखिए, तब आप सोइए, उसको पास रखना भी नहीं चाहिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारी पत्नी तो रही नहीं, दोनों बहू और बेटों की तू तू मैं कभी ना कभी महीने पर सुनता हूँ, क्या कर सकता हूँ। बस नाती नातिन से कह देते हैं मम्मी की मोबाइल पापा को चुपके से दे दो, और पापा की मोबाइल मम्मी को, फिर सब शांत हो जाता है। वाकई में पति पत्नी के साथ जब दोनों बैठे हों तो सबसे जरूरी है कि आप मोबाइल को दूर ही रख दें, और जो समय मिला है आपको पास बैठने का, बातें करने का, तो आप उससे अच्छे से बात कर लें।
0: एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मोबाइल काफ़ी चीज़ों को निगल गया है। आज समाज परिवार के बीच की दूरी का कारण मोबाइल है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, रिश्ते में तनाव का कारण भी मोबाइल है। आज परिवार भी छोटा हो रहा, समाज के अर्थ को भूल गए हैं। आज कोई व्यक्ति कष्ट में है तो मदद नहीं कर वीडियो बनाते हैं, आज हम अपने असली रिश्ते को भूल कर डिजिटल रिश्ते खोज रहे हैं। तो वाकई बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो आज हमने उठाई है, और हमारे श्रोताओं ने उस समस्या को कितनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है इस बारे में भी बताया है, लेकिन वक्त की कमी है।
1: बिल्कुल, और चलते चलते यही कहेंगे कि जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना है वो इस समय जब अपने पति पत्नी साथ में हो तो मोबाइल हटा दें। और हम लोग लेते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा, तो सभी को मंत्री वर्मा और
0: राजुल का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूँगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या, और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है?
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज़ जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज़ अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज़ का जो एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज़ पे, तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज़ ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में ज़रूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो, तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो, पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज़्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
0: बड़ी अच्छी जानकारी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं।
1: जी प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, सोर्सेज में उसी हिसाब से बताओगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स, एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते हैं, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊंगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर, जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज छूटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ
0: जी।
1: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
0: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
1: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, और ये सारी चीजें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज खा सकते हैं, और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है। तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मैं बता रही थी, ये वो चीजें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीजें साथ में खानी पड़ती है। दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धान्य जो बेसिकली हमारे हैं, वो है हमारा सेकंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन,
0: जिसमें आम भाषा में या गांव में कई इसको कठोर कहा जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कठोर या कड़धान्य जैसे हम बताते हैं, ये जो प्रोटीन है, इस ये बहुत जरूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, कुछ चीजें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके लिए हमें उसके फायदे ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज हम कॉम्बिनेशन में, जैसे बताए, दो चीजें साथ में ले ले, तो ये कंप्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी खिचड़ी।
0: अच्छा।
1: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं, या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि अनाज और कड़धान्य दोनों साथ में आए हैं। तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने जमाने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है, और हमें कुछ चीजें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेज, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
0: अच्छा,
1: तो पहला अगर मैं देखूँ तो दूध और दूध के पदार्थ है, यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है। दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है जो करीब करीब कंप्लीट है। और तीसरा है जो मेरे कड़धान्या है, जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊं तो वो उतने ही अच्छे है जितना मेरा दूध अच्छा है,
0: अनाज के साथ।
1: बिल्कुल
0: जी जी।
1: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे। जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी, ये सारा आ जाता है। ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं। भले दूध और इसकी जो
0: सिमिलरिटी,
1: हाँ, जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
0: जी, आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
1: हम नहीं बदलेंगे, गोलमाल अगेन से।
0: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या-क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले। हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की, जहाँ तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और एक एज के बाद, 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40, वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का ज़माना है और ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो जरूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध, वैसे दूध वाली चीजें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदे मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का जमाना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट पे सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। तो उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की जरूरत नहीं है, हम वो चीज घर पे ही बना सकते हैं। और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
0: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
1: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज्यादा बेहतर बन जाता है। उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो कच्चे है तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीज है वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाफ देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा ये बताइए कि फायदे तो होते हैं, प्रोटीन जरूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है, कई बार ये मिथ है या सच है कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
1: प्रोटीन नुकसान कर सकता है ये बात सच है, लेकिन ये बात सच है जब हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन नुकसान करता है।
0: वो कौन सी हैं?
1: जैसे किडनी के डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
0: बतौर एक आहार विशेषज्ञ आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है, तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
1: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच, क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेस बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती है जहाँ पे उनकी किडनियाँ काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज परहेज नहीं करनी है।
0: प्रोटीन ले सकते हैं,
1: बिल्कुल ले सकते हैं, और जरूरी है वो ले ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है, तो उनको इंश्योर करना है कि जितना जरूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज्यादा नुकसान होगा। उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से, जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे। इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, जो हम बोलते हैं कि
0: बीज वाले बंद कर दीजिए, टमाटर बंद कर दीजिए,
1: बीज वाली चीजें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है।
0: जी जी, ये व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है।
1: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है, आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए?
1: ये वादा रहा, इस मूवी से ये वादा रहा
0: टाइटल सॉन्ग सुनना है आपको।
1: जी बिल्कुल।
0: ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था। हम सुनवा रहे हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है, वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो।
0: अच्छा।
1: वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे, कि इतना सारा पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के अब्सॉर्ब भी हो गया तो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा।
0: ओ, हैवी हो जाएगा।
1: बिल्कुल, वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक ग्लास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो पॉसिबल भी है, और वो तब शरीर ज्यादा आसानी से यूज कर पाएगा। शरीर को पचाने के लिए समय मिल जाता है और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा।

0: यूज करेगा जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे, वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीजें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीजों की एक साथ जरूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है।
1: जी जी जी, तो इसका मतलब ये प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
0: और एक सिर्फ छोटी सी चीज ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहां पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की जरूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
1: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी एक डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें और शाम को जो मिला खा लें, तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
0: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज़ है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूंगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना।
1: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में, इसका डिटेल बताइए आप।
0: ज्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी, और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी ज़रूरत है उतनी खाएं, तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
1: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
0: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे प्रोटीन कम करने की जरूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर, और उसमें लिवर की मदद लगती है, तो जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहाँ पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है, कि जितना वो प्रोटीन ज्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है, अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है, जैसे मैंने बताया, किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज या क्रॉनिक किडनी डिसीजेस जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है,
1: सीरम क्रिएटिनिन,
0: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, ये टाइम पीरियड है जहाँ पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है, और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
1: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए?
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है।
1: जैसे दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से।
0: बिल्कुल, दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से। आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो। आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है। आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है। आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
1: जी जी जी भैया, बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
0: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
1: जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व। और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स होता है,
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं,
1: जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए जरूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन्स है वो है फैट सोल्युबल विटामिन्स। तो ये विटामिन्स के लिए जरूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखें खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स है, ठीक है, वो ऐसे विटामिन्स है जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है, क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स है वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर।
0: अच्छा।
1: तो ये हमें रेगुलरली लेना जरूरी बन जाता है, क्योंकि फैट सोल्युबल शरीर में बैकअप हो सकता है, लेकिन वाटर सोल्युबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज के रोज लेना है।
0: ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है, उतनी ही विटामिन की भी होती है। लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी जरूरी है?
1: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है। वो खाने से तो मिलता है, लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत जरूरी है विटामिन डी के लिए, और इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए, जब अच्छी धूप हो तब टहल के आए। जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं, तो हम बहुत इंटेंसिव वॉक में रहते हैं पैटर्न में। एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करे, ये जरूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट जरूरी है।
0: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं, वो क्या क्या हैं?
1: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन्स और अलग अलग सोर्सेस है, और ऐसे जरूरी नहीं है कि एक चीज से एक ही विटामिन आएगा। हमारे काफी सारे खाने की चीजें ऐसी है,
0: जैसे
1: फल हो गए, जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज्यादा विटामिन्स होते हैं, ठीक है। आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है, बट वो उतनी ही जरूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये एक चीज कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन्स खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है, क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है। जो रीजन है प्रोटीन खाने का, वो रीजन नहीं हो पाता है कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास वो विटामिन ही नहीं है। तो ये सारे छोटी छोटी जो चीजें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इम्पोर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज्यादा विटामिन्स होते हैं, जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है।
0: जैसे ऑरेंज है,
1: जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है, मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है, और अगर मैं सब्जियां लूं तो जितनी कलरफुल सब्जियां ले तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन मिलेंगे हमें। जितनी ज्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज्यादा विटामिन हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये नो पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी, बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स आप ग्रहण कर रहे हैं।
0: बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहतनामा कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है, फिर म्यूजिक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
1: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16 साल मूवी से
0: हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना
2: है।

0: साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या-क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन्स है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब मेरी आंखें ड्राई हो रही है या कमज़ोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: या
1: जिस
0: धुंधलापन।
1: धुंधलापन वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन्स कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोलबल सोर्सेस है तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है। जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन्स होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में।
0: जी।
1: दूसरा विटामिन जो बहुत ज़रूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोलबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है,
0: इसका
1: और
0: क्या काम होता है?
1: ये ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत, और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीजन है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शंस आ सकते हैं, क्योंकि स्किन त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज़ बन जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे।
0: जी।
1: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है यानी शाकाहारी सोर्सेस है।
0: जी।
1: ये मेजर सोर्सेस है, इसके अलावा भी काफी सारे हैं बट ये तो ज्यादा जरूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इंप्रूव करता है।
0: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है।
1: जी। तो और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है।
0: जी।
1: तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीजों में रहती है जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है, तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
0: नींबू है,
1: नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी एक परसेंटेज ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज देखी जाए तो मिर्ची, मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी होता है, हरी मिर्च में। तो ये चीजें है हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे।
0: जी। और देखिए, आहार जो आपने बताया है कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियां होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा।
1: जी, ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन्स का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या ना दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात फैट सोल्यूबल विटामिन्स की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे या हम कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे। जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीजन से या कारण से ज़रूरत से ज़्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं, वो मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, या फिर वैसी कोई चीज़ नट्स हो गया जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है, पर जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा। तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ कभी नहीं खानी चाहिए, हर चीज़ रोटेशन पर रखो, हर फ्रूट्स हर सब्ज़ी रोटेशन पर रखो, जितना आप उसे अलग अलग चीज़ें खाएंगे अलग अलग समय पे उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे।
0: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए।
1: इश्क बुलावा हंसी तो फंसी पिक्चर से।

0: विटामिन की बात चल रही थी, एक आपने कहा था कि विटामिन की जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक 5 चीजों से बनता है। सिर्फ ये 5 चीज अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो 5 चीजें क्या है? पहला है आपका अनाज, तो आप चावल ले लीजिए या गेहूँ ले लीजिए या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो, ठीक है। कड़धान्य, जैसे मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है, तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। तीसरा है आपकी सब्जियां,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती है।
0: क्या बात है,
1: तो सब्जियां होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, बट ये जरूरी है, इसमें विटामिन्स भी है और आपका फाइबर भी है जो आपके खाने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए चिकन, ये सारी चीजें मेरा चौथा कंपोनेंट है। और आ जाता है मेरा फैट, यानी ऑयल या चर्बी जो होती है। नाउ फैट्स जो है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट के किसी काम के नहीं है, और फैट्स बुरे नहीं है, ये हमें ताकत भी देते हैं, तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज करें तब वो नुकसान नहीं करेगा, तब वो फायदा करेगा। तो ये जब कंपोनेंट्स है, मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ, और इसके साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है पानी, जिसे हम ज्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज्यादातर दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, तो पानी एक बहुत जरूरी चीज बन जाती है, जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब तक ये चीजें, 5 चीजें बैलेंस में रह रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे, हम परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहे। फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो, या फिर आप उसमें भाकरी ले लो, या आजकल मॉडर्न जमाना है, पास्ताज एंड पिज्जाज का जमाना है, तो वो पास्ताज एंड पिज्जाज भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हम आग बंद

0: कि ये आग बंद करके ये फॉलो ना करे जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाए इस चीज के पीछे
1: कितनी हमें आवश्यकता है।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही, तो एक कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से

0: ज्यादा जरूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ है, डायबिटीज, उनके लिए ये चीज बहुत काम करती है। उनके लिए भी ये चीज बहुत काम की है जिनको वजन कम करना है
1: जी,
0: तो उनके लिए ये फाइबर बहुत जरूरी हो जाता है और खाने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी जरूरी वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। और पानी खाने के बाद इसके लिए लेना बोलते हैं कि पानी पी के आप पेट भर लोगे तो कुछ नहीं खाओगे, और प्लस वो एक टू एक्सटेंड एक तरीके से वो आपका विटामिन्स या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है, तो जो एसिड्स है स्टमक के वो उनको डिफिकल्ट बना देता है कि वो चीजें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई है, डिजोल्व हो गई है। तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए या खाने से पहले ले लीजिए, तो वो पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाड करता है, मेरा पेट भर देगा तो मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज़ के मरीज हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं वो अपना आहार लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
0: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं हैं। अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की जरूरत है, पर अगर आप ठीक हो,
1: जैसे बीपी की गोलियां चल रही है,
0: तो मिलना जरूरी है, एक बार मिलना जरूरी है, आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशंस की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलके समझना जरूरी है कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नुकसान कर सकता है। काफी बार हम चीजें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फायदा कर रहा है, या ये चीजें हम अवॉइड कर दे रहे, जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं क्योंकि दूध में चर्बी है ये कंसिडर करके, बट अगर वो गाय का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है, और
1: या फिर वो बिना मलाई का दूध,
0: एग्जैक्टली, अगर वो बिना मलाई का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है। तो हर चीज के लेने का तरीका होता है, वो एक बार समझना बहुत जरूरी है, एक बार आप वो समझ ले फिर आप खुद से चीजें कर सकते हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये पहले जानना, और वो भी किसी चिकित्सक से या किसी डायटिशियन से जानना जरूरी है, क्योंकि वो उन्हें पता है, वो क्वालिफाइड पीपल है, वो इंटरनेट से पढ़ी हुई जानकारी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, उन्हें उस चीज का नॉलेज है, उस चीज की इन्फॉर्मेशन रहती है।
1: और ये भी नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये सूट करता है तो मुझे भी करेगा,
0: बिल्कुल
1: व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका शरीर अलग होता है,
1: उसकी प्रकृति अलग होती है,
0: प्रकृति अलग होती है, और एज के हिसाब से भी चीजें चेंज हो जाती है। आपकी एज और दूसरे बंदे की एज में भी अगर समानता भी है तो मेडिकल कंडीशन अलग हो जाती है, उनके काम करने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका, हर एक इंसान अलग है, उनकी जरूरतें अलग है, वो एक चीज पे नहीं मापी जा सकती। और अगर सिंपल चीजें देखी जाए कि हम क्या करें ये चीजें इंश्योर करने के लिए, तो दो तीन सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो कर ले तो वो बहुत मदद करेगा। तो सिंपल रूल्स में ये रख सकते हैं कि जैसे विटामिन्स अगर हमें चाहिए कि हम रोज खाएं, तो एक नियम ये बना लीजिए कि रोज खाने में सलाद खाएं और अलग अलग कलर्स के सब्जियों वाला सलाद खाएं, तो हमारे अलग अलग विटामिन्स आ जाएंगे। रोज दो फल खाएं, सीजन्स के हिसाब से फल चेंज करें, क्योंकि हर फल का अपना इंपॉर्टेंस होता है।
1: जैसे गर्मी का मौसम है तो कौन से फल प्रेफर करने चाहिए?
0: आम, गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा आम रहेगा, और आम अच्छा है जब हम कंट्रोल में खाएं। कुछ ही ऐसे रोगी होते हैं जिनके लिए वो नुकसान करता है, तो जैसे मैंने बताया रोगियों के लिए तो चिकित्सक या डायटिशियन की सलाह लगेगी, बट हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे खासे विटामिन्स है, तो वाटरमेलन भी अच्छा है, गर्मी में अभी वाटरमेलन की भी सीजन है तो वो भी खा सकते हो। तो जैसे जैसे आपकी सीजन चेंज होगी वैसे वैसे आपके फल चेंज होने चाहिए, और जितना हो सके उतना सीजन को फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज प्रिजर्व्ड है और मेरे को आम अगर गर्मी की सीजन छोड़ के अगर ठंडी की सीजन में मिलने लगे तो मैं आम चूज करूंगी, तो वैसा नहीं करना है। उसे जितना हो सके फ्रेश लाइए, हमें प्रोसेस्ड या प्रिजर्व्ड फूड नहीं चाहिए। और तीसरा ये किया जा सकता है कि प्रोटीन इंश्योर करने के लिए हर एक मील में जब भी हम खाना खाएं, बी इट ब्रेकफास्ट या दोपहर का खाना या शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज तो कम से कम रखनी है। एक से ज्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी जरूरत पूरी होगी, तब तक हमारी जरूरत नहीं पूरी होने वाली है।
1: वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समापन की ओर मोड़ दिया जाए, कि चलते चलते

0: समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट है, विटामिन्स इम्पॉर्टेंट है, सोर्सेज इम्पॉर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की ज़रूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है। अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ रह जाती है, वो है खाने का समय। अगर हम ये चीज़ें खाने वाले हैं तो कब खाने वाले, ये भी ज़रूरी है। तो आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते, आप काम कर रहे हो, आप घर पे हो, आप हो हाउसवाइफ हो, या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज का, कि 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है। और रही बात, कुछ ये बोलते हैं कि 2-2 घंटे पे लेना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे खाने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2-2 घंटे पे लिपिया जा सकता है, यानी लिक्विड्स हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है। स्पेशली अभी गर्मी की सीजन है, हम पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया, या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया, या फ्रूट जूसेस हो गए। तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से ले, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज्यादा ना हो, बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है, तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा। और जो हमें चीजें, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, जितनी भी चीजें चाहिए, वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एक ही साथ खत्म कर ली, जिसकी हमें जरूरत नहीं है।
0: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व बताया आज के इस कार्यक्रम में। हम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल शाह से। आज का विषय था प्रोग्राम का, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा, और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को। नमस्कार।

अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा, लेकिन उससे पहले ये गुमशुदा सूचना। मंजीत सिंह पुत्र प्रकाश दीवान कॉलोनी पेहवा से 16 मई 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है, रंग गेहुआ, गोल चेहरा, उम्र 31 साल, कद 5 फुट 6 इंच, पैंट शर्ट पहनी हुई है और पाँव में जूता पहने हुए हैं। इनके बारे में किसी को अगर कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस फ़ोन नंबर पर सूचित करें 9996796410। एक अन्य सूचना के अनुसार नंदिनी पत्नी गुलाब सिंह, देविका पुत्री गुलाब सिंह, लाठी धनोरा जिला कुरुक्षेत्र से लापता है। नंदिनी का हुलिया इस प्रकार है, कद 5 फुट 3 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल, लाल रंग का सूट सलवार पहने हुए है, पैरों में जूती पहने हुए है और उम्र करीब 32 साल है। और देविका की उम्र है 9 साल और कद 3 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल, लाल रंग की फ्रॉक और पजामी पहने हुए हैं। इनके बारे में अगर कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस फ़ोन नंबर पर सूचित करें 7404854481। गुमशुदा सूचना समाप्त हुई। अब आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी और शाम 6:20 पर गीता संदेश के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे गीता के 3rd अध्याय के श्लोक 20 से 23 तक की व्याख्या। प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर विशंबर दास की। कार्यक्रम अन्नदाता का प्रसारण होगा शाम 6:30 पर और शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम संसार। कार्यक्रम जय जवान का प्रसारण होगा शाम 7:30 पर। शाम 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता और रात्रि 8 बजे आप सुन सकेंगे हमारा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम चांदनी रातें। और अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने नए पुराने। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम की रूपरेखा। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संबंध का ये गीत।

अभी आप सुन रहे कार्यक्रम गाने नए पुराने FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

श्रोताओं नमस्कार। आज के ये वाणी कार्यक्रम में हाजिर हूँ मैं आपके साथ आपका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं युवा फरमाइश और साथ ही आपको जानकारी देंगे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के बारे में। तो शुरू कर रहे हैं हम आज का ये कार्यक्रम और चर्चा हमारी है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। वर्ष 1983 में 18 मई को संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालय की विशेषता और महत्व को समझाते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाने का निर्णय लिया। इसका मूल उद्देश्य जन सामान्य में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता और उनके कार्यकलापों के बारे में जन जागृति फैलाना था। इसका यह भी एक उद्देश्य था कि लोग संग्रहालयों के बारे में जानें, अपने इतिहास को, अपनी प्राचीन समृद्ध परंपराओं को जानें और उनको समझें। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अनुसार संग्रहालय में ऐसी अनेक चीजें सुरक्षित रखी जाती हैं जो मानव सभ्यता की याद दिलाती हैं। संग्रहालय में रखी वस्तु हमारी सांस्कृतिक धरोहर है तथा प्रकृति को प्रदर्शित करती है। वर्ष 1992 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ने ये निर्णय लिया कि वे प्रत्येक वर्ष एक नए विषय का चयन करेंगे एवं जन सामान्य को संग्रहालय विशेषज्ञों से मिलने का संग्रहालयों की चुनौतियों से अवगत कराने के लिए स्रोत सामग्री विकसित करेंगे। श्रोताओं ये चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: फिल्म राब्ता का ये गीत सुनना चाहा था। जवाहर नगर दुर्ग से सीआर कांबड़े, करुणा मीना अश्वनी और विपुल कांबड़े। और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है बड़ा बाम्बो सिपाही साई गांव से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश ताती और उनके परिवार के सदस्यों का। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत का ये संदेश हम पढ़ रहे हैं। आइए अब कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाएंगे ये संदेश।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
4: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
3: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
4: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
3: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
4: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें
3: आकाशवाणी
4: विश्वास की आवाज।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओ, हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा चयनित 2017 का विषय मानव जाति के निहित चुनौतीपूर्ण इतिहास की समझ से बाहर जो पहलू हैं उनको कैसे समझना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी। एक महत्वपूर्ण उस समय का ये विषय था। और अगर हम बात करें कि कई बिंदुओं के दृश्य के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से दर्दनाक इतिहास को संबोधित करने में सक्रिय भूमिका निभाने में ये जो संग्रहालय हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उस दौर की जो चीज़ें हैं उनको उसी रूप में हमारे सामने प्रेषित करने का प्रयास करती हैं। कई बार हम किताबों के माध्यम से उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम किसी संग्रहालय में जाते हैं तो हमारे सामने उस समय के भी जो दृश्य हैं वो जीवंत हो उठते हैं। और इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की जो है वो स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद या इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, ये संग्रहालय पेशेवरों का एक वैश्विक क्षेत्र है जो कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को वर्तमान, भविष्य और भूतकाल के माध्यम से उनको संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध होता है और साथ ही आम जन जो है उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है ताकि वे भी अपनी संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें, वो उनसे जुड़ सके, इसलिए इस परिषद का गठन किया गया था। अब दोस्तों, कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं आगे और आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गेस्ट इन लंदन का ये गीत। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश आया है। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति जिंदल, संजीव बंटी और समस्त खुशदिल परिवार। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। ये संदेश हमारे पास पहुंचा है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोडाने, अर्चनाताई गोडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोडाने। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

श्रोताओ, अगली जानकारी हम आपको दिए चलते हैं विश्व एड्स टीकाकरण दिवस के बारे में। आज है 18 मई और इसी दिन विश्व एड्स टीकाकरण दिवस भी मनाया जाता है, जिसे HIV टीकाकरण जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। HIV टीकाकरण के समर्थक इस दिन HIV संक्रमण और एड्स की रोकथाम के लिए टीके की निरंतर और अत्यंत आवश्यक जो है आवश्यकता पर बल देते हैं और जो इसके मरीज हैं उनको ये जागरूक करने का काम करते हैं। भी हजारों स्वयंसेवकों, समुदाय के सदस्यों, स्वास्थ्य पेशेवरों, समर्थकों और वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हैं जो एक सुरक्षित और प्रभावी एड्स टीका खोजने के लिए मिलकर जो है काम कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वे आग्रह भी करते हैं कि HIV एड्स महामारी के व्यापक समाधान के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में नई जो तकनीक है उनमें निवेश को ये महत्व दें और उसकी आवश्यकता को भी ये पहचानें। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की जो अवधारणा है वो 18 मई 1997 को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा दिए गए दीक्षांत भाषण में निहित है। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते युग में दुनिया को नए लक्ष्य निर्धारित करने और अगले दशक के भीतर एड्स का टीका विकसित करने की चुनौती देते हुए कहा था कि केवल एक वास्तव में प्रभावी और निवारक टीका उसकी बहुत ज़रूरत है और इस तरह से उसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए कि ये जो महामारी है ये जड़ से खत्म हो जाए। आइए अब कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं आगे और सुनते हैं फिल्म एनिमल का ये गीत, जिसको सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश आया है। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओंकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हिंदी मीडियम से हम आपको सुनवा रहे हैं और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश आया है। गांव उगाला, जिला अंबाला, हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और हरमन, और ये संदेश हमारे पास से पहुंचा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और एस के पप्पी खुराना। तो आप सभी के पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हिंदी मीडियम का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं आकाशवाणी दिल्ली से। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात शाम 6:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार। उसके बाद आकाशवाणी रोहतक से प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे शाम 6:10 पर। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
0: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट जारी की। श्री गोयल ने कहा, वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए नियमों को मंजूरी देने सहित कई फैसले लिए। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024-25 के दौरान 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत जारी पिछड़ा वर्ग ए और बी के नॉन क्रीमी लेयर के प्रमाण पत्रों को वैधता देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। देश के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद, एलपीजी और तेल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी और चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के पेट्रोल पंपों पर अस्थायी रूप से ईंधन का नियंत्रित वितरण लागू किए जाने संबंधी समाचारों का खंडन किया। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट जारी करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए नियमों को मंजूरी देने सहित कई फैसले लिए गए। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए नियमों को हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के तहत सड़क परिवहन एवं मुख्य मार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुसार मंजूरी दी गई है। यह फैसला राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ते जिलों में बेहतर परिवहन को बढ़ावा देने, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए लिया गया है। संशोधित नियमों के तहत इस वर्ष 1 जनवरी से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई कॉमर्स कंपनियों के बेड़े में शामिल नई गाड़ियां आवश्यक तौर पर बैटरी, सीएनजी या किसी दूसरे स्वच्छतम ईंधन पर से चलने वाली होंगी। नए नियमों के अनुसार एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर को यात्रियों के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज, चालकों के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और वाहन चलाने वाले चालकों के लिए कम से कम 10 लाख रुपए का अवधि बीमा करवाना अनिवार्य होगा। इन नियमों के तहत गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, पैनिक बटन, फर्स्ट एड किट और आग बुझाने का यंत्र लगाना भी अनिवार्य किया गया है। एग्रीगेटर्स को यात्री की मदद और शिकायत दूर करने के लिए 7 दिन 24 घंटे काम करने वाले नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर भी बनाने होंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल ने 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान जारी पिछड़ा वर्ग ए और पिछड़ा वर्ग बी के नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्रों को वैधता देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2024 में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर अध्यापक पीजीटी के 3069 पदों के लिए जारी भर्ती विज्ञापनों के मद्देनजर लिया गया है, क्योंकि 23 जुलाई 2024 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार इन श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को नवीनतम सरकारी निर्देशों और 16 जुलाई 2024 की अधिसूचना के अनुरूप नए प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता थी और पहले जारी किए गए प्रमाण पत्रों को हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वैध नहीं माना जा रहा था। इस कारण पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएं भी दायर की गई थी, जो उम्मीदवार 2021 की अधिसूचना के अनुसार नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत वर्गीकृत थे, वे संशोधित मानदंडों के तहत भी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में ही बने रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में फील्ड कैडर के अधीक्षक के पद के लिए हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग उप कार्यालय कॉलेज कैडर ग्रुप बी सेवा नियम 2026 को मंजूरी दी। ये नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार नियुक्ति के लिए केवल शैक्षणिक योग्यता और अनुभव पदोन्नति और स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तय किया जाएगा। उप अधीक्षक के रूप में एक वर्ष का अनुभव या सहायक के रूप

0: 10 वर्ष का अनुभव होना और अधीक्षक के रूप में 1 वर्ष का अनुभव, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत या उच्च शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी विषय होना अनिवार्य किया गया है। देश के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और सभी रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। आज नई दिल्ली में पश्चिम एशिया संकट की स्थिति पर हुई अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में LPG और तेल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं, पेट्रोल डीजल LPG और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट पिछले 2.5 महीने से ज्यादा समय से जारी है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और LPG की वैश्विक कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर भारत के आयात पर भी पड़ रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के पेट्रोल पंपों पर अस्थायी रूप से ईंधन का नियंत्रित वितरण लागू किए जाने संबंधी प्रसारित समाचारों का खंडन किया है और इन्हें भ्रामक एवं फर्जी बताया है। इन खबरों में स्थानीय आपूर्ति संबंधी बाधाओं का हवाला देते हुए दोपहिया वाहनों के लिए 500 रूपये तथा चौपहिया वाहनों के लिए 1500 रूपये तक ईंधन सीमा निर्धारित किए जाने का दावा किया जा रहा है। चंडीगढ़ के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पेट्रोल अथवा डीजल की बिक्री पर किसी प्रकार की कोई सीमा या प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और तेल कंपनियों ने पुष्टि की है कि आपूर्ति बिना किसी बाधा से सुचारू रूप से जारी है। जींद के राजकीय महाविद्यालय में आज 59वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉ. रामपाल सैनी पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक, NCC, NSS और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 450 से अधिक विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। समारोह के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ. रामपाल सैरी ने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सत्यवान मलिक की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राजकीय महाविद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर काम कर रहा है।
2: बड़ी खुशी की बात है कि इस कॉलेज ने अपनी जो धरोहर है, अपनी जो परंपरा है, उसको मेंटेन करके विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का बीड़ा उठा रखा है। मैं इसके लिए यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर सत्यवान मलिक जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। ये भी बड़े कमाल की बात है कि कॉमर्स के 3 टॉपर इसी कॉलेज के हैं, दूसरे PGDCA का टॉपर इसी कॉलेज के हैं और भी बहुत से विद्यार्थी हैं। कल्चरल एक्टिविटीज में भी, स्पोर्ट्स में भी, NCC NSS में भी और पढ़ाई में भी।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट जारी की। श्री गोयल ने कहा, वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए नियमों को मंजूरी देने सहित कई फैसले लिए। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024-25 के दौरान 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत जारी पिछड़ा वर्ग ए और बी के नॉन क्रीमी लेयर के प्रमाण पत्रों को वैधता देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। देश के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद, LPG और तेल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी और चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के पेट्रोल पंपों पर अस्थायी रूप से ईंधन का नियंत्रित वितरण लागू किए जाने संबंधी समाचारों का खंडन किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं गीता संदेश।
4: श्रोताओ, आज गीता संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के आगे के श्लोकों की व्याख्या प्रस्तुत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जनकादि कर्म योगियों का उदाहरण देते हुए कर्म की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्तिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपर्शन कर तुम।

0: धसी। अर्थात जनक जैसे राजाओं ने केवल निरासक्त भाव से कर्मों को करने से ही परम सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए लोक संग्रह की दृष्टि या सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम कर्म करने योग्य हो। जनकादि राजा ब्रह्म तत्व को जानने वाले सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे शास्त्रोक्त कर्म करने के लिए बाध्य नहीं थे। फिर भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु वे मिथिला के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सभी परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में दुष्टों के विनाश के लिए एवं धर्म की पुनः स्थापना के लिए हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसी स्थिति में युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि ज्ञानी व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। ज्ञान में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें। श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जनः सह यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। श्रेष्ठ पुरुष हमेशा आगे चलता है और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए आपको यह फैसला करना है कि आप आगे चलना चाहते हैं या पीछे। संसार में अधिकतर यह देखा जाता है कि जो हमारे आदर्श होते हैं या जिन्हें हम पसंद करते हैं हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। किसी भी क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं पूरी दुनिया उन्हीं के जैसा करने की कोशिश करती रहती है। आदर्श एक होता है और उनके अनुसरण करने वाले बहुत सारे होते हैं। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। किसी संत ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए, क्योंकि छात्र उन्हीं को अपना आदर्श मानकर वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी हो, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है, अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और न ही ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में भी सबसे महान है, सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त बौद्धिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सभी के आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके समान है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं। फलस्वरूप उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम से संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। यही उनके चरित्र की विशेषता है और यही विशेषता हमें ग्रहण करनी चाहिए। यदि हयम न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अगर मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार से मेरा ही अनुसरण करते हैं। और अगर आदर्श या भगवान ही कुछ नहीं करेंगे तो मनुष्य तो सब कुछ करना ही छोड़ देंगे। जो सबसे बड़ा होता है और सर्वश्रेष्ठ होता है, सब उनका अनुसरण करते हैं। और अगर श्री कृष्ण ये सोचते कि मैं तो भगवान हूँ और मैं कर्म नहीं करूँगा, तो उन्हें किसी और को ज्ञान देने का क्या अधिकार रह जाता। ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने हर कर्म का पालन किया। कर्म से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें उनके पदचिन्हों से भी यही सीखना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करनी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं, जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बुद्धिजीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पदचिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रोताओं, आज आपने गीता संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 20 से 23 तक की व्याख्या सुनी।
1: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अन्नदाता।

कार्यक्रम अन्नदाता सुननीय सारे बण भाइया ने चतुर भाई की ओर से राम राम। भाई कार्यक्रम में अगर बात हम करें तो पहले तो खेत क्यार की अगर बात करें तो खेत में आप देखने लग रहे हो कि कुछ भाई अपनी जो कुरड़ी है उस कुरड़ी ने समेट के और भाई खेत के अंदर बखेरन लाग रहे हैं। लेकिन भाई इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो कुरड़ी जो है वो खेत में बखेर रहे हैं, तो वो कुरड़ी लगभग 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कच्ची गोबर की खाद मिट्टी में डालोगे तो उससे दीमक लगने का खतरा हो जाए, और इन दिनों खेत भी खाली पड़े हैं। तो ऐसे में हमने अपने खेत की बाई करके और उसको खुला छोड़ दे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी भी अच्छी पड़ रही है और ऐसे में जो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, फफूंद है, जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो ऊपर आ जाएंगे, या तो फिर उन्हें पक्षी खा जाएंगे या फिर वो नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये जो समय है, अब आप देखने लग रहे हो कि शिखर दोपहरी जो है उसके अंदर कितनी गर्मी हो रही है। टाइम वक्त की अगर बात करें तो मौसम इतना गर्म हो चुका है कि लगभग 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर जो है वो जा लिया है, तापमान जा लिया है। और ऐसे में पशु पक्षी और इंसान जो है वो सब अपना गर्मी से बिलक रहे हैं। लेकिन भाइयों एक बात का और ध्यान रखना है कि जो पक्षी हैं, जो बेचारे बेजान जानवर हैं, उनका भी थोड़ा है ध्यान रखना है। उनके लिए आपने क्या करना है कि कोई पुराना गड्ढा पड़ा हो, पुराना कोई अपना कसोरा पड़ा हो, तो उसमें छाया के नीचे पानी जरूर गाल दें ताकि वो पक्षी पानी ने पी के और अपनी प्यास बुझा सकें। क्योंकि इस मौसम में बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो अपनी बिना पानी के अपनी जान गंवा बैठे। खैर ये तो रही बात जो इस समय हमने करना है, जो काम इस समय हमने खेत क्यार में करना। और दूसरी बात भाई जो पनीरी लगा रहे हैं, खास तौर पर जो धान की पनीरी लगा रहे हैं, तो भाई वो थोड़ा जरूर ध्यान रखें, अपना बेड जो है पनीरी का बेड जो है थोड़ा ऊंचा रखें। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाए मी बूंदी का टाइम हो रहा है कि बरा किस टाइम गरड़ फरड़ हो जाए, तो मी बूंदी तो क्या होगा कि आपकी जो लगाई हुई जो बेड है उस बेड के अंदर पानी भर जाएगा और वो उस पानी से आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि हमने पनीरी जो है वो थोड़ा ऊंचे पे हमने लगानी है। फिर बात आवे है कि भाई जो खेत खाली पड़े हैं, खेत को खाली हमने नहीं पड़े रहने देना है। क्योंकि अगर खेत खाली पड़े रहेंगे तो हमने आके फसल भी तो लेनी है। तो ऐसे में जिन भाइयों ने अगर धान की नर्सरी तो तैयार कर ली है, धान की जब उसकी बिजाई करेंगे तो प्योद जब लगाओगे तो खेत में हमने पानी भी चाहिएगा और इसके साथ साथ खाद भी चाहिएगी। लेकिन खाद का अगर हम जिक्र करें तो इस टाइम पे आप ढैंचा लगा सकें। अगर आप ढैंचा लगा दोगे तो जो हरी खाद है वो खाद हमने धान की फसल में काम आ जाएगी, और जो नाइट्रोजन है उसका भी थोड़ा बहुत हमने रासायनिक खाद जो नाइट्रोजन की है उसकी भी हमने कम मात्रा देनी पड़ जाएगी। इसके अलावा भाई जो हम बात करें हरे चारे की, तो इस टाइम पे हरे चारे की बहुत ज़्यादा दिक्कत किल्लत आ जाए, क्योंकि पशु रखने भी बहुत ज़रूरी हैं और पशुओं के लिए हरा चारा भी बहुत ज़रूरी हो जाए। क्योंकि अगर सूखा चारा हम उन्हें देंगे तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत आ जाए। तो इन दिनों में आप हरे चारे के लिए मक्का की जो बिजाई है वो कर सके हैं, क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है। और ऐसे में मक्का की हरे चारे की फसल जो कि पशुओं के लिए चारे के रूप में अगर हम उन्हें देंगे तो पौष्टिक भी है, स्वादिष्ट भी है और पशु जो है बड़े चाव से खावे।
और इस चारे में लगभग 7-9% जो क्रूड प्रोटीन है वो भी मिल जाए। और रबी और खरीफ दोनों मौसम में हम मक्का उगा कर हरे चारे के रूप में अपने पशुओं को दे सके हैं, जिससे पशुओं का पेट भर जाए और पशु उसके बदले हमने दूध दे दें। और रही बात सिंचाई की, तो भाई सिंचाई जिन दौर पानी के अच्छे साधन हैं तो भाई वो तो अपना हरे चारे के लिए जो है मक्का की बिजाई कर सके हैं। और उसमें जो है बाजरा और मक्का दोनों मिलमा की बजाय जो है आप सिर्फ हरे चारे के लिए जो है ज्वार की बजाय मक्का की फसल जो है अगर उसकी बिजाई करें तो काफ़ी बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ज्वार की फसल में जो है वो धुरीण नाम का एक जो जहरीला पदार्थ है वो लगभग पैदा हो जाए, उससे लगभग जो है 40-50 दिन पहले जो है पशुओं को खिलाना ठीक नहीं। अगर आप 40-50 दिन पहले उसकी कटाई ज्वार की कटाई करके पशुओं को देंगे तो पशुओं के लिए वो चारा हानिकारक हो सकता है, और ऐसे में पशुओं को खिलाना ठीक नहीं। और मक्का से अगर हम मक्का की बात करें तो मक्का से चारे की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हमने उन्नत किस्मों का भी ध्यान रखना है। और उन्नत किस्मों की अगर हम बात करें मक्का की, तो अफ्रीकन टाल है, विजय कंपोजिट है, जवाहर है। और इसमें जो अफ्रीकन टाल की अगर हम बात करें वो सबसे ज़्यादा चारा देने वाली फसल है और लंबे समय तक हरी रहने की, हरा जो इसका टहना है, इसकी टहनियाँ हैं वो और पत्ते जो हैं ज़्यादा समय तक हरे रहे हैं। खेत की तैयारी तो आप सब जानो हो, और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी, और उसमें जो है थोड़ा सा भुरभुराहट होना जरूरी है, और लवणीय और क्षारीय नून वाली या फिर उसमें कोई ऐसा वो खेत की मिट्टी जो है वो चारे की फसल के लिए अच्छी नहीं रहती। इसलिए कोशिश हमने ये करना है कि अभी अपने अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा के और उसी हिसाब से जो है हमने फसल लेनी है। और बिजाई से पहले जो है वही बात कि गहरी जुताई करके पड़े वाला के अच्छी तरिया बत्तर आने पर 2-3 जुताई करके स्वाग जरूर ला ले ताकि डले जो है वो फूट जाए। रही बात बिजाई के टाइम का, तो वही इस टाइम पे वैसे तो मार्च के दूसरे पखवाड़े में हम बिजाई कर सकें, लेकिन जुलाई से पहले पखवाड़े में भी हम मक्का की बिजाई कर सके हैं ताकि हरा चारा हम अपने पशुओं को दे सकें। बिजाई और बीज का जो ढंग है, बुआई का जो ढंग है उसकी अगर हम बात करें तो वही वो मक्का की बिजाई के लिए लगभग जो बीज की मात्रा रहेगी वह रहेगी 24-28 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और बिजाई जो है वो हमने 30 सेंटीमीटर चौड़ी लाइनों में करना है। और मक्का और लोबिया की अगर मिलमा खेती अगर आप करना चाह रहे हैं पशुओं के लिए चारे के लिए, तो भाई मक्का के बीज की मात्रा बिजाई के अनुपात में ही हमने करनी है, ताकि लोबिया के बीज की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ ज़्यादा हमने रखनी है, क्योंकि भाई मिश्रित खेती हमने करनी है। और मिश्रित खेती में हमने इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि जो पौधे हैं वो थोड़े है अच्छे हमने मिल जाए और हरा चारा हमने अपने पशुओं के लिए बढ़िया मिल जाएगा। और खाद की मात्रा तो आप जानो हो कि भाई गर्मी या खरीफ की फसल के लिए 16 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से हमने बिजाई से पहले देना है, और इतनी ही मात्रा यानी कि बिजाई के लगभग 1 महीने बाद यानी कि सिंचाई के बाद फसल में हमने देना है। और मक्का के साथ साथ अगर लोबिया की भी आप बिजाई कर रहे हैं तो 16 किलोग्राम फास्फोरस यानी कि 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि 2 कट्टे 50-50 किलो के 2 कट्टे प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई से पहले खेत में ड्रिल से देना है, नहीं बखेरना है, ड्रिल से देना। सिंचाई की अगर बात करें
तो वही पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद करनी है, और उसके बाद जो सिंचाई हमने 10 से 12 दिन का बिचाला देकर करनी। कटाई की अगर बात करें, क्योंकि चारे वाली फसल है और चारे की कटाई का जो समय है वो किस्म के ऊपर निर्भर भी करे है, और इसके लिए जो है हमने कटाई जब करनी है जब फसल दूधी अवस्था में, और ऐसी अवस्था में आमतौर पर बिजाई के लगभग 60 से 70 दिन बाद, यानी कि महीना डेढ़ महीना आप ला लो या दो महीने के बाद जो है आप कटाई करके अपने पशुओं को चारा दे सकते हैं। और रही बात चारे की पैदावार की, तो वही अच्छी फसल प्रबंधन से हमने मक्का की हरे चारे की पैदावार लगभग 120 से 150 क्विंटल प्रति एकड़ हमने मिल जाएगी। तो ये तो बात रही चारे की फसल के बारे में और पशुओं के बारे में। और अब हम बात करें भाई रागनी की, तो हम सुनवा रहे हैं आपको एक रागनी पालेराम दैया और साथियों की आवाज़ में यह रागनी।

जिंदगी पर का सुख हो जा।

फिक्र में बात करे कौन किसे की रंगीला आया कौन किसे का

0: तो वही रागनी आपने सुनी पाले रामदैया और साथियों की आवाज में। और आइए अब सुनते हैं ये संदेश। और संदेश वायु यूनेस्को और आकाशवाणी के माध्यम से आप तक।
1: प्रस्तावना। जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं ताकि हम ये समझ सके कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सके कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
0: तो भैया, ये आपने सुना संदेश। और भैया, हम सब जान रहे हैं कि जो दिन पे दिन जो मिट्टी है उसकी दशा भी खराब होती जा रही है, क्योंकि हम आप अगर बात करें कि भाई मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि भाई उर्वरकों का हम प्रयोग इतना ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी प्रयोग है, चाहे जौन सी भी रासायनिक खाद है, हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। और इन रासायनिक खादों के प्रयोग से ही आप देखो कि हमारे शरीर के अंदर इतनी बीमारियाँ पैदा हो गई हैं।

चाहे वो मोटापा है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो दिमागी तौर से संतुलन लगा लो, और सबसे बड़ी एक घातक जो बीमारी है वो है शुगर। हर घर में, तीसरे घर में आप देखोगे कि शुगर की जो बीमारी है वो शुरू हो चुकी है, और इसका इलाज भी कोनी, क्योंकि वो क्या करे के डॉक्टर साहिबान तो रोज कहते हैं भैया गोली तो खानी पड़ेगी, या तो जब तक जीवेगा गोली खानी पड़ेगी। तो भैया ये सब बीमारियां हमने खुद मोल लिया, और अब हमने कुदरत की तरफ, प्राकृतिक खेती की तरफ जो है बढ़ावा देना है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो सरकार ने चला रखी है, उस योजना के अनुसार जो है केंद्र सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है बांटे गए हैं, और ऐसे में इन कार्डों की मदद से किसान अपने खेतों की जो मिट्टी है उसकी बेहतर स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए जो पोषक तत्व हैं, जो दिन पर दिन हम रासायनिक खादों के द्वारा जो है अपने खेत की मिट्टी को दे रहे हैं, उन पोषक तत्वों का उचित मात्रा में प्रयोग करने के साथ साथ जो पोषक स्थिति है, ताकि वो पोषक स्थिति जो है उसकी जानकारी हम लेकर उसी हिसाब से उतने ही मात्रा में हमने रासायनिक खाद के साथ साथ हमने जो दूसरी खादें हैं उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जो प्राकृतिक खाद है, चाहे केंचुए की खाद है, चाहे वो मिट्टी से बनी हुई खाद है, चाहे पत्तों से बनी हुई खाद है, तो इस तरह की जो खाद है वो हम साथ के साथ हमने प्रयोग में लाना है। और ये इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि देश भर में जो किसान भाई हैं उन किसान भाइयों के लिए जो है ये योजना जो है बनी रही, राज्य सरकार में बनी रही। और इस योजना का जो थीम भी यही है कि स्वस्थ धरा खेत हरा। और इस योजना के अंतर्गत जो है ग्रामीण युवा और किसान जो 40 साल की, जिनकी उम्र 40 साल तक है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला यानी कि मिट्टी की जांच की प्रयोगशाला स्थापित कर सके हैं, और नमूने किस तरह से हमने खेत की मिट्टी के लेने हैं वो नमूने जो है उनका भी हमने हिसाब किताब करके, और भाई जो अपना बेरोजगार भाई हैं उनको भी हमने काम मिल सके हैं। और करें बात भाई प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए, तो भाई 5 लाख रुपए तक का खर्चा, जिसका 75% केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन कर रहा है, और स्वयं सहायता समूह यानी कि किसान सहकारी समितियां, किसान समूह, किसान उत्पादक जो संगठन है वो भाई इनमें अच्छी तरह से अपना हिस्सा लेकर अपनी योजना जो है वो पूरी कर सके हैं। और अब भाई घड़ी भी इशारा कर रही है कि चतुर्भाई कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो भाइयों से ले अनुमति अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, भेंट होगी। तो तब तक अच्छा भाइयों, राम राम।

हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अन्नदाता। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुननीय सारे बन भैया ने एक बार फिर चतुर्भाई की ओर तय राम राम भाई। कार्यक्रम ग्राम संसार में पहले आपका करवाऊंगे मनोरंजन और उसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे जो हमारे सैनिक सरहद पर खड़े हैं, सीना ताने साथ में बंदूक ताने, तो भाई उनके बारे में आज हम करेंगे बातचीत, क्योंकि आज है सशस्त्र बल दिवस। पहले सुनते हैं एक संदेश और संदेश के बाद फिर सुनेंगे हम एक रागनी। और ये संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के माध्यम से आप तक।
1: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आद्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
0: और भाइयों, अब बातचीत अगर हम करें सशस्त्र बल दिवस के बारे में, तो भैया वो हम करेंगे थोड़ा सा डट के, क्योंकि पहले भैया करवाऊंगे मनोरंजन। और मनोरंजन करवाने से पहले सुनते हैं ये दोनों।

0: तो भैया ये तो सुनी हमने रागनी और सुनील दुजानिया और साथियों की आवाज़ में। और भाई आज हम जो चैन की नींद सो रहे हैं ना, वो इसीलिए सो रहे हैं क्योंकि जो हमारे वीर जवान जो हमारी सरहदों पर खड़े हैं, सीना ताने हाथ में बंदूक लिए, क्योंकि उनका सीना कोई फौलाद का नहीं होता, लेकिन हम जो यहाँ सो रहे हैं चैन की नींद जो सो रहे हैं, हम उन्हीं की बदौलत सो रहे हैं। और आज सशस्त्र बल दिवस है और सशस्त्र सेना ध्वज दिवस भी हम कहते हैं, झंडा दिवस जिसने हम कहते हैं। और आपने देखा होगा कि कई जगह जो स्कूलों में एक झंडा लगाया जाए है, तो वो झंडा जो है वो इसीलिए लगाया जाए है कि हम अपना जो ये दिवस जो है वो झंडा दिवस जो है वो मना सके। और इसमें सशस्त्र सीमा बल स्थापना दिवस भी है, क्योंकि सीमा पे जवान और खेत में किसान, ये सब हम जान हैं, और उन्हीं की बदौलत जो है अन्नदाता और सीमा पे जवान। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है वो लगभग जो है हम बात करें उसके बारे में, तो ये इसलिए मनाया जा रहा है कि हम भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, इनके जो शहीद हैं और वर्दीधारी जो हमारे पुरुष हैं, चाहे वो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना जो है इस दिन का महत्व है। और जो सेवारत जो हमारे कर्मी हैं, पूर्व सैनिक हैं, और जो अपना कर्तव्य निभाते हुए यानी के देश के ऊपर शहीद हो गए, उन लोगों के परिवारों के कल्याण के लिए ये जो धन है वो जुटाया जाए, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई ऐसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। और सीमा सशस्त्र सीमा बल जो है, इसमें भी जो है हम अगर बात करें तो आज का दिन उन्हीं की याद में मनाया जाए। और सलाम करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। और इसके साथ साथ भाइयों आज एक दिवस और भी है, और जिसने हम कह दे हैं कि विश्व एड वैक्सीन दिवस, लेकिन थोड़ा सा डट के पहले सुनते हैं एक संदेश।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो भाइयों टीकाकरण दिवस जो है वो आज है, और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में भी हम इसको मनाते हैं। हर साल जो है 18 मई को जो है ये दिन मनाया जाए, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो HIV है उसकी रोकथाम के लिए, उसकी सुरक्षित, उसका एक जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि एक प्रभावी वैक्सीन जो है जिसका के अनुसंधान जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, जो हमारे साइंसदान हैं, उनने इसको बनाया और इस दिशा में काम कर रहे हैं जो हमारे वैज्ञानिक हैं, और जो उनका आभार जो है हम यही व्यक्त करें कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी जिंदगियां बचाई जिसके एड्स के टीकाकरण के कारण। और भाई वैसे तो आप जानो हो कि एड्स जो है वो एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, जिसका के कोई इलाज नहीं, लेकिन अब साइंसदानों ने इसका इलाज भी ढूंढ लिया है। और वैक्सीन की अगर उपलब्धता की बात करें तो वही वो एड्स जो है वो, इसका नाम जो है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका के साइंस नाम है, यानी कि इसको जो पैदा करने वाला जो वायरस है HIV है, उसकी प्रकृति जो है बड़ी ही जटिल है, बड़ी जटिल बनावट है इसकी और लगातार जो है ये अपना रूप जो है बदलता रहा है। आपने देखा होगा कोरोना से हम जूझे और कोरोना में बहुत सारे हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बंधु, हमारे पड़ोसी बहुत सारे ऐसे जिन्होंने कोरोना में अपनी जान जो है वो दे दी। लेकिन बहुत सारे ऐसे वॉरियर भी हैं जो हमारे जो जिन्होंने के कोरोना से लड़ते हुए भी अपनी जान दी, चाहे वो डॉक्टर के रूप में है, चाहे वो सफाई कर्मचारी के रूप में है, चाहे वो पुलिस बल है, चाहे वो सेना बल है, सब ने जो है साथ दिया और कोरोना को हराया। और इसी प्रयास के चलते हुए दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं, चिकित्सा संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, लगातार अपना ट्रायल जो है वो करते रहे हैं ताकि एक सफल वैक्सीन जो है वो बना सकें, ताकि जान जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। तो इस तरह से और भाई बचाव और उपचार की अगर बात करें तो वही इसके लिए जो है अभी तक इसका टीका वैसे तो मौजूद नहीं है, लेकिन बचाव और उपचार निम्नलिखित तरीके से हम कर सके हैं, क्योंकि अगर हम सही उपचार और सही इसके क्या करें कि भाई बचाव में ही सब कुछ है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अंग्रेजी की एक कहावत है लेकिन अंग्रेजी में गणी आंदी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल गया, भाई बचाव में ही सब कुछ है। और जागरूकता भी भाई जरूरी है, क्योंकि असुरक्षित यौन संबंध ना बनाना, हमेशा डिस्पोजेबल या नई सुई का प्रयोग जो है वो करना और संक्रमित रक्त ना लेना, इसके बचाव के मुख्य कारण है। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और आप सुई जो है वो दोबारा से अगर वही सुई लगा रहा है तो वो गलत है इसलिए, या अगर आप नाई के पास जा रहे हैं बाल कटवा रहे हैं तो उसको कहो कि अपना एक नया ब्लेड जो उसमें लगाए और उसके साथ जो है उसको डिटोल या फिटकड़ी से साफ करें, क्योंकि कई बार कुछ नहीं पता होता, ऊंट पे बैठे ना कुत्ता पाड़ लिया करे, कुछ नहीं पता होता, तो इसलिए बचाव ही जरूरी है। और ART थेरेपी, अगर कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेको के तहत जो चलने वाले जो केंद्र हैं उन केंद्रों में अपनी दवा मुफ्त ले सके हैं, और ये जो दवाइयां हैं ये आजीवन पूरा जीवन जो है सही समय पर ART दवाई लेने से एड्स का जो खतरा

होता है उसको काफी हद तक हम टाल सकें। और अब समय हो रहा है क्या का, मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं एक हरियाणवी फिल्म का गीत। वो सब आप जानो हो कि कौन सा गीत है और पिछाणो, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

तो भाई ये तो सुना आपने गीत, और गीत भी आपने पहचान लिया कि भाई परदेसी तने नींद खोस ली, और फिल्म का नाम था लंबरदार। और भाई इसी तरह से आप भी अपने इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकें, और वो भी कैसे, आप हमारा मोबाइल नंबर नोट करो। मोबाइल का जो नंबर है वो है 9466021336। आप इस पे अपना संदेश लिख के आप हमने भेज सके हैं। कौन सा कार्यक्रम आपने अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, किस लिए अच्छा लगा, आप कौन सी रागनी पसंद करना चाह रहे हैं। और क्योंकि इब चिट्ठियाँ का टाइम तो गया, इब चिट्ठी तो आंदी नहीं, इब मोबाइल का समय टाइम आ रहा है, तो उसमें आपने एक हिंदी में अपना लिख के और आप संदेश भेज सकें, ताकि वो संदेश हमने मिल जाए और उस हिसाब से ही हम आपका जो कोई गीत है, कोई रागनी है, कार्यक्रम की आलोचना है, कार्यक्रम क्यों अच्छा लगा, कैसे अच्छा लगा, ये सब बातें जो है आप हमने लिख के भेज सकें। और आपकी जो प्रतिक्रिया है उसका हम सम्मान करते हुए और आपका नाम भी हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और इब घड़ी भी इशारा कह रही है कि भाई चतुर भाई टाइम खत्म हो लिया है कार्यक्रम का, तो भाइयों से ले अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जय जवान।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब ये सुनते हैं फिल्म पापा कहते हैं का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए आरजू बानो को।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
2: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
1: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
2: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
1: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
2: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
1: आकाशवाणी
2: विश्वास की आवाज।
3: अब आइए सुनते हैं अहमद परवेज को।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

आज की कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त, आपका हम सफर पुरुषोत्तम कुमार। और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे गजल विधा की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में। जब गजल का नाम आता है तो हमारे जहन में एक इतनी खूबसूरत सी जो विधा है वो आती है, गजल जिसमें बहुत सारे शेर होते हैं। आपने नज्म के बारे में सुना होगा और गजल के बारे में सुना होगा। नज्म असल में दोनों ही ये उर्दू फारसी की विधाएं हैं, हालांकि आजकल सब भाषाओं में इनका उपयोग होता है। सब हिंदी में भी गजलें लिखी जाती हैं और पंजाबी में भी लिखी जाती हैं। अपनी अपनी भाषाओं के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से लोगों ने जो है इसमें शेर कहना शुरू किया। जो नज्म है, नज्म असल में पूरी घटना को बयान करती है। एक ही विषय को लेकर पूरी नज्म होती है, जबकि जो गजल हैं उसके जो शेर हैं वो सब शेर अलग अलग हो सकते हैं। यानी हर शेर जो होता है वो अपने आप में एक मुकम्मल शेर है, वो पूरी बात अपने अंदर समेट लेता है, वो कह देता है। कहते हैं ना कि गजल क्या, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में एक आग छुपा रखी है। तो शुरू करते हैं आज का जो कार्यक्रम इस गजल के साथ।

0: जैसे सहरामी रात को।
1: रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: श्रोताओं, हम बात कर रहे थे गजल विधा के बारे में। गजल एक प्रेम कविता, इसको हम कह सकते हैं, जिसकी उत्पत्ति अरबी कविता से हुई है और जो अक्सर आध्यात्मिक और रोमांटिक प्रेम के विषयों से संबंधित होती है। इसे प्रियतम से बिछड़ने या वियोग के जो दर्द है, उस दर्द के बावजूद भी प्रेम की जो सुंदरता है उसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति के रूप में समझा जाता है। गजल एक प्राचीन शैली है जिसकी उत्पत्ति 7वीं शताब्दी की अरबी कविता से मानी गई है। यह 12वीं शताब्दी में नए इस्लामी सल्तनत के दरबारों में इस्लाम के प्रभाव के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में फैली और अब यह दक्षिण एशिया और तुर्की की कई भाषाओं में प्रमुख रूप से जो है कही जाती है। ये एक प्रकार की कविता के रूप में इसका प्रचलन है। भारतीय व्यापार के कारण मलेशिया और सिंगापुर में भी गजल को संगीतबद्ध करके एक लोकप्रिय संगीत शैली के रूप में प्रस्तुत आजकल किया जा रहा है। गजल में आमतौर पे 5 से 15 जो है दोहे यानी शेर होते हैं, जो स्वतंत्र होते हुए भी आपस में रदीफ और काफिये के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। विषय वस्तु के संदर्भ में अमूर्त रूप से और काव्य रूप के संदर्भ में अधिक स्पष्ट रूप से गजल की जो संरचनात्मक आवश्यकताएं, यानी पेट्रॉक के सोनेट के समान ही एक तरह से होती हैं। शैली और विषय वस्तु में अपने आध्यात्मिक संकेतिक स्वरूप के कारण गजल प्रेम और विरह के केंद्रीय विषयों के इर्द गिर्द अभिव्यक्ति की जो असाधारण विविधता है उसको प्रदर्शित करने में सक्षम ये बड़ी सिद्ध हुई। श्रोताओं, गजल के बारे में हम आगे भी बातचीत करेंगे। पहले कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्रस्तुति।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे गज़ल के बारे में। अगर गज़ल का जो व्याकरण है कि यानी कि ये कैसे बनती है, गज़ल का जो व्याकरण है इसके छंद, तुकबंदी और लयबद्ध संरचना के जो नियम है उनका समुच्चय है। एक मुकम्मल गज़ल लिखने के लिए मतला, मक्ता, रद्दीफ, काफिया, बहर जिसको वजन भी कहते हैं, कि गणितीय और व्याकरणिक नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर गज़ल की जो मूल संरचना है उसको समझने के लिए हम कुछ एक बिंदुओं को समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है शेर, जिसे मिसरा भी कहते हैं, और गज़ल कई स्वतंत्र शेरों से मिलकर बनती है। प्रत्येक शेर में दो पंक्तियां होती हैं जिन्हें मिसरा कहते हैं। पहली जो पंक्ति है उसे मिसराए उला कहते हैं और जो दूसरी पंक्ति है उसको मिसराए साने कहते हैं। तब जाके एक जो है एक शेर पूरा होता है। अगर हम बात करें रदीफ, रदीफ किसी गज़ल का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये एक या एक से अधिक शब्दों का वो समूह होता है जो हर शेर की जो दूसरी पंक्ति और मतला दोनों के बीच की जो पंक्तियां हैं उसके अंत में ज्यों का त्यों बिना बदले दोहराया जाता है। और जो काफिया होता है, काफिये में और रदीफ में थोड़ा फर्क होता है। यह रदीफ से ठीक पहले आने वाला तुकबंदी वाला शब्द होता है। काफिया का जो उच्चारण है और स्वर रदीफ से मिलता जुलता होता है। काफिया हर शेर में बदलता रहता है लेकिन इसकी जो ध्वनि है, इसकी जो मात्रा है वो समान रहती है। दोस्तों, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म उमराव जान की ये गज़ल।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे गज़ल के बारे में, और तो गज़ल में जो ख़ास जो बिंदु होती है, यानी जो उसकी ख़ास चीज़ होती है, वो है मतला। मतला गज़ल का जो पहला शेर है उसको हम कहते हैं, जिसमें जिसके दोनों मिस्रों में काफिया और रदीफ होता है, उससे मतला कहते हैं। अगर हम कोई उदाहरण दे तो इस तरह से हम दे भी सकते हैं कि बहुत रहा है कभी लुत्फ़े यार हम पर भी, गुजर चुकी है ये फसले बहार हम पर भी। और इससे अगला जो बिंदु है वो है हुस्ने मतला, यानी जब किसी गजल में मतला के बाद और मतला हो तो उसे हुस्ने मतला कहा जाता है। यानी जो उसकी पहली लाइन है उसमें भी हो और फिर दूसरे वाले जो लाइन है उसमें भी हो, यानी जिक्र तबस्सुम का आते ही लगते हैं इतराने लोग, और जरा सी ठेस लगी जा पहुंचे मैखाने लोग, मेरी बस्ती में रहते हैं ऐसे भी दीवाने लोग, रात के आंचल पर लिखते हैं दिन भर के अफसाने लोग। तो ये है हुस्ने मतला, यानी जो मतला है उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको हम हुस्ने मतला के नाम से हम जानते हैं। आगे अगर हम बात करें तो एक ख़ास इसमें चीज़ होती है तखल्लुस। तखल्लुस यानी जो शायर होता है उसका उनवान, यानी उपनाम इसको हम कह सकते हैं, उसको हम उर्दू में तखल्लुस कहते हैं। जैसे असदुल्लाह खां जो है वो शायर का नाम है, लेकिन उनका जो तखल्लुस है उसके नाम से हम उनको जानते हैं, यानी उनका तखल्लुस था गालिब। दोस्तों, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगली पेशकश।

गज़ल के आखिरी शेर को हम मक्ता कहते हैं, और इस में जो शायर अपना तखल्लुस लिख देता है, यानी अगर हम एक उदाहरण दें, यानी अजनबी रात अजनबी दुनिया तेरा मजरू अब किधर जाए, यानी मजरू सुल्तानपुरी अपने बारे में इसमें कह रहे हैं। और अगर हम आगे बात करें कि जो मुसलसल गज़ल वो क्या होती है, मुसलसल गज़ल का मतलब उसका जो हर शेर अपने आप में पूर्ण होता है, और शायर गज़ल के प्रत्येक शेर में अलग अलग भाव को व्यक्त कर सकता है। परंतु जब किसी गज़ल के जो सभी शेर सभी अशार एक ही भाव को केंद्रित करके लिखे जाते हैं, केंद्र मान कर लिखे जाते हैं, तो ऐसी गज़ल को मुसलसल गज़ल हम कहते हैं। और जो गैर मुसलसल गज़ल होती है वो उसका हर जो शेर है वो अलग अलग भाव को व्यक्त करता है, ऐसी गज़ल को हम गैर मुसलसल गज़ल कहते हैं जो अक्सर होता है। और अगर हम बात करें कि उसकी जो बहर है यानी उसका जो वजन है छंद, वो लयात्मकता जिस पर गज़ल लिखी जाती है उसको हम उस गज़ल की बहर कहते हैं। अगर बहर के कुछ एक प्रकार हम बात करें तो यानी बहरे रमल, बहरे हजज, बहरे रजज, कई तरह से जो है ये बहर को लिखा जाता है। यानी हम बात करते हैं ना छोटी बहर की गज़ल है कि बड़ी बहर की गज़ल है, उसकी जो मात्राएं हैं वो कम ज़्यादा होती रहती हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म मौसम का ये गीत।

अंत में हम बात करेंगे मुकम्मल जो शायर है वो क्या होता है। मुकम्मल शायर का मतलब दोस्तों ये है कि जो शेर लिखता भी लाजवाब है और उनको जो प्रस्तुतिकरण उसका होता है वो भी लाजवाब होता है, तो उसको मुकम्मल शायर कहते हैं। कुछ एक जो नौसिखिए जो शायर होते हैं वो कई बार लिखते बड़ा अच्छा है लेकिन उनको जो है उनको प्रस्तुत करना नहीं आता। एक दो लाइनें हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं। जिंदगी भर मुफलसी में गुजारा किया, अच्छा किया कि हमसे किनारा किया, मैं बस जाने ही वाला था महफिल से कि तभी उसने आंख से इशारा किया। यूं तनख्वाह मिलती है उसे काम की, पर उसने तड़पा के काम हमारा किया। अब आइए सुनते हैं ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि की 8:45 होने को है। आकाशवाणी दिल्ली से अब आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गार स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय
2: यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमेरिकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल के इस दौरे में अमेरिकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमेरिका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए।

अभी आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म घर में सुना। गीतकार थे गुलजार, संगीतकार आरडी बर्मन। अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम इज्जत।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

इस समय आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए। अगला गीत आशा भोसले और सुरेश वाडकर का गाया हुआ फिल्म है परिंदा। खुर्शीद के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: विविध भारती,
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है वहां से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें,
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: अब सुनिए एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाज आशा भोसले की, फिल्म का नाम ज्वेल थीफ।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।

0: बागों में बहार,
1: वो जो बहुत खूबसूरत हैं, चुलबुली हैं, भोली हैं, भोले भोले चेहरे से बड़ी सहजता से संवाद बोल देती हैं, जो कभी सहनायिका थी अभिनेता राजेश खन्ना की, प्यारी भोली मासूम आवाज में बोलने वाली फनकार। आज उन्हीं पर केंद्रित है हमारा ये कार्यक्रम। इनका नाम है फरीदा जलाल।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अगर आपने फिल्म आराधना देखी होगी तो इस दृश्य को जरूर देखा होगा। इनके साथ अभिनेता थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। फरीदा जलाल का फिल्मी कैरियर सन 1967 से फिल्म तकदीर से शुरू हुआ।

1949 में फरीदा जलाल का जन्म हुआ था नई दिल्ली में। शुरू की युवा आयु में जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो इन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं की, सखी के रूप में, बहन के रूप में, और ये भूमिकाएं सराही गईं। फिल्म तकदीर में गोपाल की छोटी लड़की की भूमिका निभाई।

सन 1973 में एक फिल्म आई थी लोफर। इस फिल्म में अभिनेत्री फरीदा जलाल ने रूपा की भूमिका निभाई थी, जो कि गोपीनाथ की बेटी है। इसी फिल्म का गाना सुनिए।

0: चर्चित फिल्में बहारों की मंजिल 1968 में, महल 1969 में, आराधना पुरस्कार नया रास्ता 1970 में, गोपी देवी पारस में बेला देवी नाम से भूमिका को जीवंत किया और इस फिल्म पारस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड दिया गया। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया BFJA अवार्ड। इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार की बहन की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई थी। आइए सुनते हैं पारस फिल्म का गाना।
1: अरे या या या या या या कू!

0: आगे तो ना करना अकेला जीते रहो। जुगनी कहती है बात पते की, जुगनी कहती है बात पते की।
1: सन 1971 में अमर प्रेम प्यार की कहानी जिंदगी जिंदगी रिवाज बुनियाद हीरा बॉबी जिसमें इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया जिसे फरीदा जलाल ने बहुत ही सहजता से निभाया। बॉबी फिल्म में एक ऐसी धनी लड़की की भूमिका निभाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी कर ले। फिल्म पारस के बाद इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया फिल्म मजबूर के लिए, यानी कि मजबूर फिल्म की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। बहुत ही बेबसी और मजबूरी का अभिनय किया था फरीदा जलाल ने जो बहुत लाजवाब था।

हीरा जलाल ने 40 वर्ष की उम्र तक सिने जगत में अभिनय किया। 1983 और 1990 के बीच में फिल्मों से ब्रेक लिया और बेंगलोर जाकर शिफ्ट हो गईं। 1990 वर्ष के दौरान फरीदा जलाल ने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू किया और कई मेजर हिट फिल्म में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। 1991 में हिना फिल्म में बीबी गुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। 1991 के बाद भी कई फिल्में आईं जिसमें इन्होंने तरह तरह की चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई। फिल्म पायल, बेखुदी, कल की आवाज, दिल आशना है। 1993 में गर्दिश। सन 1994 में फिल्म आई थी मम्मो जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम अनवर अली उर्फ मम्मो का किरदार निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही दमदार अभिनय था। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को 2 अवार्ड मिले, एक तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा अवार्ड बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। सन 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई जिसमें लाजवंती यानी लाजों की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाया और इन्हें अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का।

0: नारे नारे नारे नारे।
1: सन 2000 में हे राम फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई। इस भूमिका को बहुत सराहा गया। यही फिल्म

1990 के बाद की कई फिल्में बहुत चर्चित रहीं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम। फरीदा जलाल ने कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया, जिसमें देख भाई देख हिट सीरियल था। फरीदा जलाल ने कॉमेडी रोल भी अदा किए। थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत, इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, यूं कह सकते हैं कि लीडिंग रोल था। सन 2005 में मुंबई में 50वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्टेज पर इन्होंने एंकरिंग की। साथ में थे सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे। पंजाबी फिल्म यारिया में एक विशेष भूमिका में फरीदा जलाल नजर आई। सन 1978 में इनका विवाह एक्टर तब्रेज बर्मावर के साथ हुआ, जो कि भटकल के थे। इन दोनों की मुलाकात फिल्म जीवन रेखा की शूटिंग के दौरान हुई थी और दोनों में प्यार हो गया और फिर इन्होंने शादी कर ली। फिल्म आराधना के बाद जीवन रेखा इनकी दूसरी फिल्म थी, जिसमें इन्होंने हीरोइन की भूमिका निभाई थी और साथ में थे उनके पति तब्रेज। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मकबूल हुआ।

फरीदा जलाल का एक बेटा है यासीन। अभिनेत्री फरीदा जलाल के अभिनय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फरीदा जलाल हमेशा उन्नति करें। हम सब विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

के पनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। शोध, आलेख और स्वर शहनाज अख्तरी का। कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें।
2: अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चांदनी रातें।

आज का चांदनी रात कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आप सबका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको वो सभी गीत सुनवाने का प्रयास करेंगे जिनकी फरमाइश आपने हम तक लिखकर भेजी है व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से। तो शुरू कर रहे हैं आज का चांदनी रात कार्यक्रम का ये सफर। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गीत आशा भोसले का गाया हुआ, फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश भेजा है एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या आरव, मेघा साक्षी, आशीष, अनुज, विशु और एसके पप्पी खुराना, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुटू, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकिरत, गुरशब्द सिंह राहुल, बीर शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महित्रे, अंजलि करवा, बाला साहिब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टाउल और पीवी कुल थे। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

0: मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कश्मीर की कली से हम आपको सुनवा रहे हैं और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश भेजा है। गांव सिली कला जिला यमुनानगर हरियाणा से जय सिंह कम्बोज, विजयंत सिंह कम्बोज, रिदम निश्चय सिंह कम्बोज, जयपाल धीमान और खुर्शीद चमरौड़े। जमशेदपुर झारखंड सुपाही साही गांव से निशा कुमारी, रेशम कुमारी, देवेन जी, मस्नू काटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सपना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का यह संदेश हमारे पास पहुंचा है। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केशु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत।

शतव कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म यादगार से। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश भेजा है संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति गायकवाड़, आशा गायकवाड़, दीपांजलि गायकवाड़ और दीक्षा बागमारे, शशांक बागमारे। ये संदेश हमारे पास से पहुंचा है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, करुणा भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत का। अजीत कसाना से माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लुदावली जिला मुरादाबाद से। और आप हैं कुल स्वामिनी रेडियो क्लब श्री रामपुर भोकर से, पत्रकार हरिभाव बिड़बे, अनिकेत सोनवणे, शुभांगी श्रावण और अनीता बिड़बे। जलालाबाद वैसे सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और उनके परिवार के सभी सदस्य। तो आप सभी के पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म यादगार का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश भेजा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा। और ये संदेश हमारे पास से आया है ग्राम पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंचोलिया, गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया का ये संदेश हमारे पास पहुंचा है। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, कान्हा, मीनाक्षी, मनोहर भाई बागड़ी और प्रभुलाल बागड़ी। बागड़ी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से सत्य नारायण, कपिल, शोभा, फुन्नी भाई बागड़ी। शेरवानी स्कूल गंजुंदवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत।

0: kanchi re.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का ये गीत हमने लिया है फिल्म शहनाई से, आवाज मोहम्मद रफी की है। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये संदेश आया है गंज द्वारा से, मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, उस्मान अंसारी, यासीन अंसारी और शमशुल कमर राही। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिनान अंसारी, पुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि। मुकम पोस्ट फुल चिचौली तालुका पंडरपुर से जाकिर मुलानी, समैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद और समस्त मुलानी परिवार। ये संदेश हमारे पास से पहुंचा है पटियाली रोड गजद्वारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, अकीला कुरैशी, बेबी अरीबा हबीबा। तो आप सभी की पसंद पर फिल्म शहनाई का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से। और गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, और इसको सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश भेजा है तहसील रोड गजदुद्वारा से कि एच राही गुड़िया बेगम वकील प्रेमी और हम्माद जमील गांव हरूड़ी चांडिल झारखंड से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमोहिनी महतो, दीनबंधु महतो और उनके परिवार के सभी सदस्य। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सकपाल, आशा सकपाल, सोनिया सकपाल, साईराज सकपाल और विशाल सकपाल। छोटा बाजार थानेसर कुरुक्षेत्र से श्याम शर्मा, मिली शर्मा, चिराग शर्मा, राघव शर्मा, तनुज शर्मा, पलक शर्मा और मास्टर उद्देश्य। नर्मदा पार्क मंगल बेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल का यह संदेश हमारे पास पहुंचा है। लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा, योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार चिंडालिया और उनके परिवार के सभी सदस्य। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये गीत फिल्म ये रात फिर ना आएगी से हम आपको सुना रहे हैं। गीत को गाया है आशा भोसले ने और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है खेल बाजार पानीपत से। नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुकू सिक्का। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कापली वाले, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बदलते रिश्ते से हम आपको सुनवा रहे हैं। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये संदेश आया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर का। नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। मलोट पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी और विवान मिगलानी का यह संदेश हमारे पास पहुंचा है। और ये संदेश है पुलोंग निजामाबाद तेलंगाना से मास्टर वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर फासी, जुनैद जुबैर, मुकराम, नौमन फुरकान, जाकिर और मोहम्मद फाजिल। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक और उनके परिवार के सभी सदस्य। गांव डागर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर।
1: तो आप सभी की पसंद पर फिल्म बदलते रिश्ते का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आंखें से हम आपको सुनवा रहे हैं, और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश भेजा है। फजिल का पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, आरबी खेड़ा और जीवन सिंह बुक। ये संदेश हमारे पास गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक,

बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। ये संदेश हमारे पास पहुंचा है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा का। चांदनी गेट से ये संदेश हमारे पास पहुंचा है। जलालाबाद शामली यूपी से राशिद मंसूरी, अयाना मंसूरी और सयान मंसूरी। ये संदेश हमारे पास आया है मालियान साधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन और उनके परिवार के सभी सदस्य। तो आइए सुनते हैं फिल्म आंखें का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है आकाशवाणी दिल्ली से। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।